मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के, ज्येष्ठ माह की तिथि 15, तदनुसार 5 जून सन 2026 ईस्वी। प्रातः के 5:48 हुए हैं, आरंभ होती है आज की हमारी पहली सभा।

0: ये आकाशवाणी दरभंगा है। चिंतन
1: संसार में जतेक क्रियाकलाप वा मानवीय व्यवहार अछि तकरा मूल में स्वार्थे निहित अछि। जँ स्वार्थ समाप्त भऽ जाए तो सांसारिक सबटा क्रियाकलाप स्वतः बंद भऽ जायत। पारिवारिक बंधन सेहो स्वार्थमूलक अछि। स्त्री पुत्रादि जे संबंध अछि से सब स्वार्थिक कारण अछि। वीतराग मनुष्य के न पारिवारिक मोह होइ छ न सामाजिक बंधन। वीतरागी सभक होइ छ आ ककरो नहि होइ छ। सामाजिक जीवन में जे संबंध क्रमशः विकसित होइ छ तकर प्रेरक परिवारे थिक। परिवार पालन हेतु मनुष्य नाना प्रकारक बंधन में बनि जाइ छ। तैं परिवार के सुधी जन मकड़ा के जाल सदृश कहलेन अछि। मकड़ा स्वनिर्मित तंतु सँ आहार संचयार्थ जाल बनबै छ आ स्वयं ओहि में ओझरा जाइ छ। तहिना घर संसारक जे संबंध अछि ताहि में मनुष्य जीवन पर्यंत ओझरायल रहै छ। ओकरा यावत जीवन ओहि बंधन सँ निवृत्ति नहि होइ छैक। एहि बंधन में परल मनुष्यक मस्तिष्क सदैव चिंता सँ बोझिल बनल रहै छ। की करी, की केने, कोन काज सिद्ध हैत, यह चिंता सदिखन बनल रहै छ। सत्कार्य में मनुष्यक प्रवृत्ति होमै नहि दै छ। मनुष्य मात्र पिता पति पुत्र आ भ्राता नहि थिक, ऐसा आगा आरो किछु थिक। ओ सामाजिक प्राणी थिक, राष्ट्रक नागरिक थिक आ विश्व मानव समुदायक सदस्य थिक। ई सब उदात्त भावना मनुष्यक लेल अस्पृष्ट रह जाय छ। बादशाह अकबरक दरबार में एकटा पेशकार रहथि, नाम रहन बलिराम। दरबार में बेस चला चली रहन, बादशाह कृपा पात्र रहथि। एक दिन कोनो बात पर बादशाह से हुनका अपमानित होमय पड़लैन। बड़ दुख भेलैन, विचारलैन जै परिवार में छी तै न ई अपमान सह पड़ल अछि। जँ पारिवारिक दायित्व नहि रहता तो किएक बादशाहक मुलाजिमी करितौं आ किएक ई अपमान सह पड़ैत। बलिराम के वैराग्य भऽ गेलनि, परिवार त्याग कऽ देलनि। जे किछु धन सम्पत्ति रहनि गरीब दुखिया में बाँट देलनि। परिवार के कहें नगरेक परित्याग कऽ देलनि। चल गेला जमुना कात, किछु भेट जाइन त खा लेत, नहि भेटन त जमुनाक जल पीबी, किछेर परक बाल पर सुत रहथि। न ककरो से भेंट करथि, न क्यों भेंट करक लेल आबन। ना हम काहू के ना को है हमारा। जखन कैक दिन दरबार से अनुपस्थित रहला तो अकबर के चिंता भेलन। गाम पर सिपाही पठौल गेल। सिपाही दरबार में आबि सूचना दिलक जे पेशकार बलिराम परिवार त्याग कऽ कऽ नगर से बाहर चल गेला, ककरो किछु कहि नहि गेला अछि। बादशाहक आदेश सँ बलिरामक तक्का हेरी होमय लागल। सिपाही दरबार में सूचना देलक बलिराम अमुक स्थान में जमुना कात में बाल पर पड़ल रहै छथि, कतौ नहि अबै जाय छथि। पुनः सिपाही छूटल हुनका दरबार में आनक हेतु, मुदा बलिराम दरबार में नहि गेलाह।

0: अंततः बादशाह स्वयं बलिराम लग गेलाह। देखलनि बलिराम जमुना जल में पैर पसारने परल छथि। बादशाह पूछलखिन, बलिराम पैर कहिया से पसारने छी? बलिराम उत्तर देलखिन, जहिया से हाथ समेटलों तहिये से पैर पसारने छी। बलिराम वीतराग रहथि। सामान्य जन जँ हुनक अनुकरण करत तखन त सांसारिक क्रियाकलापे समाप्त भ जतैक, संसारक बड़ क्षति हेतैक। किंतु मनुष्य विवेकशील प्राणी हेबाक नाते दुष्कर्म सँ जँ हाथ समेट लिए तँ नीक थिक।
1: ये था आज का चिंतन। हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं, कृषि चर्चा। आज विषय है फसलों में सूक्ष्म पोषक तत्वों का महत्व। वाचन स्वर है अनिल कुमार करुण का।
2: किसान भाई लोकन, आजुक कृषि चर्चा संग उपस्थित छी हम अनिल कुमार कर्ण। एहि कार्यक्रम में अपने सब गोटे के स्वागत, संगे सब गोटे के नमस्कार। कोनो फसल में बहुत रास पोषक तत्व सभक आवश्यकता होइत अछि। किछ पोषक तत्व सब एहन होइत अछि जकर कम मात्रा में आवश्यकता होइत अछि मुदा ई बड्ड बेसी महत्वपूर्ण होइत अछि। एहन तत्व सबके सूक्ष्म पोषक तत्व कहल जाइत अछि। फसिल के गाछ सभक उचित विकास आ वृद्धिक लेल 16 पोषक तत्व मे से 7 पोषक तत्व सब एहन अछि जकर आवश्यकता बड़ कम मात्रा में होइत अछि मुदा ई बड़ बेसी आवश्यक अछि। ई पोषक तत्व सब अछि जिंक, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, बोरोन आ मोलिब्डेनम। एकर अतिरिक्त क्लोरीन। एहि पोषक तत्व के सूक्ष्म पोषक तत्व सब कहल जाइत अछि। हालांकि खाद्य फसिल सब में कम मात्रा में अवशोषित करैत अछि मुदा कोनो कोनो खेत में लगातार एक फसिल लेबाक कारण, सामान्य उर्वरक के व्यवहार करबाक कारण एकर सभक कमी भ जाइत अछि। आन पोषक तत्व जना एकर अभाव में हल्लुक बॉल वाला माटि आ अम्लीय आ क्षारीय गुण पर निर्भर करैत अछि। फसिल के गाछ सब में पोषक तत्व सभक कमी के सामान्य लक्षण के संदर्भ में जँ गप करी, जस्ता जिंक। गहूम के फसिल में ऊपर से तेसर पात के आधार सँ भूरा व कत्थी रंग के चित्ती बनब प्रारंभ भ जाइत अछि। ई चित्ती जल्दी से संपूर्ण पात पर पसरि जाइत अछि। पात के तंतु सभक रंग हरियर खत्म भ जाइत अछि। एकर कारण से गहूम के पात सब बीच से ककोर जाइत अछि। पात के नूखी सुखाय लगैत अछि आ पात सब नीचा दिस झुक जाइत अछि। मकई के फसिल में जिंक के कमी भेला से नवका पात सभक आधार तंतु मध्य शिरा दुनू कात से उज्जर रंग पियर रंग में बदल लगैत अछि। ई सने सने संपूर्ण पात में आगू दिस बढ़ लगैत अछि। जस्ता के बेसी कमी भेला पर संपूर्ण पात उज्जर से पियर रंग के भ जाइत अछि। संगे किसान भाई लोकन के ई गप ध्यान राखल जाए जे दू गांठ के दूरी सेहो कम भ जाइत अछि आ गाछ सभक लंबाई अर्थात गाछ सब छोट देखबा में लगैत अछि। रबी मकई के फसिल में ई लक्षण बेसी देखबा में अबैत अछि। लोहा। फसिल में लौह तत्व के कमी भेला से गाछ सभक हरियर रंग समाप्त भ जाइत अछि। आरंभ में नवका पात के रंग सबसे पहिने हरियरी कम, बाद में उज्जर भ जाइत अछि। पात सब में ई लक्षण आधार से आरंभ होइत अछि। संगे सने सने एकर प्रभाव संपूर्ण पात में अपने देख सकै छी। फसिल के गाछ के वृद्धि रुक जाइत अछि। चूनायुक्त माटि में धान के बिचरा व दलहनी फसिल सब में लौह तत्व के कमी बेसी देखबा में अबैत अछि। मैग्नीज। जौ के फसिल में खास कर मैग्नीज के कमी बेसी देखबा में अबैत अछि। जखन फसिल के गाछ सब 4-6 के रहैत अछि तऽ ओहि काल में निचला पात सब नीला व भूरा रंग के धारी बनऽ लगैत अछि। संगे संगे पात के रंग बादामी रंग के भ जाइत अछि। पात सब टूटि कऽ खसल लगैत अछि। जँ एहि तरहक लक्षण अपने के फसिल में देखबा में आबऽ लगे तऽ अपने के एक गप बुझक चाही कि हमर फसिल में मैग्नीज के कमी भ रहल अछि। फसिल के गाछ सब सुखाय लगैत अछि। तांबा। फसिल में कॉपर के कमी भेला से नवका पात सब के हरियर रंगक अभाव होइत अछि। पात सब मुरऽ लगैत अछि। संगे पात के नोक उज्जर रंग के भ जाइत अछि। ओकर बाद सूखा कऽ खसल लगैत अछि। फसिल के गाछ सब कमजोर भ जाइत अछि। बोरोन। फसिल में

0: बोरोन तत्व के कमी भेला से गाछ के अगला भाग उचित विकास नहीं करते है। बोरोन के अभाव में फूलकोबी के रंग भूरा रंग के भ जाते है। मध्य शिरा आ डांट फूल जाते है। संगे उत्तक सब सेहो सरय लागत है। मॉलिब्डेनम फसिल में अ तत्व के कमी भेला से क्लोरीन के अभाव उत्तक छै झुलसन एकर प्रमुख लक्षण है। एकर प्रमुख लक्षण है। पात सब सूखा कर खसर लगते है। किसान भाई लोकन अ तत्व सब कमी के जैविक खाद व अन्य विधि से अपने पूरा कर सके छी। इस संबंध में विस्तार से दोसर दिन गप करब। इस संग आब आजुक कृषि चर्चा के समय सम्पन्न भ रहल है। अनिल कुमार कर्ण के चलवाक आज्ञा दिल जाए। नमस्कार।
1: कृषि चर्चा में हमारे किसान भाई जानकारी प्राप्त कर रहे थे फसलों में सूक्ष्म पोषक तत्वों के महत्व के बारे में। वाचन स्वर था अनिल कुमार कर्ण का। ये आकाशवाणी दरभंगा है। अब समाचार होंगे।
2: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक जनसभा करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे। श्री मोदी दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेस से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना रहा।
3: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता के लिए भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और ब्रिटेन की विदेश सचिव येविट कूपर ने कल नई दिल्ली में भारत यूके विजन 2035 की समीक्षा के लिए पहली वार्षिक बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत यूके विजन 2035 के विकास, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु तथा स्वच्छ ऊर्जा और शिक्षा के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के अवसरों का स्वागत किया है और इसके शीघ्र लागू होने की आशा व्यक्त की है। दोनों पक्षों ने पारस्परिक महत्व के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों और राष्ट्रमंडल सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के विषयों पर भी चर्चा की। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपए के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरलता उपाय अपना सकता है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में एक वर्ष का सेवा विस्तार देने को मंजूरी दे दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में उनका ये कार्यकाल 10 जून से प्रभावी होगा और ये एक और वर्ष की अवधि के लिए रहेगा। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 7 जून तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसमें व्यापार,

0: देश आपसी संपर्क और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और इसके संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिन मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून को 1973 से हुई थी। ये दिन पर्यावरण की रक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में कल भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाइजिंग को शिकस्त दी थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। स्वास्थ्य चर्चा। आज की चर्चा का विषय है गर्भाशय में सूजन। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर हिना आरजू।
2: गर्भाशय की सूजन के प्रमुख कारण है गर्भावस्था या पुरैन यानी प्लेसेंटा के टुकड़ों का रह जाना, या पुरैन के पॉलिप या गर्भाशय के पॉलिप का हो जाना, या गर्भाशय में पस, खून, पानी का जम जाना, या ट्यूमर यानी फाइब्रॉइड या कैंसर का होना। फाइब्रॉइड उन ट्यूमर को कहते हैं जिनमें कैंसर नहीं होता है। गर्भावस्था को छोड़कर गर्भाशय की सूजन का सबसे प्रमुख कारण यही है। इसमें गर्भाशय में मांस और फाइब्रस टिश्यू दोनों बढ़ जाता है और ये गर्भाशय के मांस में ही होता है। आमतौर से 5 से 30 की संख्या में पाए जाते हैं और एक फाइब्रॉइड यानी मायोमा को छोटे आकार से नारंगी के आकार होने में करीब 3 साल का वक्त लग जाता है। यह 35 से 45 साल की महिलाओं में अक्सर पाया जाता है और वैसी महिलाएं जो बांझ हों या हप्शियों में यह ज़्यादा प्रमुख है। उन महिलाओं में जिनमें ईस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो कि अंडदानी की गड़बड़ी से होता है, उनमें भी फाइब्रॉइड ज़्यादा होते हैं। मायोमा गर्भाशय के 3 जगहों पर होते हैं, एक तो गर्भाशय की ऊपरी सतह पर, एक उसके मांस में और तीसरा अंदरूनी सतह पर जो कि पॉलिप का आकार ले लेते हैं। इसमें इसके लक्षण हैं मासिक की गड़बड़ी जो कि सबसे प्रमुख है, जिसमें मासिक ज़्यादा भारी और ज़्यादा खून का गिरना होता है, जिससे महिलाओं में खून की कमी हो जाती है और माहवारी के दौरान दर्द का अनुभव भी होता है। और अगर फाइब्रॉइड की सतह पर इन्फेक्शन हो जाए तो ऐसे स्थिति में गंदे पानी का बचदानी से गिरने का अनुभव होता है। फाइब्रॉइड के दबाव से कब्जियत भी हो जाती है क्योंकि आसपास की आंतें इसमें दब जाती हैं, और इसके अलावा पेशाब की थाली पर दबाव पड़ने से पेशाब में जलन, दुखन, रुक रुक कर होना और कभी कभी बिल्कुल भी बंद हो जाता है। पैरों की सूजन भी हो जाती है और अगर रक्तपातों के दबाव हो जाएं तो इससे पैरों में दर्द भी होता है। फाइब्रॉइड बांझ होने का भी एक प्रमुख कारण है क्योंकि वो गर्भाशय और उसके आसपास अंडेदानी के आकार को बिल्कुल बिगाड़ देता है, जिससे अंडे सही रास्ते से गर्भाशय में नहीं पहुंच पाते, और अगर पहुंच भी गए तो फाइब्रॉइड उन्हें गर्भाशय की सतह पर जमने नहीं देता है। और फाइब्रॉइड अबॉर्शन का भी एक प्रमुख कारण है। इसके अलावा डिलीवरी में भी परेशानी होती है क्योंकि गर्भाशय के आकार बदल जाने से गर्भाशय के काम में भी बदलाव आता है। बड़े फाइब्रॉइड तो पेट पर झलकते हैं, लेकिन पेड़ों के रास्ते देखने से गर्भाशय अपनी आकार से बड़ी हो जाती है और काफ़ी कड़ी मालूम होती है। इसके अलावा अल्ट्रासोनोग्राफी से गर्भाशय की सूजन में जो फाइब्रॉइड है वो बिल्कुल अच्छी तरह से पता चल जाता है। छोटे फाइब्रॉइड अगर माहवारी में परेशानी ना करें तो उनके लिए हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर मासिक में परेशानी हो तो डानाजोल की टैबलेट या नॉरएथिस्टेरोन की टैबलेट्स दी जाती हैं। इनके अलावा खून की कमी की भी पूरी की जाती है। कुछ फाइब्रॉइड जो अंदरूनी सतह पर होते हैं और जो पॉलिप का आकार ले लेते हैं उन्हें निकाला जाता है, जिसे पॉलिपेक्टमी कहते हैं। और 40 से कम वर्ष की महिलाएं या वैसी महिलाएं जिनकी फैमिली अभी पूरी नहीं हुई है, उनमें अगर फाइब्रॉइड हो जाए

0: फाइब्रॉइड को पेट के ज़रिए निकाला जाता है, जिसे मायोमेक्टमी कहते हैं। और 40 से ज़्यादा वर्ष की औरतें या वैसी औरतें जिनके मासिक बंद हो चुके हैं या बंद होने वाले हैं, उनमें अगर फाइब्रॉइड हो जाए तो उसमें गर्भाशय और अंडेदानी दोनों को या तो पेट के ज़रिए या लैप्रोस्कोप के ज़रिए निकाल दिया जाता है। इसके अलावा रोगी को किसी भी योग्य चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए।
1: आज की स्वास्थ्य चर्चा में आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे गर्भाशय में सूजन के बारे में। विशेषज्ञ थी डॉक्टर हिना आरजू। स्वास्थ्य चर्चा का ये कार्यक्रम आप सुनते हैं प्रत्येक दिन सुबह 6:05 पर। हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। अब लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। वंदना में पहली प्रस्तुति देशभक्ति परक ये गीत समवेत स्वरों में।

तुलसीदास की ये भक्ति रचना आप सुन रहे थे पुरुषोत्तम दास जलोटा के स्वर में। आइए अब सुनते हैं सूरदास का ये भजन। ये स्वर है जगजीत सिंह का।

कवि प्रदीप और साथियों के स्वरों में अभी आपने ये भक्ति गीत सुना। आइए ये भजन सुनते हैं शर्मा बंधु के स्वरों में।

शर्मा बंधु के गाए इस भक्ति गीत के साथ ही भक्ति संगीत का हमारा ये कार्यक्रम वंदना अब समाप्त होता है। वंदना में आज के स्वर थे पुरुषोत्तम दास जलोटा, जगजीत सिंह, प्रदीप, शर्मा बंधु।

और साथियों के। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे अगले कार्यक्रम रामचरितमानस गान का थोड़ा इंतजार कर लें।

0: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। आप सुन रहे हैं हमारी आज की पहली सभा के कार्यक्रम। आइए अब सुनते हैं रामचरितमानस गान।
1: So 98, 398.

लोमश ऋषि के शाप से ब्राह्मण शरीर धारी काकभुशुंडी को कौवे का शरीर प्राप्त हुआ, किंतु साथ ही ऋषिवर ने उन्हें राम मंत्र भी दिया। श्री राम का ध्यान करने की विधि बताकर उन्होंने श्री रामचरित सुनाया, जिसे स्वयं उन्होंने भगवान शिव से सुना था। अत्यंत प्रेम से इनके सिर पर हाथ रखकर ये वर दिया, उन्हें प्रभु कृपा प्राप्त होगी और अपनी इच्छा के अनुसार वे जो भी रूप धारण करना चाहेंगे कर पाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण वरदान उन्हें ये प्राप्त हुआ कि अपना शरीर त्याग करने की इच्छा करने पर ही मृत्यु उनका वरण करेगी, अन्यथा नहीं। उन्हें कोई भी दोष, कोई अवगुण व्याप्त नहीं होगा और अपनी इच्छा मात्र से ही जिस उपलब्धि की कामना करेंगे वो उन्हें सहज ही प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार अपने पूर्व जन्मों की कथा सुनाकर काकभुशुंडी ने गरुड़ से कहा, हे पक्षीराज, मैं यही कौवे का शरीर धारण कर 27 कल्पों से यहाँ निवास कर रहा हूँ। मुझे कौवे का शरीर इसलिए सबसे अधिक प्रिय है क्योंकि इसी शरीर से मैंने श्री राम की अविचल और अखंड भक्ति पाई है।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान। मुख्य स्वर थे अनुराधा पौडवाल और भूपिंदर सिंह के। हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। जानकारी प्राप्त कीजिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। अब से थोड़ी देर बाद 7:05 पर आप सुनेंगे हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार मिथिला। सुनिएगा उर्दू प्रोग्राम अंजुमन, इसी सभा में 9:10 पर। इसे हम अपने पटना केंद्र से रिले करेंगे। आज सुबह 10 फिल्म संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे फिल्मों से लिए गए कुछ कव्वालियां। दिन में 11 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज कलाकार होंगे पंडित विश्वमोहन भट्ट। इनसे आप सुनेंगे मोहन वीणा। NCERT ये प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा दिन में 11:30 पर। मध्याह्न 12 का समय फिल्म संगीत का होगा। हमारी बहनें अपना कार्यक्रम सुनेंगी नारी संसार दोपहर 12:30 पर। आपकी फरमाइश पत्रों पर आधारित ये फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनिएगा दिन में 1:15 पर। कुछ फिल्मी गाने हम आपको दिन में 2:30 पर भी सुनवाएंगे। रोजगार सूचनाओं के लिए वक्त होगा दिन में 2:10। शाम 5 हमारे युवा श्रोताओं के लिए कार्यक्रम होगा युववाणी। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। आज की युवाणी में चर्चा होगी हरित युवा हरित भारत। शाम 5:40 का समय फिल्मी गीतों का होगा। सुनिएगा हफ्तावार जायजा शाम 6:10 पर। महाकवि विद्यापति की कुछ रचनाएं सुनिए आज संध्या 6:15 पर। हमारा ग्रामीण प्रसारण आप सुनेंगे शाम 6:30 पर। गांव घर के अंतर्गत ग्रामीण बच्चों के लिए कार्यक्रम होगा नन्हा मुन्ना राही। 7 का समय संध्या खेती गृहस्थी का होगा। फसल में खरपतवार नियंत्रण के बारे में किसान भाइयों को जानकारी दी जाएगी, साथ ही मौसम पूर्वानुमान और समसामयिक कृषि कार्यों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7:52 पर और रात 10 पुराने फिल्मी गानों का फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम होगा हेलो आकाशवाणी। शब्द शिल्प आकाशवाणी भागलपुर की

विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर यह नवदिल्ल्यां वेनेजुएला देशस्य कार्यवाहक राष्ट्रपतिना डेल्सी रोड्रीज इत्यनेन सह अमिलत् द्वावेव नेतारो भारत वेनेजुएला देशयो संबंध विषये चर्चां कृतवन्तौ। ऊर्जा व्यापार निवेश स्वास्थ्य सेवा वाहन च इत्यादीनि क्षेत्राणि अधिकृत्य सहयोगं वर्धयितुं नूतनान् अवसरान् च अन्विष्यताम् इति वार्ताः।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक जनसभा का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री आज ही दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और समुदायों में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग शारीरिक फिटनेस से कहीं अधिक स्वस्थ रहने के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
1: योग भोग से भी मुक्ति देता है और रोग से भी मुक्ति देता है, और सबसे अहम बात कि मिनिमम बजट में हेल्दी लाइफस्टाइल का ये सबसे उत्तम उपाय है। इसलिए आपको ये मंत्र याद रखना है, हर रोज योग भगाएगा सारे रोग।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और ब्रिटेन की विदेश सचिव येवेट कूपर ने कल नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन विजन 2035 की समीक्षा के लिए पहली वार्षिक बैठक की। दोनों नेताओं ने इसके विकास, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा तथा शिक्षा के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के अवसरों का स्वागत किया और इसके शीघ्र लागू होने की आशा व्यक्त की। दोनों नेताओं ने पारस्परिक महत्व के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों तथा राष्ट्रमंडल सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के विषयों पर भी चर्चा की। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। SBI शोध रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपए के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरलता उपाय अपना सकता है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में 1987 बैच के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी तरुण कपूर का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि श्री कपूर का विस्तारित कार्यकाल 10 जून से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, आपसी संपर्क और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने श्री कश्यप के निधन पर शोक व्यक्त किया है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और इसके संरक्षण के लिए

जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 को हुई थी। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुकरण ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में कल भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोनताई और कैंग खाईजिंग को शिकस्त दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मीडियम वेव
1: 231.5 मीटर पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार मिथिला।

0: नमस्कार मिथिला,
1: नमस्कार मिथिला समस्त श्रोतागण के आजुक एहि अंक में भोरे भोर नमस्कार करै छी। हम हमरा समय भाई कुशल,
0: आज के अंक में मैं हूँ कुशल। प्रवीण जी आपको भी मेरा नमस्कार।
1: और सब दिन हम सब कार्यक्रम के शुभारंभ करै छी एकटा सुंदर सा विचार यानी सुविचार सा। तो आजुक सुविचार महात्मा गांधी के उक्त अछि, शिक्षा से मेरा मतलब मनुष्य के नैतिक मूल्यों से है। तात्पर्य ई अछि जे शिक्षा किएक और शिक्षा लेला के बाद हमर नैतिक मूल्य कतेक जागृत अछि, एहि पर विवेक से काम हमरा सबके लेबाक चाही। शिक्षित भेनाइ के मतलब ही होइ छै जे नीक या बेजाय के ज्ञान अवश्य अपना आप में राखी और दोसरों के ऐसा प्रभावित करी, एही से स्वच्छ समाज बनै छै। और समाज में एकटा जे कर्मठता होइ छै से अबै छै, और विचार से लोक पवित्र होइए, वाणी से लोक पवित्र होइए, तो जीवन में सब काज सफल होइ छै। ज्ञात हो कि पढ़ब लिखब के शैक्षणिक हुआ के किछु अर्थ हेबाक चाही। हम शिक्षित भऽ कऽ यदि कोनो अनैतिक काज करै छी, कोनो गैरकानून काज करै छी जानि बुझि कऽ, तऽ ई एकटा महापाप अबै छै। तैं शिक्षित भेला के मतलब की होइ छै, तकरा आत्मसात कऽ कऽ हमरा सबके जीवन के आगू लऽ जेबाक चाही, अपनो और समाज के सेहो। कार्यक्रम के आगा बढ़बै छी। आजुक दिन के इतिहास में की सब अछि से तऽ आइ विश्व पर्यावरण दिवस है, एहि पर चर्चा करब, लेकिन किछु इतिहास के और अंश कुशल।
0: आज ही के दिन 1967 में मध्य पूर्व में ऐतिहासिक 6 दिवसीय युद्ध की शुरुआत हुई, जिसमें इजराइल ने मिस्र, जॉर्डन और सीरिया को हराकर अपना भूभाग काफी बढ़ा लिया। सन 1984 में आज ही के दिन पंजाब के अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर से चरमपंथियों से बाहर निकालने के भारतीय सेना ने ऑपरेशन ब्लू स्टार की शुरुआत की। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आज यानी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की।
1: सत्य कहलौं, आई विश्व पर्यावरण दिवस यानी प्रकृति के हम सब केना रक्षा करी, तै पर विचार गोष्ठी बैठकी कार्यक्रम सब होयत ओ विश्व संसार भरि में। आओ हम सब ई जानी जे प्रकृति सब के लेल हमर जीवन अछि, आबय वाला भविष्य के जीवन अछि। पर्यावरण के केना सुरक्षा होय, ओकरा कोना आघात नहीं पहुँचे, तै पर आजुक दिन हम सब विचार करब और ओकरा जीवन में लागू करब। हमरा सबके ई सोचक चाही जे प्रकृति हमरा सब के लेल अछि और ओ कोनो भेदभाव नहीं करैत अछि ककरो में। नहीं विश्व स्तर पर जे प्रकृति अछि मनुष्य के जीवन के आगू बढ़बैत अछि। अगर प्रकृति पर्यावरण नीक नहीं अछि तो मनुष्य निश्चित रूप से बीमार पड़ जाइत अछि। कारण जे पर्यावरण के नुकसान होइत अछि ओकर रक्षा केना हुए, आइ ग्लोबल वार्मिंग भऽ रहल अछि, असमय में किछु भऽ रहल अछि, तेज गर्मी, तेज बरसात।

0: कई कारण से भ रहा है। एक कारण होते हैं पर्यावरण, पर्यावरण के दोहन जै प्रकार से भ रहा है आधुनिक युग में, ओ कतौ ने कतौ हमारा समाज के नीचा से लौ रहा है। आओ हम सब मिलकर आज दू दिन विचार करी और गाछ पर गाछ लगाबी, एकटा मनुष्य एकटा मानव यानी कम से कम 10 गाछ अपन जमीन नहीं तो की भेल, कतौ लगाओ रोड बाट घाट कतौ पोखर अहाँ एकटा वृक्ष लगाऊ। आओ जनै छी प्रकृति संग जुड़ाव से मनुष्य के सभ्यता बचै छै और हमरा सब के आगू बढ़ के लेल प्रकृति और पर्यावरण दोनों स्वच्छ चाहिए, तखने हमर सब के भविष्य सुरक्षित होयत, नहीं तो फिर की होयत ते पर विचार आजुक दिन हम सब करब।
1: तो प्रवीण जी आज के दिन यानी 5 जून 1973 में पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, तभी से यह समुद्री प्रदूषण, अधिक जनसंख्या, ग्लोबल वार्मिंग, टिकाऊ विकास और वन्य जीव अपराध जैसे पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए यह एक मंच रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस सार्वजनिक आउटरीच के लिए एक वैश्विक मंच है जिसमें सालाना 143 से अधिक देशों की भागीदारी होती है। प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम ने पर्यावरणीय कारणों की वकालत करने के लिए व्यवसायों, गैर सरकारी संगठनों, समुदायों, सरकारों और मशहूर हस्तियों के लिए एक थीम मंच प्रदान किया है।
0: जी और पर्यावरण संरक्षण कतौ हो से हम किस हालचाल में ले, ओना अपना ओठम बहरी प्रखंड में एक वटवृक्ष है जे 700 से 800 साल पुरान है, 5 बीघा में से ओ फैलल है पूरा, 1 बीघा में तो जड़ है। पर्यावरण के इससे पैघ उदाहरण नहीं भ सकै छै, आइ ओकर छाँव में ओकर शीतलता में कतबो गर्मी होइए, आम जन जाइ छथि ओहिठाम बैसै छथि, ओ आनंद प्रकृति दै छै और प्रकृति पहले कहलहुँ भेदभाव नहीं करै छै। एहि पर विशेष बात में पहले आप कार्यक्रम के आगू बढ़बैत सुनै छी एकटा सुंदर सन मैथिली सुगम संगीत।

0: हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: इस संदेश से पहले सुन लो सुमधुर मैथिली गीत अरविंद कुमार झा के स्वर में।
4: और प्रवीण जी, जैसा कि आज है शुक्रवार, हमारे श्रोताओं को भी इंतजार रहता होगा कि आज है गांधी कथा, लेकिन उससे पहले हम अपने चंक में चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हालचाल की ओर। तो सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर नजर डालने का आज का हालचाल लेकर उपस्थित हैं प्रवीण कुमार झा।
3: नमस्कार, हालचाल संग हम प्रवीण कुमार। आई विश्व पर्यावरण दिवस अछि, ठाम ठाम पर्यावरण पर कार्यक्रम होयत। प्रकृति प्रेमी सब आजुक दिन पर्यावरण पर विशेष ध्यान देता और ओहिसँ जुड़ल कार्यक्रम करता। हमर प्रकृति संग जुड़ाव रहे तखने पर्यावरण कायम रहत, और पर्यावरण नीक रहत तो हमर प्रकृति बचल रहत, हम सब सुरक्षित रहब। अइ आशा के संग आम जन से ई निवेदन जे जतय समय भेटा जखन भेटा प्रकृति संगे जुड़ाव करी, गाछ वृक्ष लगाबी जे हमर जीवनदायिनी अछि। दरभंगा बहेरी प्रखंड के पघारी गांव में 700 से 800 साल बौर के गाछ अछि, प्रकृति के अनमोल धरोहर। लगभग 1 बीघा में एकर जड़ से पसरल अछि आ लगभग 5 बीघा में एकर पसार अछि। अइ गाछ के देखल है लोग ठाम ठाम से अबैत अछि, पर्यावरण रक्षा के ऐसे पैघ उदाहरण नहीं भेट सकैत अछि। ओहिना कलकत्ता के भी गार्डन अछि, ओहिठाम 600-700 साल पुरान वटवृक्ष अछि, यानी वृक्ष हमर जीवनदायिनी अछि, हमर रक्षा करैत अछि और संगे संगे पर्यावरण के

0: सुरक्षित करैत अछि। आओ हमसभ आजुक दिन एकटा वृक्ष पौधा लगाबी अवश्य। दरभंगा पुलिस प्रशासन के और अधिक प्रभावी बनाबै हेतु SSP केलाइन 8 गोट पुलिस अधिकारी के ट्रांसफर और पुलिस प्रशासन के आम जनता के सुरक्षा में कोनो कोताही नहि हेबाक चाही तकर निर्देश देलनि। आजुक पुलिस स्मार्ट प्रशासन संग सुरक्षा मूल मंत्र हेबाक चाही से कहलनि। दरभंगा जिला में लगभग 350 अस्पताल सब के बिना मानक के आग सुरक्षा के प्रमाण पत्र दौ देल गेल अछि। हॉस्पिटल रोड में तंग गली सब में निजी अस्पताल के जाल बिछल अछि सुरक्षा मानक के ताक पर राखि कऽ। और तो और DMCH में 7 साल 6 महीना के एक्सपायर सिलेंडर सेहो लागल अछि। ई चिंता के विषय अछि, एहि में सुधार के आवश्यकता अछि। आम जनता के हित में सुरक्षा सँ कोनो भाव मोल नहीं हेबाक चाही। आम जनता के सुरक्षा सबसे पैघ सुरक्षा हो। काल्हि मुजफ्फरपुर में एहि मानक में एक अस्पताल में घटना भेल अछि से देखैत एहि सुरक्षा सब पर विशेष ध्यान देबा के आवश्यकता अछि। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में गुरुवार मानि काल्हि कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी के अध्यक्षता में सिंडिकेट के बैठक भेल। कतेको निर्णय लेल गेल, विश्वविद्यालय के विकास और सुरक्षा पर विशेष ध्यान देल जाय से कहल गेल। कैंपस में बुनियादी ढांचा और सुरक्षा प्रशासनिक कार्यप्रणाली में नव दिशा निर्देश देल गेल। ई हालचाल एखन आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहल छी।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: हाल चाल में पुनः एक बार स्वागत है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग में संस्कृत वाग्यम पर्यावरण चिंतन पर एकटा राष्ट्रीय सेमिनार आयोजन भेल। हम सब प्रकृति के रक्षा करब आ तो प्रकृति हमरा रक्षा करत, डॉक्टर विनय कुमार कहलनि। 19 मास के बितला के बादो दरभंगा एम्स के निर्माण में देरी भेला पर जनता में आक्रोश अछि। नागरिक बैठकी आम जनता के समय पर काज हेबाक चाही तकर उदासीनता में देरी पर आरोप लगेलनि। 7 तारीख को आम जनता के एकटा एहि विषय पर बैठकी भ रहल अछि। दरभंगा प्रखंड के बाल संरक्षण समिति के मासिक बैठकी भेल। जिला के विभिन्न प्रखंड सब में नव बनय वाला 8 डिग्री महाविद्यालय सब के आरंभ जुलाई से होयत। पठन पाठन के समीक्षा कयल गेल और जिला अधिकारी कहलनि जे सौ समय सब काज भ जायत, तै विषय पर चिंतन कयल गेल और कहल गेल जे समय पर जुलाई से ई विद्यालय महाविद्यालय सब काज करय लगता। ललित नारायण मिथिला दरभंगा स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग में वाग्यम विषय पर बैठकी भेल। एहि विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार के आयोजन सेहो भेल। कुलपति आवासीय कार्यालय परिसर में एकटा नव सिंडिकेट हॉल के निर्माण होयत से निर्णय काल्हि सिंडिकेट के बैठकी में लेल गेल। जून में हुआ वाला सीनेट के बैठकी स्थगित भेल। एहि संग हालचाल संपन्न भेल। नमस्कार, आओ किछु गपशप करी। हम मौसम के बारे में जानकारी लो ली। आजुक जे अधिकतम तापमान रहत ओ 37 डिग्री सेल्सियस रह सकैत अछि और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहत। तेज बसात चलक के संभावना अछि।
4: और मौसम संबंधित कुछ बात करें तो ग्रामीण कृषि मौसम सेवा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर एवं
5: भारत मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से जारी 3 से 7 जून 2026 तक के मौसम पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वानुमान की अवधि में उत्तर बिहार के जिलों में मौसम के आम तौर पर शुष्क रहने की संभावना है। बेगूसराय, समस्तीपुर, सारण, सिवान, पूर्वी चंपारण एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में

0: विशेष रूप से आज यानी 5 जून 2026 को लू हीट वेव की स्थिति बन सकती है। इस दौरान अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है, जिसके चलते यह तापमान 37 से 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। अधिकांश क्षेत्रों में 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मुख्य रूप से पूर्वा हवा चलने की संभावना है और सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75% तथा शाम में 20 से 25% रहने की संभावना है।
1: इछल किस मौसम संबंधी जानकारी और किस चर्चा को ली आए आजुक दिन पवित्र अच्छी पर्यावरण दिवस यानी प्रकृतिक पूजा करवाक दिवस पर्यावरण केना समुचित ढंग से रहे ओहि में आम मानव के की सहयोग हेबाक चाही तकर जागृत के दिवस आओ हम सब जे प्रकृति के छाव में रहे छी शहर हुए या गांव हुए कस्बा हुए या टोला हुए प्रकृति और पर्यावरण के रक्षा सब के लिए अहम भ जात अछि। शहरीकरण के दौर में प्रकृति पर पर्यावरण पर ओतेक विशेष ध्यान नहीं देल जा रहल अछि। शहर में गाछ वृक्ष के अभाव अछि, जतौ जतौ गाछ वृक्ष के अभाव अछि ओतौ देखल जाइत अछि जे एहि गर्मी में की अनुभव होइ छै, लेकिन जतौ जतौ एखनो प्रकृति बचल अछि गाछ वृक्ष बचल अछि ओहिठाम जे आम आदमी रहै छथि से एखनो नीक छथि। शहर में अहाँ कतबो AC लगा लियो प्रकृति लग अहाँ के अभे पड़त, पर्यावरण के रक्षा अहाँ के करे पड़त, एहि के लेल जागृत अहाँ के लोक के करे पड़त। ई हमर सब के कर्तव्य अछि और एकरा मूल कर्तव्य में लऽ कऽ चाही, कारण प्रकृति अछि तो पर्यावरण अछि, पर्यावरण अछि तो हम सब छी। यदि असुन एहिमे कोनो तरह कमी होइ छै ओहिठाम देखल गेलै है जे प्रकृति सँ छेड़छाड़ जे होइ छै तऽ पर्यावरण नुकसान होइ छै, ओहिके बाद की होइ छै से हम सब दृष्टांत में देख रहल छी और देखैत रहब। तैं आजुक दिन चिंतन करू जे प्रकृति हमर केना बचल रहे पर्यावरण सुरक्षित रहे।
0: तो प्रवीण जी कहने का मतलब ये है कि अगर आप वृक्षारोपण लगा नहीं सकते हैं तो कम से कम उसे कटाव से बचे और कटने से बचाए, जब अन्यथा बहुत जगह आप देखते हैं पेड़ पौधे को लोग काट रहे हैं। लोग हो सकता है कि आप नहीं लगा रहे, लेकिन बहुत से लोग ऐसे कि लगाते हैं लेकिन बहुत से लोग उसको फोटो ही तक रहने तक ही सीमित रहता है, लेकिन उसके बाद फिर वो वही पेड़ अगले साल दिखता है कि नहीं दिखता है ये पता नहीं। लेकिन सिर्फ कर्तव्यों पे नहीं चलना है, सिर्फ पर्यावरण दिवस नहीं बनाना है, उसको अपने ऊपर लागू भी करना है। और खासकर आजकल प्रवीण जी आप देख रहे हैं कि लोग मकान और मकान उकान बनाने के चक्कर में और डबड़े को दिन भर दिन भरते जा रहे हैं और मकान बनाने के चक्कर में पेड़ जहाँ तहाँ जो पुराने पेड़ हैं उनको काट के मकान की ओर जा रहे हैं, उसी कारण पर्यावरण और ज़्यादा ही दूषित हो रहा है।
1: सत्य कहूँ, एकदम सत्य कहै छी अहाँ। ओहि कारण सरकारो अनलक जल जीवन हरियाली के कार्यक्रम जे चलि रहल अछि बिहार में। अहाँके बात हम मानै छी जे सिर्फ फोटो खचा कऽ जे हम गाछ लगबै छी और ओकरा प्रचार कऽ देनाइ से प्रकृति रक्षा नहि होइ छै। जे गाछ अहाँ लगेलहुँ ओ गाछ जीवैए कि नहि, एकटा गाछ के जेना हम एकटा नव बच्चा के नव नेना भुटका के हम पोसै छी पालै छी ओकरा सुरक्षा दै छी समय समय पर ओकरा भोजन आहार दै छी तखने ओ आगाँ बढ़ैए। तहिना कोनो वृक्ष के एकटा बच्चे जकाँ कोनो गाछ के एकटा बच्चे जकाँ पोसऽ पड़ै छै।
0: और कहने का मतलब है कि अब हम इसमें बात कर सकते हैं कि इसमें हम अपना योगदान कैसे दे सकते हैं। पर्यावरण को बचाना केवल सरकारों का ही नहीं बल्कि हम सबकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। पेड़ लगाएं, अपने आसपास ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ और पौधे के लगाए, नहीं तो नहीं लगा सकते हैं, जगह नहीं है तो जो पेड़ पौधे लगे हैं उसकी देखभाल आप करें। और प्लास्टिक को कहे बाय बाय, सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करें, कपड़े या जूट की थैली का उपयोग करें।
1: एकदम सत्य कहलहुँ, एखन अहाँ प्लास्टिक के चर्चा कहलहुँ तऽ हमर सबके प्रकृति के पर्यावरण के एखन यदि सबसँ पैघ केओ दुश्मन भऽ रहल अछि तऽ ओ प्लास्टिक। हमसब एकटा युग आयल रहै एकटा प्लास्टिक के जहन आविष्कार भेल रहै तऽ कहलहुँ जे नव युग छै एकरा प्लास्टिक युग कहल जाए। एखनो देखल जाइत अछि प्लास्टिक किया हमसब नहीं छोड़ रहल छी, कि आबयवला भविष्य के लेल हमसब इएह ने पर्यावरण देबै। एखन देखै छी ठाम ठाम प्लास्टिक के ढेर, कि हम करै छी सब करै छी प्लास्टिक। अहाँ अपना जीवन जे अछि नित्य दिन के दिनचर्या ओहिमे ध्यान दियौ जे कतेक प्लास्टिक के

0: खाली अहाँ घर अनै छी कि अनै छी कोनो बात नहि, ओकरा अहाँ सुरक्षा केना दै छी? ओकर सुरक्षा छै एक एकटा प्लास्टिकके टुकड़ाके बीच कऽ ओकरा राखी आ ओकरा जतऽ रेस्ट कचरा इकट्ठा होइ छै ततऽ दऽ दिए, ताकि ओ इम्हर उम्हर पर्यावरणमे नहि चलि जाए।
1: और प्रवीण जी, हमने जब इतनी बात की तो सिर्फ पेड़ और पौधे की कहाँ, क्यों हम गाड़ी घोड़े की भी बात कर सकते हैं, क्योंकि प्रदूषण फैलने का एक बहुत बड़ा कारण है गाड़ी घोड़ा भी। क्योंकि आजकल लोगों को देखते हैं कि छोटे से छोटा काम भी चाहते हैं कि गाड़ी खट से उठाए और चल दिए।
0: हाँ।
1: तो कहीं ना कहीं प्रदूषण कम करने के लिए निजी वाहनों की जगह भी सार्वजनिक परिवहन या साइकिल का उपयोग आप कर सकते हैं, जिससे प्रदूषण में कमी आए।
0: एकदम सत्य कह रहा हूँ, ई जागरूकता जहिया भऽ जेतै अपना ओहिठाम, तहिया सबसँ पैघ रक्षा हेतै पर्यावरण के। हमसब बिना बात के गाड़ी उठ, एखनो हमर देश के प्रधानमंत्री ई आह्वान कला जनता सँ जे अहाँ बिना मतलब के कोनो वाहन के उपयोग नहि करू, यदि कोनो मतलबे विशेष अछि तखने, नहि तऽ साइकिल। आइ हम देखै छी विदेश मे बहुतो एहन देश अछि जतऽ एतऽ नहि मोटर वाहन के से नहि एते जोगाड़ अछि, देखै छी ओ सब साइकिल, बड़का बड़का आदमी सब साइकिल चलबै छथि।
1: उससे दो तीन चीज हो जाती प्रवीण जी, एक तो आपका स्वस्थ भी आप रह सकते हैं। बहुत से लोग होते हैं जिनके पास समय नहीं है, लोगों के पास आजकल तो खाने पीने का समय नहीं, तो व्यायाम और योग का समय कहाँ से होगा। तो साइकिलिंग में आप देखते होंगे, साइकिल करने से आपका व्यायाम भी ऑटोमेटिक अपने आप ही हो जाता है, आपको उसके लिए कुछ समय नहीं निकालना पड़ेगा। उससे दो फायदे होते हैं, एक तो प्रदूषण भी कम होता है, और दूसरा आपका व्यायाम भी अपने आप हो जाता है, आपको उसके लिए समय निकालने की आवश्यकता नहीं है।
0: एकदम एहिठाम सत्य कहना ओ बात के माने छी। एहिठाम देखियो बाहर लोग साइकिल नहीं चलाता, लेकिन जिम जे छै, जिम खाना, ओहिठाम जाकर दू घंटा पसीना बहेता, ठीक छै, हम ओकर विरोधी नहीं छी, लेकिन कम से कम बाहर तो आओ, प्रकृति में तो आओ, पर्यावरण पर तो आओ, तकर जिम्मेदारी हमरा सबके अछि। हमसब कार्यक्रम के आगू बढ़बै छी, फेर चर्चा करब, पहले एकटा सुमधुर मैथिली गीत, माफ करब, फिल्म संगीत।

0: एखन फिल्म संगीत सुनलहुँ नीले गगनके तले। निश्चित रूपसँ हमरा सबके नीले गगनके तले रहऽ पड़ैए, जीवन अहिके नीचाँ चलैए, नीक या बेजाय सबके अनुभव होइए, लेकिन जागृत बनल रहै, प्रकृतिसँ जुड़ल रही, कतौ ने कतौ माध्यम बनाबी, गाछ वृक्षके रक्षा करी आओर ओकरा आगाँ बढ़ाबी, तखने हमर भविष्य नीक अछि, पर्यावरण नीक अछि। आओ आइ शुक्र दिन।
1: हाँ, तो इसलिए जब आगे बढ़ने की बात है तो अपने कार्यक्रम के चंग को भी आगे बढ़ाते हैं।
0: हाँ।
1: आज है शुक्र दिन, शुक्रवार, आज हम लोग सुनते हैं गांधी कथा। ताइए सुनते हैं गांधी कथा।

श्रोताओं नमस्कार। सत्य, सत्याग्रह और अहिंसा का पुजारी मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी, जिन्हें भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित करता है,

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अपने देश की आज़ादी के लिए अहिंसक शांतिपूर्ण संघर्ष के लिए विश्वभर में वंदनीय रहे। गांधी जी को यह प्रसिद्धि न तो उनकी संपत्ति के कारण मिली और न ही उनकी सत्ता के कारण ही मिली, बल्कि उन्हें यह प्रसिद्धि उनके गुणों के कारण मिली। महात्मा गांधी ने अपने इन्हीं गुणों के बल पर सारे विश्व को अपनी ओर आकृष्ट किया और विश्व के अधिकांश महापुरुषों की मान्यता यह है कि विश्व को सर्वनाश से बचाने का एकमात्र रास्ता गांधी का मार्ग ही है। कहा जाता है कि आप अपने व्यवहार और कला से हिंसक पशुओं को भी अहिंसक बना सकते हैं। ऐसी ही कला गांधी जी में थी। जो भी गांधी से मिला उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। गांधी जी में सत्य की ऐसी चुंबकीय शक्ति थी कि कोई भी उसमें बंधा चला आता था और हमेशा के लिए गांधी जी का हो जाता था। गांधी जी गीता की भांति ही कर्म करने तथा फल की इच्छा न करने की प्रेरणा दिया करते थे। वह लोगों को सत्य की राह पर चलना सिखाते थे और दिग्भ्रमित लोगों को सही मार्ग पर लाना अपना कर्तव्य समझते थे। गांधी जी प्रत्येक काम समय पर करते थे और दूसरों से भी अपेक्षा करते थे कि वे लोग समय का सख्ती से अनुपालन करें। वे समय के अनुपालन में किसी भी प्रकार के भौतिक साधन को मार्ग की बाधा नहीं बनने देते थे। इसके साथ साथ गांधी जी छुआछूत और सामाजिक असमानता का विरोध भी करते थे। इसके लिए उन्होंने स्वयं को भी हरिजन घोषित कर दिया था। हरिजन यानी ईश्वर का व्यक्ति। गांधी जी को प्रकृति से प्रेम था। उनका कहना था कि ईश्वर ने मनुष्य की सत्यता के लिए प्रकृति का निर्माण किया। प्रकृति की प्रत्येक वस्तु, फल फूल वन उपवन जल वायु पहाड़ नदियाँ रेगिस्तान इत्यादि अपने आप में अनमोल हैं, किंतु मंद बुद्धि मानव अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति को नष्ट कर रहा है, वायु को जल को प्रदूषित कर रहा है। गांधी जी को बच्चों से भी बहुत लगाव था। वे बच्चों को हमेशा सत्य के मार्ग पर अग्रसर होने तथा समय का सदुपयोग करने की प्रेरणा देते थे, क्योंकि उनका कहना था कि बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं। बच्चे कच्ची मिट्टी के समान होते हैं। उनका रूप बचपन में ही जिस प्रकार गढ़ दिया जाता है, बड़े होकर उनमें उसी रूप का विकास होता है। गांधी जी ने अहिंसा का मार्ग अपनाते हुए अंग्रेजों को चुनौती दी और वह

में सफल भी हुए। उन्होंने देश में घूम घूम कर जनता को अपनी भूमि, अपनी भाषा और सादा जीवन के प्रति प्रेम का पाठ पढ़ाया। निम्न और दुर्लक्षित समाज की सेवा करना ही उनका पहला कर्तव्य था। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के आदर्श को सामने रखते हुए राम राज्य की कल्पना को साकार रूप देने के लिए स्वयं को समर्पित किया। इसी कारण वे जन जन के लोकप्रिय नेता बने और महात्मा कहलाए। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, महात्मा गांधी के आह्वान पर भारतवर्ष नवीन महानता के रूप में उसी प्रकार प्रस्फुटित हुआ जिस प्रकार प्राचीन काल में महात्मा बुद्ध के आह्वान पर समस्त जीवित प्राणियों में दया और संवेदना का भाव प्रस्फुटित हुआ। गांधी की दृष्टि में 7 भयंकर पाप हैं। पहला, नैतिकता विहीन व्यापार। दूसरा, मर्यादाहीन भोग। तीसरा, सिद्धांतहीन राजनीति। चौथा, चरित्र रहित ज्ञान। पांचवा, मानवता विहीन विज्ञान। छठा, कर्म विहीन धन। और सातवा, बलिदान रहित पूजा। ये शाश्वत सत्य है कि सच्चे तथा महान व्यक्ति को सदैव तलवार की धार पर चलना होता है। उसकी जिंदगी फूलों की सेज नहीं होती। इन दुर्गम मार्गों को पार करके ही वह अपने व्यक्तित्व के प्रकाश से दुनिया को रोशन करता है। इन सभी के संस्मरण हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। उनकी जीवनियों का अध्ययन हमारे लिए सदैव ही शिक्षाप्रद और मार्गदर्शक रहा है। आज गांधी जी हमारे बीच नहीं है, वो सच्चे धर्म की खातिर शहीद हो गए। लेकिन आज भी जब हम उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद करते हैं तो हमारा मस्तक गर्व से ऊंचा हो जाता है। मानवता के लिए उनके दिए गए संदेश हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं।

0: तो कार्यक्रम बढ़ाते हैं। आज जो आजकल का चलन देख रहे हैं प्रवीण जी,
1: ऑनलाइन
0: और ऑफलाइन, पहले हम लोग करते थे ऑफलाइन शिक्षा और आज के समय में ऑनलाइन शिक्षा का ज्यादा चलन हो चुका है।
1: विषय तो बड़ा गंभीर है, ओना दोनों ठीक है। हम याद करे छी दू साल तीन साल पहले कोरोना जेहन एक वायरस आयल छल, जै में ऑफलाइन शिक्षा ऑनलाइन शिक्षा के महत्व बढ़ गेल, ऑफलाइन के घटि गेल, यानी संपर्क टूट तोड़ के रहे कड़ी तोड़ के रहे तै ओकर महत्व ओहि समय बढ़ गेल। आजुक दिन ओहि के बाद से एखनो बचब के लेल कहलखिन जे बहुत काज अहाँ होम यानी घर में रह के कह सकै छी ऑनलाइन। आब कहबा कते पढ़ाई पर एखन गप करब, छात्र छात्रा हेतु दुनू ठीक अछि। अहाँ समय परिस्थिति केहन अइ ते अनुसार निर्णय लियो, ऑफलाइन ठीक है ओहो जरूरी है आ ऑनलाइन तो आजुक युगे अछि। एहि युग में ऑनलाइन आ ऑफलाइन में विशेष अंतर हम नहीं देखे छी कुशल जी।
0: तो प्रवीण जी आप कह सकते हैं कि पुराना चलन फिर से वापिस आ चुका है। पहले के जमाने में आप देखते थे, खैर हम लोग तो नहीं देखे, आप लोग देखे होंगे कि पेड़ के नीचे में गुरु जी शिक्षा देते थे और सामने में बच्चे लोग बैठ के उनसे शिक्षा लेते थे बिना किताब के बिना ज्ञान के। वही देखा जाए तो घूम फिर के फिर से वही चलन वापस आ गया, थोड़ा सा अपडेट हो गया है कि लोग ऑनलाइन शिक्षा ले रहे हैं और शिक्षा कंप्यूटर शिक्षक कंप्यूटर पे हैं और आप सुन के स्टूडेंट्स उसका नोट्स बना रहे हैं या उसको अपने ध्यान से पढ़ रहे हैं। तो घुमा घुमा कर देखा जाए तो दोनों पुराना ही चलन वापस।
1: एकदम सत्य कहलाऊं और बात एकदम अहाँ एकदम सत्य है, काटे क्यों नहीं कट सके जे ओ दौर आबि गेल, कनी ट्विस्ट भ गेलै, कनी बदल गेलै। पहले छला कि आमने सामने गुरु और शिष्य बैसे छला प्रकृति के छौ में, एखन की है घर के एसी में बैस के ऑनलाइन शिक्षा हम लऽ रहल छी। तो ओ ढंग पहले कहलौं जे दुनू ठीक है लेकिन ऑफलाइन के अहाँ दूर नहीं कह सकै छी, यानी कतबो किताब अहाँ कंप्यूटर और मोबाइल पर पढ़ लेब, पुस्तक जे है ओकर जरूरत पड़ते छै पड़ते रहत, किया तो ओ एकटा धरोहर अछि। तै आजुक दिन में दुनू शिक्षा ठीक है और बच्चा बच्ची सबके लेल हम कहै छी जे दुनू पर विशेष ध्यान, ऑफलाइन शिक्षा लिय आ यदि खाली ऑनलाइन अहाँ रखब तो लिखबै परीक्षा में तो लिखल जाइ छै तो फिर लिखब में दिक्कत होयत, तै पुस्तक सेहो रहबाक चाही और ऑफलाइन में कंप्यूटर हो मोबाइल सेहो रहबाक चाही।
0: तो प्रवीण जी हम लोग कार्यक्रम में और भी बात करेंगे लेकिन समय का पालन हमें करना पड़ता है और समय के पालन से अगर आप चलते हैं तो दिन भर का जो सारा काम होता है वो आप सिस्टम से एक हिसाब से कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप अपनी एक सूची नहीं बनाते हैं कि दिन भर आपकी कार्य प्रणाली क्या है तो आप कोई काम कर रहे हैं कोई काम छोड़ते चल रहे हैं। तो फिलहाल हमारे कार्यक्रम में ज़्यादा समय नहीं, फिलहाल एक अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं फिल्म संगीत।

0: नजराना तो आई अ प्रकृति के दिवस तो प्रकृति से पैग नजराना की भेट सकी है। आजुक अंक के आब हम सब समाप्त करब। उससे पहले अपने सबसे नम्र निवेदन जे हमर कार्यक्रम अहाँ सबके केहन लगे तकरा पत्राचार के माध्यम से अहाँ हमरा कह सकै छी। ऑनलाइन के माध्यम से स्मार्ट मोबाइल में अहाँ दरभंगा आकाशवाणी कह सकै छी। आओ हम सब कार्यक्रम से जुड़ी आ निक बजा के जानकारी अवश्य दी, तखने हम लोग सबके निक लगे। आजुक कार्यक्रम के अंत करे हम प्रवीण
1: आ साथ में आज के संग में मैं हूँ कुशल।
0: हमरा सबके दिया आज्ञा
1: नमस्कार, नमस्कार।

नमस्कार मिथिला, अभी आप सुन रहे थे हमारा ये दैनिक कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

0: 90 वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
1: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
2: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
1: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
0: आकाशवाणी दरभंगा।

0: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
1: हवाओं से होकर कुछ आवाजें गईं दूर दूर तक रेडियो तरंगों के वेश में। ये अनमोल तरंगें जिन तक पहुंची वे बने रेडियो श्रोता। बचपन गुजरा, जवां हुए, बुढ़ापे ने दस्तक दी। किसी का साथ रहा, किसी का छूटा, पर नहीं छूटा रेडियो, उसकी यादें, उसकी कही बातें। आइए शामिल होते हैं आकाशवाणी दरभंगा के नए कार्यक्रम में। हर महीने के पहले रविवार को दोपहर 2:30 पर रेडियो की बात श्रोताओं के साथ।

घर घर केरवाणी आकाशवाणी हृदय हृदय केरवाणी आकाशवाणी आ हृदय सबके जोड़वा लेल हम आबि रहल छी एकै क्लिक पर हमर स्टेशंस लाइव मनक बात संगीत ड्रामा स्पोर्ट्स क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर हमर सबक वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर नव भारत नव आकाशवाणी।

0: गाम घर संध्या 6:30 पर।
1: ये आकाशवाणी दरभंगा है, सुबह के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे।
2: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट

0: पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन के दौरे पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को विश्वसनीय साझेदार बताया, कहा अमेरिका का दबाव भारत रूस संबंधों को प्रभावित नहीं करेगा। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री का दमन दौरा भी होगा। प्रधानमंत्री वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4 लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुँच में सुधार होगा। जन कल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 24 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा गुजरात में ट्रांसमिशन नेटवर्क विस्तार, दहेज पीसीपीआईआर और सरिगाम जीआईडीसी में उन्नत अपशिष्ट निपटान प्रणाली और वलसाड़ में आधुनिक बिजली वितरण उन्नयन सहित कई महत्वपूर्ण औद्योगिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी आज शुभारंभ किया जाएगा। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। 4 से 8 जून तक आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग स्वस्थ रहने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
5: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
3: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये चैंपियनशिप आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले विश्व स्तर पर योग के संदेश को पहुंचाने का अवसर है।
5: 21 जून को वर्ल्ड योगा डे भी मनाया जाएगा। उस दिन दुनिया के अलग अलग देशों में योग से जुड़े आयोजन होंगे और इसका प्रमुख कार्यक्रम भारत के एक और ऐतिहासिक शहर कोलकाता में होगा। वर्ल्ड योगा डे से पहले वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप अपने आप में हेल्थ और वेलनेस की डबल डोज लेकर आ गई है।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे मुंबई में मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। 6 सदस्यीय समिति ने बुधवार को 3 दिवसीय विचार विमर्श शुरू किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अप्रैल में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया था।
4: खुदरा मुद्रा स्फीति पर आधारित महंगाई सूचकांक 4% तक सीमित रखने का लक्ष्य भारत सरकार ने रिजर्व बैंक को दिया है। असाधारण परिस्थितियों में यह सूचकांक 2-6% के दायरे में रखने की भी छूट है। सोने एवं चांदी के आभूषण तथा खानपान सामानों की कीमतें बढ़ने के कारण अप्रैल में यह सूचकांक 3.48 पर था, जो कि दिए गए दायरे के अंदर है। इसी कारण विश्लेषकों का मानना है कि रिजर्व बैंक इस बार भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। पश्चिम एशिया में उत्पन्न संकट का महंगाई तथा आर्थिक वृद्धि पर होने वाला परिणाम देखते हुए रिजर्व बैंक सतर्क दृष्टिकोण अपनाएगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। कुछ दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सीएस सेट्टी ने भी कहा था कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बदलाव नहीं करता है तो आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से जीवन भावसा।
3: मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। श्री कपूर का विस्तारित कार्यकाल 10 जून से 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ सहयोग कम करने के लिए मजबूर करने के पश्चिमी देशों के प्रयास व्यर्थ और वैश्विक स्थिरता के लिए हानिकारक हैं। प्रमुख वैश्विक समाचार एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री पुतिन ने कहा कि अमरीका के साथ भारत की राजनयिक भागीदारी दोनों देशों के चिरस्थायी संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डालती। उन्होंने कहा कि रूस भारत को एक विश्वसनीय साझेदार मानता है। श्री पुतिन ने भारत के साथ रूस के रक्षा और सैन्य संबंधों की भी चर्चा की और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के सह विकास और सह उत्पादन के बारे में भी बताया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस ने भारत को 5वीं पीढ़ी के SU-57 लड़ाकू विमान के निर्माण में संयुक्त रूप से काम करने का प्रस्ताव दिया है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खानाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खानाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। व्यापार समझौते पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत का अपना 4 दिन का दौरा पूरा किया है। एक रिपोर्ट।
5: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि इस दौरान वस्तुओं के व्यापार, गैर टैरिफ उपायों, सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा, आर्थिक सुरक्षा संरक्षण और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों सहित कई मुद्दों पर रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा की गई। मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने वाले पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत और अमरीका ने 7 फरवरी को जारी एक संयुक्त वक्तव्य में व्यापार से संबंधित एक अंतरिम समझौते पर सहमति व्यक्त की। यह भारत अमरीका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
3: आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 को हुई थी।
6: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक

0: कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। विभिन्न अभियानों, कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से लोगों और समुदायों को पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे आने तथा बेहतर और टिकाऊ भविष्य के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देशवासियों से जलवायु और भविष्य के लिए प्रकृति से प्रेरणा लेते रहने का संकल्प दोहराने का आग्रह किया है। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के दूसरे सर संघचालक माधव सदाशिवराम गोलवलकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा कि श्री गोलवलकर ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को एक मजबूत वैचारिक आधार दिया। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच जापान के काकामिगहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार आज शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। महिला अंडर 18 एशिया कप में भारत ने ग्रुप चरण में बिना कोई मैच हारे सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गरज के साथ आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
2: धन्यवाद जागृति। प्रधानमंत्री मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति की मुलाकात को आज प्रकाशित अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला से बढ़ेगी कच्चे तेल की खरीद, ऊर्जा साझेदारी पर भी चर्चा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सेंट पीटर्सबर्ग में मीडिया को दिया बयान, अमर उजाला ने प्रथम पृष्ठ पर दिया है। भारत पर दबाव की कोशिश में अमरीका, लेकिन सभी जानते हैं मोदी पर दबाव बनाना नामुमकिन। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर दैनिक जागरण की खबर है, धुएं ने छीन ली सांसें पर आखिरी पल तक नहीं छोड़ा साथ। पंजाब केसरी की खबर है, मौत की इमारतों पर होगा एक्शन, उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने नगर निगम को दिए कार्रवाई के निर्देश। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ में हादसों की जवाबदेही का विश्लेषण दिया है, किसी भी हादसे का सबसे जरूरी सबक ये होना चाहिए कि भविष्य में ऐसे इंतजाम किए जाएं ताकि वैसी घटना दोबारा ना हो। दैनिक भास्कर ने बड़ा कदम शीर्षक से इको फ्रेंडली खबर दी है, सिर्फ एथेनॉल से चलने वाली देश की पहली कार लॉन्च, 5,000 पंप खुलेंगे, इससे प्रदूषण घटेगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी। राजस्थान पत्रिका ने मॉनसून की दस्तक को मंगल प्रवेश बताते हुए लिखा है, बूंदों की बारात लेकर मॉनसून केरलम पहुंचा, 20 को राजस्थान में आगवानी। अब उत्तर भारत में तपिश के गिने चुने दिन, पत्र ने विश्व पर्यावरण दिवस पर लिखा है, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, धरती संकेत दे रही है, क्या हम सुन रहे हैं, पहले मौसम बदलता था अब बिगड़ता है, प्रकृति से सिर्फ लिया कभी कुछ जमा नहीं किया, अब धरती दे रही चेतावनी।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

0: रहेगी। उनका यह भी कहना है कि मगरबी एशिया महास आराई की वजह से इफरात जर की शरह और माशी तरक्की को लाहिक चैलेंजेस के तनाजुर में रिजर्व बैंक मोहतात रवैया अख्तियार करेगा। मुंबई से जीवन भावसार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
1: लोकसभा के साबिक सेक्रेटरी जनरल और आईनी माहिर सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में इंतकाल हो गया। वो 97 साल के थे और तवील अरसे से बीमार थे। डॉक्टर कश्यप साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की सरबराही वाली आला सतह की उस कमेटी में शामिल थे जो एक साथ इंतखाबात कराए जाने के बारे में कानूनी फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए तश्कील दी गई थी। वो 1983 से लेकर 1990 तक लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे पर फायज रहे। डॉक्टर कश्यप 100 से ज्यादा किताबों के मुसन्निफ थे। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने उनके इंतकाल पर रंजोगम का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब राधाकृष्णन ने कहा कि डॉक्टर कश्यप ने अपने मुताले इल्म तसानीफ और अवामी खिदमत के जरिए भारत के आईन और पार्लिमानी जमहूरियत की सूझबूझ के सिलसिले में गरांकदर रोल अदा किया। तकर्रियों से मुतालिक काबीना कमेटी ने 1987 बैच के रिटायर्ड आईएएस अफसर तरुण कपूर की वजीर आजम नरेंद्र मोदी के मुशीर की हैसियत से मुद्दत कार में एक साल की तौसी को मंजूरी दे दी है। अमले और ट्रेनिंग के महकमे ने मुत्तला किया है कि वजीर आजम के दफ्तर में जनाब कपूर की तौसी शुदा मुद्दत कार एक साल के लिए इस माह की 10 तारीख से शुरू होगी। तकर्रियों से मुतालिक काबीना कमेटी ने वाशिंगटन में आलमी बैंक हेडक्वार्टर में नीलकंठ मिश्रा की बतौर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तकर्री को मंजूरी दे दी है जिसकी मुद्दत कार 3 साल होगी। अमले और ट्रेनिंग के महकमे ने मुत्तला किया है कि जब तक नए अहदेदार जिम्मेदारी नहीं संभालते हैं तब तक परमेश्वरन अय्यर की मुद्दत कार में तौसी भी दी गई है। आंध्र प्रदेश में एनडीए इत्तेहाद ने राज्यसभा की 4 खाली सीटों में से 3 तेलुगु देशम पार्टी को और 1 जनसेना पार्टी को देने का फैसला किया है। कल रात अमरावती में एनडीए के इत्तेहादियों के साथ मीटिंग के बाद वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने इस फैसले का ऐलान किया। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रूस की कलीदी साझेदारी की स्ताइश की है और जोर देकर कहा है कि रूस के साथ अपना इश्तराक कम करने के लिए भारत पर दबाव डालने की मगरबी मुल्कों की कोशिशें लाहासिल हैं और इनसे आलमी इस्तेहकाम को नुकसान पहुंच रहा है। सरकर्दा आलमी खबर रसा एजेंसियों के सरबराहों के साथ गुफ्तगू में सदर पुतिन ने भारत की मुआशी तरक्की और उसकी आजादाना खारजा पॉलिसी को सराहा और कहा कि रूस भारत के साथ अपने इकतसादी राबतों को वसत देने का पाबंद है। सदर पुतिन ने कहा कि भारत की मुआशी तरक्की उस मेहनत का नतीजा है जो भारत सरकार वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में कर रही है। रूस के सदर ने यह भी कहा कि अमरीका के साथ भारत के सिफारती राबतों से रूस के साथ वक्त की कसौटी पर खरे उतरने वाले उसके रिश्तों में कोई खलल नहीं पड़ता और ना ही ये कमजोर होते हैं। उन्होंने कहा कि रूस भारत को एक काबिल भरोसा साझेदार मानता है और किसी दूसरे मुल्क के साथ भारत के बाहमी ताल्लुकात की वजह से किसी तरह के मनफी मुजमरात की कोई बात नहीं है। सदर पुतिन ने मजीद कहा कि भारत एक अजीम मुल्क और अजीम जमहूरियत है और रूस के साथ अपने ताल्लुकात को वसअत देता रहेगा। आज दुनिया भर में माहौलियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। कुरे अर्ज पर जिंदगी बचाने के लिए बेदारी पैदा करने की खातिर माहौलियात से मुतालिक अक्वामे मुत्तहिदा प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर 1973 से हर साल 5 जून को यह दिन मनाया जाता है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: फितरत और कुरए अर्ज के तहफ्फुज़ के लिए माहौलियात के एतबार से मुस्बत इकदामात करने के लिए बेदारी बढ़ाने की खातिर ये दिन मनाया जाता है। इस मौके पर माहौलियात जंगलात और आबो हवा की तब्दीली महकमे के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के तहत कौमी राजधानी में मैदान गढ़ी के मकाम पर नमो ऑक्सीजन पार्क में दरख्त लगाने के लिए एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। इसके अलावा मुख्तलिफ रियासतों में कई मरकजी वजीर वज़राए आला अरकान पार्लियामेंट और अरकान असम्बली माहौलियात के आलमी दिन की तकरीबात में शामिल होंगे। मुख्तलिफ मुहिम तकरीबात और इकदामात के जरिए ये दिन लोगों और मुख्तलिफ तबकों को इस बात की तरगीब देता है कि वो पायदार मुस्तकबिल की खातिर माहौलियाती चैलेंजों से निमटने के लिए तब्दीलियाँ करें। दिल्ली से अक्षित की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
1: वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने माहौलियात के आलमी दिन के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है।

0: सोशल मीडिया पोस्ट पर डॉक्टर जयशंकर ने सभी की इस बात के लिए हौसला अफजाई की कि वो ज्यादा साफ, ज्यादा सरसब्ज, शादाब और ज्यादा पायदार मुस्तकबिल के लिए काम करें। माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के महकमे के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने सभी लोगों पर जोर दिया है कि वो आबोहवा और मुस्तकबिल की खातिर फितरत से तहरीक हासिल करते रहने के अहद का इयादा करें। जम्मू कश्मीर के भदरवा में कल मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह दो रोजा लेवेंडर फेस्टिवल का इफ्तिताह करेंगे, जिसका मौजू लेवेंडर गोज ग्लोबल है। चौथा लेवेंडर फेस्टिवल 6 और 7 जून को डोडा जिले के भदरवा के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में मुनक्किद किया जा रहा है। CSIR IIIM की जानिब से मुनक्किदा इस फेस्टिवल का मकसद जम्मू कश्मीर में पर्पल इनकलाब और लेवेंडर पर मबनी देही कारोबार की मुसलसल कामयाबी का जश्न मनाना है। समुद्री अशिया की बरामदात पर दो रोजा कौमी वर्कशॉप आज से विशाखापट्टनम में शुरू हो रही है, जिसका मकसद भारत की समुद्री अशिया की बरामदात में इजाफा करना और मुल्क भर में इस शोबे को मुस्तहकम करना है। इस वर्कशॉप में बेहतर बुनियादी ढांचे, कदर में इजाफे और पॉलिसी मदद के जरिए समुद्री अशिया की बरामदात में बेहतरी पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साहेली कर्नाटक, केरलम, माहे, शिमाली अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और क्राइकल के हिस्सों में दिन के दौरान शदीद से बहुत शदीद बारिश का भी इम्कान है। मुल्क के शिमाल मशरकी हिस्से, जैली हिमालयाई, मगरबी बंगाल, सिक्किम, अंडमान और निकोबार जजायर, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश में भी आज बारिश हो सकती है। मौसमियात के महकमे के मुताबिक आज अरुणाचल प्रदेश में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान आज साहली आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा के कुछ हिस्सों में गर्मी और हब्स वाला मौसम रहेगा। आज जापान के ताकामी गहारा स्टेडियम में 18 साल तक की उम्र के मर्दों के एशिया कप के हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला रिवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा। पूल ए में 9 पॉइंट के साथ दूसरी पोजीशन हासिल करने के बाद भारत सेमीफाइनल में पहुंचा है। भारतीय टीम का ग्रुप मरहले का आखिरी मैच चीनी ताइपे के साथ था, जिसे उसने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए 13-1 से जीता था। भारतीय टीम को सिर्फ जापान के हाथों शिकस्त का सामना हुआ था। सेमीफाइनल में जीतने वाली टीम फाइनल में या तो जापान या पूल बी की सबसे ऊपर रहने वाली टीम का मुकाबला करेगी। खवातीन के अंडर 18 एशिया कप में भारतीय टीम ग्रुप मरहले में कोई भी मैच न हारने के बाद सेमीफाइनल में पहुंच गई है और आज भारतीय वक्त के मुताबिक सुबह 9:30 बजे उसका चीन से मुकाबला होगा। ये थी खबरें, अब अखबार के आईने के साथ हैं अर्जुमंद अली खान।
1: शुक्रिया शगुफ्ता। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को नुमाया अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब की शह सुर्खी है वेनेजुएला की कारगुजार सदर की वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात। वजीर आजम आज गुजरात दादर नगर हवेली में करोड़ों रुपए के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। इस खबर को रोजनामा प्रताप ने अपने सफ़े अव्वल पर जगह दी है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी का यह बयान भी नुमाया अहमियत के साथ शाये हुआ है कि खुद की फालत के लिए मुतबादिल तवानाई जरूरी है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF के तावुन से बने डिजिटल पोर्टल का ऐलान। मगरबी बंगाल की कानूनसाज असेंबली ने कौमी ई विधान एप्लीकेशन के निफाज के लिए मुफाहमत पर दस्तखत किए। कुछ बैन अलावामी खबरें इस तरह से हैं, अमरीकी कांग्रेस ने ट्रंप की आमरियत को रोका, तुर्की और सऊदी अरब की आबनाए हुरमुस के मुतबादिल के तौर पर रेल रूट पर गुफ्तगू।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन जा रहे हैं, जहां वो तकरीबन 21,800 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। वजीर आजम ने आलमी योग आसन चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले एथलीट्स पर जोर दिया है कि वो आयुष वजारत की योगा 365 मुहिम के सफीर बने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज अपनी दो माही माली पॉलिसी का ऐलान करेगा। लोकसभा के साबिक सेक्रेटरी जनरल और आईनी माहिर सुभाष सी कश्यप का नई दिल्ली में इंतकाल हो गया है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अमेरिका के दबाव से भारत रूस ताल्लुकात मुतासर नहीं होंगे। और जापान में आज 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों के एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला रिवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
2: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात

0: 621 किलोहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: इधर आइए, इधर।
3: इधर?
2: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
4: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
3: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी

0: संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: इधर आइए, इधर।
2: इधर?
1: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
3: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
2: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
3: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
2: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294, हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042, हमारा ईमेल एड्रेस है patna@gmail.com।
3: शुभवाणी,
2: लाभवाणी,
1: आकाशवाणी।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय आज पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ लेंगी। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत बिहार को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना में उद्यान परियोजना के अंतर्गत 1,00,000 पेड़ लगाने के कार्य का शुभारंभ करेंगे। और मौसम विभाग ने आज अररिया, किशनगंज, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर और जमुई सहित राज्य के कुछ स्थानों पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय आज पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ लेंगी। मुख्य समारोह पटना स्थित लोक भवन में होगा। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन उन्हें शपथ दिलाएंगे। शपथ के बाद न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को उनके सम्मान में पटना हाईकोर्ट में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया है। गौरतलब है कि इससे पहले न्यायमूर्ति मीनाक्षी सिक्किम उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश थीं। वे पटना हाईकोर्ट की दूसरी महिला और 48वीं मुख्य न्यायाधीश होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। 8 जून तक आयोजित होने वाली पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग स्वस्थ रहने के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण है।
1: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं।

0: आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
1: प्रदेश को नवीकरणीय ऊर्जा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत सरकारी भवनों के सौर ऊर्जाकरण में उत्कृष्ट कार्य के लिए बिहार को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के दो वर्ष पूर्ण होने तथा 1 करोड़ छतों तक सौर ऊर्जा के विस्तार के अवसर पर यह पुरस्कार प्रदान किया गया। राज्य की ओर से नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के महाप्रबंधक और ब्रेडा के निदेशक राहुल कुमार ने यह सम्मान प्राप्त किया। राज्य सरकार ने इसे नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में बिहार की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। इधर महिलाओं की सुरक्षित, सुलभ और सम्मानजनक यात्रा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संचालित पिंक बस सेवा के लिए बिहार का चयन प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड के लिए किया गया है। ये पुरस्कार आगामी 20 जून को नई दिल्ली में आयोजित स्कॉच समिट के दौरान प्रदान किया जाएगा। पिंक बस सेवा को महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। इस उपलब्धि से राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली है। कृषि विभाग ने खरीफ मौसम से पहले उर्वरकों की कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। विभाग द्वारा चलाए गए विशेष अभियान के तहत राज्य में 29 उर्वरक विक्रेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, जबकि 208 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि किसानों के हितों से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य में किसानों को उर्वरकों की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी और निर्धारित मूल्य पर खाद की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे मुंबई में मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। 6 सदस्यीय समिति ने बुधवार को 3 दिवसीय विचार विमर्श शुरू किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अप्रैल में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया था।
2: खुदरा मुद्रा स्फीति पर आधारित महंगाई सूचकांक 4% तक सीमित रखने का लक्ष्य भारत सरकार ने रिजर्व बैंक को दिया है। असाधारण परिस्थितियों में यह सूचकांक 2 से 6% के दायरे में रखने की भी छूट है। सोने एवं चांदी के आभूषण तथा खानपान सामानों की कीमतें बढ़ने के कारण अप्रैल में यह सूचकांक 3.48 पर था, जो कि दिए गए दायरे के अंदर है। इसी कारण विश्लेषकों का मानना है कि रिजर्व बैंक इस बार भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। पश्चिम एशिया में उत्पन्न संकट का महंगाई तथा आर्थिक वृद्धि पर होने वाला परिणाम देखते हुए रिजर्व बैंक सतर्क दृष्टिकोण अपनाएगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। कुछ दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सीएस शेट्टी ने भी कहा था कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बदलाव नहीं करता है तो आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से जीवन भावसा।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने अदालतों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर मसौदा जारी किया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि कोई भी न्यायिक निर्णय केवल एआई द्वारा उपलब्ध कराए गए विश्लेषण या एल्गोरिथम निर्णय लेने पर आधारित नहीं हो सकता है। मसौदे पर लोगों से इस माह की 20 तारीख तक सुझाव मांगे गए हैं। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रचारित उन खबरों का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि सरकार राष्ट्रीय छात्र लैपटॉप योजना 2026 के तहत छात्रों को मुफ्त लैपटॉप देने के लिए आवेदन आमंत्रित कर रही है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने बताया है कि यह दावा फर्जी है। कार्यालय ने कहा है कि सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना या विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
3: कहाँ चलती है? इधर तो आओ।
4: इधर आइए। इधर
5: इधर
4: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
6: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
5: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
6: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
5: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाश

0: वाणी पटना,
1: हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222502। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
2: शुभ वाणी,
1: लाभ वाणी,
2: आकाशवाणी।
3: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर जीवन को बचाने के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत यह दिवस वर्ष 5 जून को 1973 से मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
4: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। विभिन्न अभियानों, कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से लोगों और समुदायों को पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे आने तथा बेहतर और टिकाऊ भविष्य के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार।
3: इधर राजधानी पटना के जेपी गंगा पथ समग्र उद्यान परियोजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज 1,00,000 पेड़ लगाने के कार्य का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री ने सभी आमजनों से अधिक पौधारोपण कर धरती पर हरियाली बढ़ाने की अपील की है। साथ ही उन्होंने लोगों को बिजली की बचत, सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाने, ईंधन बचाने और ईवी वाहनों के उपयोग करने को कहा है। मौसम विभाग ने आज अररिया, किशनगंज, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर और जमुई सहित राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्व हिस्सों में कुछ स्थानों पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने की भी चेतावनी जारी की गई है।
5: दिनांक 5 जून राज्य के उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व भाग के जिलों के एक या दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा, हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। अगले तीन दिनों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना है।
3: इधर पटना सहित राज्य के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी की स्थिति बनी हुई है। कई स्थानों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 41.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ बक्सर राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी शिक्षकों को ई शिक्षा कोष पोर्टल पर व्यक्तिगत और सेवा संबंधी सूचनाओं का सत्यापन तथा संशोधन शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया है। विभाग की ओर से कहा गया है कि आज के बाद ई शिक्षा कोष पोर्टल को बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद इस पोर्टल पर किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं होगा। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने पटना के फुलवारी शरीफ प्रखंड के मैन पुरंदा पंचायत में राजस्व कर्मचारी राणा रणविजय गोपाल को 45,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। इस दौरान राजस्व कर्मचारी के सहयोगी को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार कर्मचारी पर अवैध अतिक्रमण को हटाने संबंधी रिपोर्ट देने के बदले राशि ले रहा था। रोहतास जिले के विभिन्न स्कूलों में फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी कर रहे 142 शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी गई है। उप विकास आयुक्त विजय कुमार पांडे ने संबंधित नियोजन इकाइयों से इन शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्देश दिया है। ये सभी शिक्षक पिछले 10 साल से वेतन ले रहे थे। अररिया जिले में निर्धारित किराए से अधिक राशि वसूलने वाले बस संचालकों के विरुद्ध जिला प्रशासन ने विशेष निगरानी रखने का निर्णय लिया है। जिला परिवहन पदाधिकारी ने बस संचालकों को यात्रियों से केवल निर्धारित किराया ही लेने का निर्देश दिया। भोजपुर पुलिस मद्य निषेध और राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की संयुक्त कार्रवाई में 1.5 किलो से अधिक मात्रा में मादक पदार्थ ब्राउन शुगर के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। जब्त ब्राउन शुगर की

0: कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। अररिया जिले के भरगामा प्रखंड अंतर्गत खजूरी पंचायत के बलुआही टोला में एक पोखर में नहाने के दौरान डूबने से 3 किशोरियों की मौत हो गई। अरवल जिला प्रशासन की ओर से बैंकों की जिला स्तरीय परामर्शदात्री और समन्वय समिति की बैठक की गई। बैठक के दौरान वित्तीय समावेशन, ऋण वितरण, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार और जनहित से जुड़े विषयों पर समीक्षा की गई। आज संपूर्ण क्रांति दिवस है। आज ही के दिन महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। इस अवसर पर राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पटना के जेपी गोलंबर पर आयोजित मुख्य राजकीय समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। भारतीय खेल प्राधिकरण साई पटना की ओर से विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर 7 जून को फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल रैली का आयोजन किया जाएगा। रैली सुबह 6 बजे पटना के इनकम टैक्स गोलंबर से शुरू होकर पटना जू तक जाएगी। इस आयोजन में राज्य के विभिन्न खेल संघों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के छात्र छात्राओं के साथ साथ सशस्त्र बलों के जवान भी भाग लेंगे। रैली का उद्देश्य लोगों को फिटनेस और स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक करना है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज की सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, सड़कों पुलों के रखरखाव में कोताही बर्दाश्त नहीं। दैनिक जागरण लिखता है, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, सरकार नौकरी सिर्फ निर्धारित योग्यता वाले अभ्यर्थियों को ही। दैनिक भास्कर ने मौसम से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, बिहार में मौसम के दो रंग, दक्षिण में लू, उत्तर में वज्रपात का अलर्ट, मॉनसून ने केरल में दस्तक दी। प्रभात खबर ने मुजफ्फरपुर अस्पताल में अग्निकांड की खबर को अपनी लीड बनाते हुए लिखा है, आईसीयू बन गया शमशान, 6 मरीज जिंदा चले। और अब अंत में मुख्य समाचार। न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय आज पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ लेंगी। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत बिहार को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना में उद्यान परियोजना के अंतर्गत 1,00,000 पेड़ लगाने के कार्य का शुभारंभ करेंगे। और मौसम विभाग ने आज अररिया, किशनगंज, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर और जमुई सहित राज्य के कुछ स्थानों पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: इधर आइए, इधर।
3: इधर?
2: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
4: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
3: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
4: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
3: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना।
5: हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222205042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
4: शुभ वाणी,
5: लाभ वाणी,
2: आकाशवाणी।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।

0: Download Waves OTT app now and watch for free.
1: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
0: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है।

0: हम एक हैं। भारत नेपाल मैत्रीपूर्ण संबंध जिसके तहत नागरिक बेरोक टोक इन दोनों ही देशों के बीच आवाजाही करते हैं। सीमा क्षेत्र के रहने वाले कभी घूमने निकल पड़ते हैं एक दूसरी ओर,
1: जनकपुर जाने के लिए आए,
0: कभी खरीदारी भी करते हैं।
2: हिंदी सामान किनना लाए।
0: सामाजिक ताना बाना ऐसा कि इधर के लोग उधर या फिर उधर के लोग इधर करते हैं शादियाँ।
1: मैं चाहता हूँ कि मेरा शादी भी नेपाल में हो।
0: रहते हैं एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक।
3: एम्बुलेंस को फोन करते तुरंत आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, दोनों पार के आदमी समस्या को सॉल्व करते हैं।
0: इन्हीं मैत्रीपूर्ण संबंधों पर आकाशवाणी दरभंगा लेकर आता है कार्यक्रम हम एक हैं, प्रत्येक महीने के चौथे गुरुवार को रात 10:30 बजे। तो सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: होती रही कुछ बातें गीतों की और कुछ उनसे जुड़ी हस्तियों की।
2: रंगत तेरी सूरत सी किसी में नहीं, नहीं।
1: कानों से जब टकराई सुरों की शीतल फुहारें,
3: तुम नाचो रस बरसी,
1: मुंदी हुई आंखों में जागने लगी कई तस्वीरें।

स्याह तन्हा रात के अंधेरे में गीतों के रंग, बुधवार रात 10:30 पर आकाशवाणी दरभंगा की प्रस्तुति। इसी तरह रात ढलती गई, सुबह हुई, फिर दोपहर में बदल गई और दिन बीतते गए, रह गई तो सिर्फ यादें। फोन इन फरमाइशों पर आधारित पुराने हिंदी गानों का फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, आज रात 10 बजे अपने स्मार्टफोन पर सुनने के लिए डाउनलोड

0: ये आकाशवाणी दरभंगा है। थोड़ी देर में हम पटना से रिले कर आपको सुनवाएंगे उर्दू प्रोग्राम अंजुमन। थोड़ी प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी पटना दरभंगा है, पेश उर्दू प्रोग्राम अंजुमन।

कि इल्तजा तुम हो या नबी तुम हो जा।

फरमाया खुदा ने व रफाना लका जिक्रक, फरमाया खुदा

अभी आप आरिफ शाहबादी की लिखी ये नात सुन रहे थे, इरम फातिमा जन्नत की आवाज़ में। आइए अब कल्लन खां की आवाज़ में सुनते हैं अगली नात।

अभी आप कल्लन खां की आवाज़ में सुन रहे थे ये नात। आइए आप अगली गज़ल सुनते हैं अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज़ में।

अभी आप शमीम जयपुरी की लिखी ये नात सुन रहे थे अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज़ में। आइए अब चलते चलते आखिरी गज़ल सुनते हैं कल्लन खां की आवाज़ में।

अभी आप तालिब की लिखी गजल नात सुन रहे थे कल्लन खां की आवाज़ में। आइए अब इसी के साथ हमारे उर्दू प्रोग्राम का अंजुमन का वक्त यहीं ख़त्म होता है। ज़र्रीन फातिमा को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।

उर्दू कार्यक्रम अंजुमन हम अपने पटना केंद्र से रिले कर आपको सुनवा रहे थे। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। आइए अब सुने फिल्म संगीत का कार्यक्रम। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्मों से ली गई कुछ कव्वालियां।

जो घर में सिल पे मसाला तलक न पीस सके उन्हें ये नाज हमें खाक में मिलाएंगे। कलाई देखो तो चूड़ी का बोझ सह न सके और उस पे दावा के तलवार हम उठाएंगे। फरेब मकर में इनका नहीं कोई सानी, ये जिसको डसले वो मांगे न उम्र भर पानी। बड़ा अजीब है दस्तूर इनकी महफिल का, बुलाया जाता है इज्जत बढ़ाई जाती है, फिर उसके बाद वही कत्ल करके आशिक को बड़ी धूम से मैयत उठाई जाती है। खता हमारी है जो हमने उनसे प्यार किया, बुरा किया जो हसीनों पे।

खबर भी है तुम्हें शेखी बघारने वालों कि इस जमीन पे पुतली भी एक औरत है कि जिसमें मर्द को ललकारने की हिम्मत है। पहन के सर पे दिलेरी का ताज बैठी है, जो घर में थी वो सिंहासन पे आज बैठी है। अगर झुके तो ये दिल क्या है जान भी दे दे, जो सर उठाए तो मर्दों की जान भी ले ले। अगर चे फूल का एक हार है यही औरत, जो जिद पे आए तो तलवार है यही औरत। ये पुतली बन के जमाने को मोड़ सकती है, उठे तो मर्द का पंजा मरोड़ सकती है।

एक दिन बोले फरिश्ते कर गई है दुनिया की सैर, या खुदा दुनिया तेरी सुनी है औरत के बगैर। उठ पड़े हिकमत दिखाने के लिए कुदरत के हाथ, सोच ली मौला ने औरत को जन्म देने की बात। इस तरह मालिक ने की कारीगरी की इब्तिदा, चांद से मांगा उजाला नूर सूरज से लिया, रूप सैयारों से मांगा रंग उषा से लिया, पंखड़ी से ली नजाकत और कलियों से अदा। शाम से काजल लिया और सुबह से गाजा लिया, बिजलियों से कैर मांगा आग से गुस्सा लिया, हौसला चट्टान से और दर्द पंछी से लिया, आसमां से

सबसे पहले ये सवाल आया कि कुदरत क्या करे पत्थरों से संग दिली और बेरुखी तकदीर से, कहर तूफानों से मांगा और गजब शमशीर से, ली गधे से अक्ल कौए से सियानापन लिया, और कुछ कुत्ते की टेढ़ी तुमसे टेढ़ापन लिया, घात ली बिल्ली से और चूहे से मांगा भागना, और उल्लू से लिया रातों को इसका जागना, ले लिया तोते से आंखें फेर लेने।

और अब लीजिए। और अब लीजिए फिल्म अमर अकबर एंथनी का ये आनंद बख्शी का लिखा ये कलाम सुनिए, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्मों से ली गई कुछ चुनिंदा कव्वालियाँ।

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी मेरा प्यार है सर्द पानी मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ।

और अब लीजिए फिल्म धर्मा की ये कव्वाली सुनिए, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। वर्मा मलिक के बोल हैं, सोनिक ओमी का संगीत है।

आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्मों से ली गई कुछ कव्वालियाँ। ये है फिल्म दादा की कव्वाली, मोहम्मद रफ़ी और शैलेंद्र सिंह की आवाज़ें हैं।

फिल्म निकाह की ये कव्वाली आप सुन रहे थे, महेंद्र कपूर, सलमा आगा और आशा भोसले की आवाज़ों में। हसन कमाल के बोल थे और रवि का संगीत था। और अब लीजिए फिल्म कर्मयोगी की ये कव्वाली सुनिए, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ें हैं, शब्द वर्मा मलिक के हैं, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है।

करते हो ये मर्दों वाला काम नहीं। क्या इसका नतीजा निकलेगा सोचा तुमने अंजाम नहीं। सीने में अगर कुछ हिम्मत है तो हमसे आंख मिलाओ तुम, हस्ती को मिटा कर

0: ए मजाल तुम मुझसे करे सवाल, तेरी छुट्टी करा दूं, तेरा तख्ता उड़ा दूं। अरे बे मौत ना मर, तो अपनी ही फिक्र कर, बुरा हर काम मेरा कयामत नाम मेरा। मैं चुटकी से मचल दूं, मैं जूते से कुचल दूं, जुल्म से मेरा रिश्ता, मौत का मैं फरिश्ता, मौत का मैं फरिश्ता। नहीं कोई मेरा सानी, तू मांगे गाना पानी, हो काला नाग हूँ मैं तो जलती आग हूँ मैं। मिटा कर खाक कर दूं, जला कर राख कर दूं, गुना और पाप हूँ मैं,
1: तेरा भी बाप हूँ मैं,
0: तेरा भी बाप हूँ मैं,
1: तेरा भी बाप हूँ मैं।

फिल्म दिल ही तो है कि ये कव्वाली आप सुन रहे थे आशा भोसले और साथियों की आवाज़ों में। साहिर लुधियानवी के बोल थे, रोशन का संगीत था। इसके साथ ही फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे थे फिल्मों से ली गई कुछ चुनी हुई कव्वालियाँ। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। हमारे अगले कार्यक्रम की कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित विश्व मोहन भट्ट का मोहन वीणा पर बजाया राग देश। आलाप और विलंबित रचना एक ताल में और द्रुत की बंदिश तीन ताल में की गई है।

अभी आप सुन रहे थे पंडित विश्व मोहन भट्ट का मोहन वीणा पर बजाया राग देश, रचना 3 ताल में निबद्ध थी। इसके साथ ही

शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे अगले कार्यक्रम के लिए कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

इसी तरह रात ढलती गई, सुबह हुई, फिर दोपहर में बदल गई और दिन बीतते गए, रह गई तो सिर्फ यादें। फोन इन फरमाइशों पर आधारित पुराने हिंदी गानों का फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, आज रात 10 बजे अपने स्मार्टफोन पर सुनने के लिए डाउनलोड कर

0: यहाँ हर तरह के फूल खिले हैं।
1: कितना निमन लगत है, हर जोतैत किसान, बुढ़ऊ बैठल दलान, आ बुढ़िया तापत बोरसी, बहुरिया पाथित करसी, कितना निमन लगत है।
2: तू कहत हते न जो कहला न जाएं, मन मोटाव होए से, रूसा फुल्ली हो जाए से, आ बोला चाली न होए से कहीं भाई बहन के रिश्ता टूट जाइए।
0: आकाशवाणी दरभंगा की प्रस्तुति बच्ची का कार्यक्रम अंगना सुनना न भूले, मंगलवार दिन के 11 बजे।
3: चाचा कहिन चल तोहर माय बाबू कई खूबसन सुना बही हो, तो खूबसन का अर्थ हो है उलाहना।
0: अपने स्मार्ट फोन पर सुनने के लिए डाउनलोड करें हमारा ऐप न्यूज़ ऑन AIR।

ये आकाशवाणी दरभंगा है। आइए अब सुने प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: शब्दांग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। वसीम अकरम और गुड़िया खातून जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: सफलता प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है कठोर परिश्रम और लगन।
3: बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यारे संदेश के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। कुतुबपुर तहसील जिला हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा,
2: छोटी बलिया मुंबई से आमना अंसारी, जुबैदा और नेहा अंसारी,
3: और बेगूसराय बिहार से इकबाल मोगा, देव अजय मोगा और अहमद मोगा,
2: ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य,
3: और डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा।

0: तामुरिया, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया,
1: और मगर पारा बिलासपुर से वसीम जाटव, अकरम जाटव, आफताब जाटव, मेहताब जाटव, मेराज जाटव और अल्ताफ जाटव।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। साथियों, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं शीत मरुस्थलों की।
1: अब तक हम चर्चा कर चुके हैं अंटार्कटिक, गोबी और लद्दाख के शीत मरुस्थलों की, तो चलिए आगे चर्चा को बढ़ाते हैं और आज हम बात करते हैं भारत के एक और शीत मरुस्थल की, जिसे लाहौल स्पीति के शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इसे लामाओं की भूमि भी कहा जाता है। तो अजीत जी, एक बार फिर से मैं श्रोताओं की ओर से उसी प्रश्न पर आती हूँ, इसे शीत मरुस्थल क्यों कहते हैं?
0: विमलेश जी, जैसा कि हमने बार बार चर्चा की है ना, कि मरुस्थल केवल गर्म ही नहीं होते, जरूरी नहीं है कि वहाँ रेती हो या गर्मी हो जैसी कि आम धारणा है। ऐसा है कि जहाँ वर्षा मानक औसत से बहुत कम हो, जहाँ वनस्पतियों का अभाव हो, जनजीवन कठिन हो, वो स्थान मरुस्थल कहलाते हैं।
1: जी अजीत जी, लाहौल स्पीति में वर्षा बहुत कम होती है क्योंकि ये क्षेत्र हिमालय की वर्षा छाया यानी रेन शेडो में पड़ता है। हिमालय क्षेत्र की ओर आने वाले मानसूनी बादलों को रोक लेता है, इसी कारण से यहाँ हरियाली बहुत कम देखने को मिलती है। अजीत जी, ये तो बता दें श्रोताओं कि लाहौल स्पीति कहाँ है।
0: विमलेश जी, लाहौल स्पीति है हिमाचल प्रदेश के उत्तरी भाग में।
1: जी,
0: आमतौर पर हम इसे लाहौल स्पीति कह देते हैं, लेकिन दरअसल ये दो अलग अलग घाटियां हैं।
1: जी,
0: यहाँ का तापमान सर्दियों में -25 डिग्री सेल्सियस से लेकर -32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है।
1: जी,
0: गर्मियों में दिन के समय तेज धूप होती है, लेकिन शाम होते ही तापमान गिरने लगता है, रातें बहुत ठंडी हो जाती हैं।
1: श्रोताओं, जहाँ तक जनजीवन का प्रश्न है, कम ऑक्सीजन, भारी बर्फबारी और लंबे सर्द मौसम के बावजूद लोग यहाँ छोटे छोटे गांवों में रहते हैं। खेती करने का मौसम बहुत छोटा होता है। मुख्य रूप से यहाँ आलू, जौ और मटर जैसी फसलें उगाई जाती हैं। कई गांवों में तिब्बती संस्कृति और बौद्ध मठ देखे जा सकते हैं। अजीत जी, कल आप बात कर रहे थे यहाँ के आसमान की, कोई खास बात है क्या?
0: जी विमलेश जी, यहाँ का आसमान सच में रात के समय अद्भुत होता है। आसमान इतना साफ होता है कि आप आंखों से अनगिनत खूबसूरत तारों और यहाँ तक कि आकाशगंगा के अनोखे दृश्यों का भी आनंद उठा सकते हैं।
1: क्या बात है!
0: इसीलिए तो यहाँ कुछ वेधशालाएं भी बनाई गई हैं। खगोल प्रेमियों के लिए तो ये जगह खास है।
1: क्या बात है! श्रोता, आपको एक बड़ी रोचक जानकारी दे दें कि कौमिक गांव स्पीति क्षेत्र का सबसे अधिक ऊंचाई वाला गांव माना जाता है। ये समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर सड़क से जुड़े गांवों में गिना जाता है।
0: और श्रोताओं, ये भी बता दें कि यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए नए लोगों के शरीर को अनुकूलित होने तक धीरे धीरे चलना पड़ता
1: जी।
0: है। यहाँ के घर भी लद्दाख की तरह पत्थर और मिट्टी के बने होते हैं ताकि अंदर गर्मी बनी रहे।
1: और अब बात करते हैं इस क्षेत्र के स्कूलों की। इतनी ऊंचाई और कठिन मौसम के बावजूद यहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं। गांव में सरकारी प्राथमिक स्कूल हैं। कभी कभी भारी बर्फबारी के कारण स्कूलों को कुछ समय के लिए बंद भी करना पड़ता है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी के अलावा बच्चे भूटी और तिब्बती भाषा भी सीखते हैं। आगे की पढ़ाई के लिए वे पास के काजा जैसे कस्बों में जाते हैं। काजा घाटी के नीचे समतल मैदान में है। बच्चे पढ़ाई के अलावा पानी लाना, भेड़ों और याक की देखभाल करना जैसे भी काम करते हैं।
0: एक और बेहद रोचक जानकारी आपको दे दें, और वो ये है कि स्पीति घाटी में एक गांव है जिसका नाम है हिक्किम। यहाँ स्थित डाकघर दुनिया के सबसे ऊंचे डाकघरों में गिना जाता है। यहाँ आज भी लोग पोस्ट कार्ड और अंतर्देशीय पत्रों का इस्तेमाल करते हैं।
1: जी,
0: इस डाकघर की स्थापना 5 नवंबर 1983 को हुई थी।
1: सन 2022 में इस डाकघर को फिर से बनाया गया और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इसे एक विशाल पत्र पेटी या लेटर बॉक्स का रूप दे दिया गया। श्रोताओं, सर्दियों में डाक पहुंचाना कठिन हो जाता है। यहाँ के डाक कर्मियों की हिम्मत को दाद देनी चाहिए। वो कठिन पहाड़ी रास्तों से होकर पैदल चलकर डाक पहुंचाते हैं। तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी भारत के शीत मरुस्थल लाहौल स्पीति के बारे में।
0: और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर किस गांव में पड़ता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर किस गांव में पड़ता है?
0: आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो उन्हें NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर या दीक्षा पर सुन सकते हैं।
1: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं कार्यक्रम।

0: नकली हीरे।
1: कक्षा 4 की हिंदी के पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस नाट्य प्रधान कार्यक्रम के द्वारा विशेष रूप से संदेश दिया गया है कि किसी को प्रसन्न करने के लिए उसकी झूठी प्रशंसा करने का परिणाम अंत में बुरा ही होता है।
2: नकली हीरे।

0: काननपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक ही बेटा था। वे दिन रात अपने बेटे के लिए चिंतित रहते थे। वे इसी चिंता में घुले जा रहे थे कि उनके बाद बेटे का क्या होगा।
1: मैं अधिक दिन जीवित नहीं रहूंगा, मुझे अपने पुत्र के लिए कोई सलाहकार ढूंढना चाहिए जो मेरे बाद उसे सही रास्ता दिखा सके।
0: सो एक सुबह उसने सब दरबारियों को दरबार में बुलवाया।
2: महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की
3: जय। बहुत अच्छे से शासन करी
4: खास ऐलान।
1: शांत शांत, आप सबका स्वागत है। मैंने एक विशेष कार्य के लिए आप सबको दरबार में बुलाया है।
5: हाँ हाँ महाराज,
1: महाराज
5: बताइए,
1: हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर।
5: हम आपकी सेवा के लिए हाजिर हैं महाराज।
1: मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कृपया करके स्पष्ट उत्तर दीजिएगा।
6: जी महाराज, पूछिए, क्या प्रश्न है आपका?
1: प्रश्न है, क्या मैं बुद्धिमान और ईमानदार राजा हूँ? मुझे सिर्फ सत्य ही जानना है।
7: निसंदेह महाराज, आप संसार में आप सब बुद्धिमान, सारे संसार में कोई नहीं है।
0: सब दरबारियों ने बारी बारी से यही उत्तर दिया।
1: आप सभी के उत्तर से मैं इतना प्रसन्न हुआ कि भेंट स्वरूप आप सभी को एक एक हीरा दिया जाता है।
0: हर दरबारी को राजा ने एक एक हीरा दिया।
8: जी महाराज,
9: महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो।
1: आप सभी के उत्तर के लिए धन्यवाद।
0: सब दरबारी प्रसन्न होकर चले गए, पर एक दरबारी चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा।
1: नवयुवक, तुमने कोई उत्तर नहीं दिया, तुम चुपचाप खड़े रहे। क्या तुम्हें मेरा प्रश्न समझ में नहीं आया?
5: महाराज ऐसी बात नहीं है, परंतु महाराज दूसरों ने तो आपको प्रसन्न करने वाले उत्तर दिए, पर क्षमा कीजिएगा, मेरा उत्तर वैसा नहीं है।
1: हम फिर भी आपका उत्तर सुनना चाहते हैं।
5: इसमें संदेह नहीं है महाराज कि आप बुद्धिमान भी हैं और ईमानदार भी हैं, परंतु क्षमा करें महाराज, आपसे पहले भी श्रेष्ठ राजा हो चुके हैं, जो बुद्धिमत्ता में आपसे तो बढ़ चढ़कर थे ही, ईमानदारी में भी वे आपसे बढ़ चढ़कर थे।
1: हमें आपका उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। ये लो आपका इनाम, हीरा।
5: धन्यवाद महाराज।
0: अगली सुबह काननपुर के सारे दरबारी दरबार में वापस आए। उनके बीच कुछ चिंता का विषय था। वे आपस में कुछ दबी दबी आवाज में बातें

0: करने लगे। भाई क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा
1: अरे
0: मैंने तो कई लोगों से पता करवाया, सभी ने बोला कि नकली है।
2: शांत, क्या समस्या है? आप सब इतने व्याकुल क्यों हैं?
3: महाराज क्षमा करें, हम सभी के मन में एक दुविधा है महाराज, यदि आप आज्ञा दें तो हम पूछ लें। महाराज
2: कहिए, मेरी आज्ञा है, आप सभी निसंकोच कहिए।
3: जी धन्यवाद महाराज, धन्यवाद महाराज। महाराज हमने इन हीरों की जांच जौहरी से करवाई थी महाराज, लेकिन पता चला कि सारे हीरे तो नकली है महाराज।
2: क्या? और कोई शंका?
3: जी जी नहीं महाराज, आपने हमें जो भी दिया वो तो हमारे लिए उपहार ही है, बस केवल यही प्रश्न था महाराज, आपने ऐसा हमारे साथ क्यों किया महाराज?
2: ठहरिए, मैं समझाता हूँ। आप सबने मेरे प्रश्न का झूठा उत्तर दिया, इसलिए हीरे भी आपको नकली दिए गए। पर इस नौजवान ने सीधा साधा उत्तर दिया, इसलिए इसे असली हीरा दिया गया। और मेरे बाद यही मेरे बेटे का विश्वस्त सलाहकार होगा।
4: महाराज की जय! महाराज की जय! महाराज की जय!
5: साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम नकली हीरे। आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। जरा सोचिए, राजा ने दरबारियों को नकली हीरे क्यों दिए? सोचिए सोचिए। आप कहेंगे उन्होंने झूठी प्रशंसा की थी। जी बिल्कुल सही। साथियों, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी को खुश करने के लिए झूठी प्रशंसा हम ना करें। यदि कोई बात अच्छी है तो उसकी प्रशंसा जरूर करनी चाहिए, लेकिन बढ़ा चढ़ाकर नहीं। और हाँ, याद रखिए, किसी की प्रशंसा करने में बहुत अधिक समय नहीं लगता, लेकिन उसका प्रभाव बहुत सकारात्मक होता है।
6: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे। कार्यक्रम समन्वयक प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वनि अंकन मंजू कुमारी, कलाकार चांद मोहम्मद और मोहम्मद शमीम खान, मार्गदर्शन विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन और निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।
7: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे।
8: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ, अलर्ट हूँ मैं, चल चल।

0: तो सुनिए आपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और इस कार्यक्रम के बाद आइए सुनते हैं कार्यक्रम पोंगल।
2: ये कार्यक्रम भारत के तमिलनाडु राज्य के प्रसिद्ध त्योहार पोंगल की रोचक जानकारी देते हुए उसके पौराणिक कारणों को भी विस्तार से बताता है और इस त्योहार के मनाए जाने की परंपराओं का बखान करता है।
1: पोंगल।
3: भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय किसान का जीवन प्रकृति से जुड़ा रहता है। वो प्रकृति के साथ ही हंसता रोता है, नाचता गाता है। बुआई, सिंचाई, निराई आदि खेती बाड़ी के सारे काम वो मौसम के अनुसार करता है। जब चारों तरफ हरियाली छा जाती है, वृक्ष लताएं फूलों से लद जाती हैं, तब मानव भी गुनगुनाने लगता है। जब खेत खलियान अनाज से भर जाते हैं, तब उसके पांव थिरक उठते हैं, वो उत्सव मनाने के लिए मचल उठता है। त्योहारों का जन्म यहीं से होता है। पोंगल नई फसल का त्योहार है। ये संक्रांति के दिन मनाया जाता है। तमिलनाडु का यह प्रमुख त्योहार है। ये जनवरी में मनाया जाता है। पोंगल में खेतों से सुनहरे रंग का नया धान कटकर किसान के घर आता है। गन्ने के खेत की फसल तैयार होती है। बागीचे में हल्दी का पौधा लहलहा उठता है। इन्हें देखकर किसान का मन नाच उठता है। उसके जीवन में मिठास आ जाती है। नए चावल का मीठा भात बनाकर सूर्य को चढ़ाया जाता है। इसी मीठे भात को पोंगल कहते हैं। इसी से त्योहार का नाम पोंगल पड़ा है। तमिलनाडु में पोंगल त्योहार पौष मास में आरंभ के 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल के पहले दिन लोग भोगी का त्योहार मनाते हैं। पूरे घर की सफाई की जाती है, इससे पर्यावरण स्वच्छ हो जाता है। भोगी के दिन शाम को बच्चे ढोल और बाजे बजाकर खुशियां मनाते हैं। पोंगल के दिन घर आंगन को रंगोली से सजाते हैं। नहा धोकर सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं। उस दिन सब कुछ नया होता है। आंगन में अंगीठी जलाकर नए बर्तन में पोंगल पकाया जाता है। बर्तन में हल्दी का पौधा बांध दिया जाता है। गन्ने के रस में नई फसल का चावल पकाया जाता है। जब चावल उबलकर ऊपर उठता है, तो उसमें दूध डाल देते हैं। दूध के साथ उफनता हुआ पोंगल बर्तन के ऊपर से उमड़ता है और चारों ओर रिसकर आंच में टपक पड़ता है। उस समय चारों ओर इकट्ठे लोग खुशी से नाच उठते हैं और जोश में चिल्लाते हैं, पोंगलो पोंगल, पोंगलो पोंगल। उन्हें प्रसन्नता होती है कि सूर्य और अग्नि ने पोंगल का भोग स्वीकार कर लिया है। लोग अपने आस पड़ोस में पोंगल बांटते हैं। उसके बाद मित्र और सगे संबंधी सब मिलकर बढ़िया भोजन करते हैं। पोंगल के दिन हर तमिल भाषी, चाहे वो भारत के किसी कोने में रहता हो, अपने घर पहुंचने की कोशिश करता है। विवाहित लड़कियां पोंगल मनाने अपने मायके आती हैं।

0: तीसरे दिन माटू पोंगल मनाया जाता है। तमिल भाषा में माडू गाय बैलों को कहते हैं। माडू का अर्थ धन भी है। पुराने समय में गाय बैल ही हमारी संपत्ति थे। माटू पोंगल के दिन गाय बैलों को अच्छी तरह नहलाया जाता है। लोग उनके सींगों को रंगते हैं और उन्हें रंगीन कपड़ों से सजाते हैं। उनके गले में फूल मालाएं पहनाते हैं तथा उन्हें गुड़ और अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हैं। शाम को मैदान में बैलों को दौड़ाया जाता है। चौथे दिन कानुम पोंगल होता है। खाना बांधकर पूरा परिवार घर से बाहर निकल पड़ता है। जगह जगह मेले लगते हैं। लोग मेलों में घूमते हैं या आसपास के स्थान देखने के लिए चल पड़ते हैं। इस तरह चारों दिन लोग अपने दैनंदिन कामों से छुट्टी लेकर इस त्योहार का आनंद लेते हैं। खेती से संबंधित यह त्योहार पूरे भारत में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। गुजरात से लेकर बंगाल तक लोग इसे संक्रांति के नाम से मानते हैं। महाराष्ट्र में ये तिल गुड़ का त्योहार है। लोग एक दूसरे को तिल गुड़ देकर कहते हैं, तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, अर्थात तिल और गुड़ खाओ और मीठा बोलो। पंजाब में संक्रांति से एक दिन पहले लोहड़ी का त्योहार मनाते हैं। लोहड़ी का अर्थ है छोटी या छोटी संक्रांति। अरुणाचल प्रदेश में पानुंग का त्योहार भी इसी समय मनाया जाता है। विविधता में एकता भारत की विशेषता है। एक ही त्योहार को लोग विविध रूपों में मनाकर भारत की सांस्कृतिक एकता को मजबूत बनाते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोंगल।

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

ये था प्रायोजित कार्यक्रम NCERT प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम।

आकाशवाणी दरभंगा की अगली प्रस्तुति फिल्म संगीत, जहां इस समय आप आनंद उठाते हैं नए फिल्मी गीतों का। तो हमारे साथ बने रहिए 12:30 तक और आनंद उठाइए नए फिल्मी गानों का। तो शुरुआत हम कर रहे हैं बड़े मियां छोटे मियां फिल्म के इस गीत के साथ।

जी हाँ श्रोताओं, ये फिल्म थी बड़े मियाँ छोटे मियाँ, और इसमें आप सुन रहे थे नेहा भसीन और साथियों को। गीत के बोल इरशाद कामिल के थे और संगीत विशाल मिश्रा का था।

आकाशवाणी दरभंगा से समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। इस सफर में अभी आप आनंद उठा रहे हैं नए फिल्मी गीतों का, और जो गीत अभी आप सुने थे उसे हमने लिया था बैड बॉय फिल्म से। आवाज थी आशीष कौर की। जी हाँ श्रोताओं, लीजिए अगला गीत जो हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं उसे हमने लिया है गदर टू फिल्म से। आवाजें हैं विशाल मिश्रा और नीति मोहन की। गीत के बोल सईद कादरी के हैं और संगीत मिथुन का।

ये आवाज थी अरिजीत सिंह की, फिल्म थी गदर 2। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दरभंगा और इस समय सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए सुनिए अगला गीत, विशाल मिश्रा और शिल्पा राव की आवाजों में है, जिसे हमने लिया है फिल्म फाइटर से। गीत के बोल कुमार के हैं और संगीत विशाल शेखर का। तो ये रहा अगला गीत।

0: सा।
1: अभी जो गीत आपने सुना वो ड्रीम गर्ल 2 से हमने लिया था, मीत ब्रॉस और सुनिधि चौहान की आवाजों में। लीजिए सुनिए अब जुबिन नौटियाल को, फिल्म है रेड 2।

जुबिन नौटियाल के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त हुआ। श्रोताओं, अगर नए गीतों का आनंद फिर से आप आज लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा करना पड़ेगा इंतज़ार, और वो इंतज़ार है शाम 5:30 का। आकाशवाणी दरभंगा से अभी वक्त हो रहा है कार्यक्रम नारी संसार का, तो लीजिए सुनिए।

सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाए हम। पेड़ पौधे हैं मानव जीवन के लिए वरदान, मत करो इनका अपमान। पशु पक्षी है धरती की शान, पेड़ है पर्यावरण की जान। विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं। आज के इस अंक के साथ मैं आरती और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नारी संसार। बहनों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज 5 जून है और आज ही के दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण, जलवायु, स्वच्छता, प्रदूषण और वृक्ष को लेकर, यानी कि ये सभी चीज़ों को मिलाकर बनता है। और ये सभी चीज़ें, यानी कि पर्यावरण, हमारे दैनिक जीवन में सीधा संबंध रखता है और उसे प्रभावित भी करता है। मनुष्य और पर्यावरण एक दूसरे पर ही निर्भर होते हैं। आपको बता दूं कि पर्यावरण शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि और आवरण, जिसमें परि का मतलब होता है हमारे आसपास। ये भी आप कह सकते हैं कि जो हमारे चारों ओर है वही आवरण है। आवरण का मतलब है कि जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं, पर्यावरण, जैसे जलवायु, प्रदूषण या वृक्षों का कम होना मानव शरीर और स्वास्थ्य पर इसका सीधा असर पड़ता है। मानव की कुछ अच्छी बुरी आदतें भी होती हैं, जैसे पानी दूषित करना, पानी बर्बाद करना, वृक्षों की कटाई करना, ये पर्यावरण को पूरी तरह से प्रभावित करती है, नष्ट करती है। इसका नतीजा बाद में मानव को प्राकृतिक आपदाओं का सामना करके भुगतना ही पड़ता है। और अच्छी आदतें उनकी ये होती है, वृक्षों को सहेजना, जलवायु प्रदूषण रोकना और स्वच्छता बनाए रखना। स्वच्छता बनाए रखना भी पर्यावरण को प्रभावित करती है। बहनों, आज के युग में पर्यावरण प्रदूषण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। श्रोता बहनों, बढ़ती जनसंख्या और बड़ी बड़ी इमारतों के कारण पर्यावरण की प्रकृति नष्ट हो रही है। हर जगह जगह घने वृक्ष को काटकर बड़ी बिल्डिंगों का निर्माण करना पर्यावरण और प्रकृति के साथ नुकसानदायक है। इतना ही नहीं, जहां वाहनों का धुआं, मशीनों की आवाज़, खराब रासायनिक जल, ये सब चीज़ें से वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, जिसके कारण हमें अनेक बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाकर पर्यावरण का बचाना है। ये दिन याद दिलाता है कि यदि आज हम प्रकृति की रक्षा नहीं करेंगे तो आने वाले पीढ़ियों के लिए पृथ्वी रहने योग्य नहीं बचेगी। और भी याद दिला देता है कि ये दिन लोगों को पर्यावरण संकटों, जैसे बढ़ते प्रदूषण, वनों की कटाई और प्रजातियों के विलुप्त होने के बारे में सोचना। तो बहनों, पेड़ों की कटाई को रोकना है, साथ ही प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना है और धरती को हरा भरा बनाना है। आज के समय में पर्यावरण प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन चुका है, तो ध्यान रखें, जहां संभव हो पेड़ पौधे लगाएं और उनका ख्याल रखें। अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें, प्लास्टिक उपयोग ना करें, इतना ही नहीं, पानी की बर्बादी होने से बचाए। तो बहनों, बातें आगे और भी करेंगे, पर उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा फिल्म संगीत।

0: बहनों, महिलाएं भी किसी भी प्रकार से पुरुष से कम नहीं है। जहाँ तक पर्यावरण की बात है तो इसमें भी महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है और बच्चों को भी सिखाती है पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में और पर्यावरण से जुड़ी बातें बताती है। खुद को वो पेड़ पौधे लगाती है और बच्चों को भी प्रोत्साहित करती है। इतना ही नहीं, हमारे भारतीय त्योहारों में पर्यावरण संरक्षण को आधार बनाया गया है, जैसे तुलसी पूजा, नीम की पूजा, वट वृक्ष की पूजा। ये परंपराओं के माध्यम से महिलाएं पर्यावरण संरक्षण में सहयोग प्रदान करती है। महिलाओं सदियों से पर्यावरण की रीढ़ रही है क्योंकि वे जल, ईंधन और चारे के साथ सीधे तौर पर प्रकृति पर निर्भर होती है। बहनों, हमारे यहाँ चाहे वनों की कटाई रोकना हो या पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करना हो या फिर महिलाएं ने अग्रणी भूमिका इसमें निभाई। आज भी महिलाएं अपने घरों में अगर छोटी छोटी खेती करती हैं, वो भी उनके पर्यावरण का ही तरीका है। इसमें वे एक छोटे प्रयास से प्रकृति को सजाती है और पर्यावरण का संरक्षण करती है। बहनों, आप अपने घरों का ही उदाहरण ले लीजिए, जहां महिलाएं शौक के लिए अपने घर को सजाती है, यानी कि गार्डन को सजाती है, वही महिलाएं मुहिम बना लेती है और पर्यावरण के संरक्षण में अपना जीवन लगा देती है। काम कोई भी हो, चाहे छोटा हो या बड़ा, लेकिन सामाजिक परिवर्तन में महिलाओं के बिना कुछ संभव नहीं है। तो बहनों, चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे, पर उससे पहले आपको सुनवाते हैं वार्ता। वार्ताकार है हमारी रेडियो सखी रजनी जी, तो आइए सुनते हैं इनसे वार्ता।
1: नमस्कार बहनों, मैं रजनी। आज हम बात करेंगे बच्चों में डाले व्यायाम की आदत के विषय पर। बहनों, बचपन शरीर और मन के विकास का आधार है। इस समय डाली गई अच्छी आदतें जीवन भर साथ रहती है। इन्हीं में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण आदत है नियमित व्यायाम की आदत। आज के बदलते जीवन शैली और तकनीकी युग में बच्चे शारीरिक रूप से कम सक्रिय होते जा रहे हैं, जो उनके स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय है। बहनों, व्यायाम के लाभ बच्चों के लिए शारीरिक विकास से मायने रखता है। व्यायाम बच्चों की हड्डियां और मांसपेशियों को मजबूत करती है। यह उनकी लंबाई, वजन और संपूर्ण शारीरिक ढांचे के संतुलित विकास में सहायक होता है। मानसिक संतुलन में भी व्यायाम से बच्चों में तनाव कम होता है, नींद अच्छी आती है और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है। बीमारियों से भी बचाव होती है व्यायाम करने से। नियमित गतिविधियों से मोटापा, डायबिटीज, हार्ट डिजीज जैसी बीमारियों से बचाव होता है। सामाजिक विकास की बात करें तो खेलों और समूह गतिविधियों के जरिए बच्चों में टीम भावना, सहयोग और अनुशासन जैसे गुण विकसित होते हैं। अभिभावकों की भूमिका की बात करें तो बच्चों को व्यायाम की ओर प्रेरित करना माता पिता और शिक्षकों की जिम्मेदारी है। उन्हें मोबाइल, टीवी और वीडियो गेम्स से दूर रखकर पार्क, योग, दौड़,

साइकिलिंग, रस्सी कूद जैसे खेलों की आदत डालनी चाहिए। अभिभावक स्वयं उनके साथ व्यायाम करते हैं तो बच्चा ज्यादा प्रेरित होता है, देखकर सीखता है। तो बहनों, बचपन में डाली गई व्यायाम की आदत बच्चों को स्वस्थ, अनुशासित और सक्रिय बनाती है। यह न केवल वर्तमान में बल्कि भविष्य में भी उन्हें बीमारियों से बचाए रखती है और उनके जीवन को ऊर्जा से भर देती है। इसीलिए बच्चों को व्यायाम की आदत अवश्य डालें, यह उनके संपूर्ण विकास की पहली सीढ़ी है। धन्यवाद।

तो बहनों, अभी आप सुन रही थी वार्ता हमारी रेडियो सखी रजनी जी से। अब हम चलते हैं अगले चर्चा की ओर। बहनों, अभी मौसम ऐसा चल रहा है कि

तो बहनों, अभी आप सुन रही थी वार्ता हमारी रेडियो सखी रजनी जी से। अब हम चलते हैं अगले चर्चा की ओर। बहनों, अभी मौसम ऐसा चल रहा है कि गर्मी, कभी गर्मी चिपचिपाती, कभी झुलसाती, तो कभी सीधे सिर चढ़कर चक्कर दिलाने वाली है। आज के मौसम में बाहर सुबह हल्की धूप कब दोपहर में तेज तपिश के में बदल जाती है, किसी को पता ही नहीं चलता है। ऐसे में सेहत से जुड़ी परेशानियां भी कम नहीं होती है, कभी थकान तो कभी चक्कर आना या डिहाइड्रेशन, और भी न जाने क्या क्या हो सकता है। सखी बहनों, डॉक्टर का कहना है कि बदलते पारे के साथ अपनी दिनचर्या, खान पान और आदतों में बदलाव लाना बहुत जरूरी है, ताकि इस गर्मी का सामना हम आसानी से कर सके। गर्मी और पित्त दोष का संबंध गर्मी से होता है। आयुर्वेद की माने तो जब बाहर का तापमान बढ़ता है तो शरीर के अंदर का पित्त दोष बढ़ जाता है या बढ़ने लग जाता है। ऐसे में जरा सोचिए कि बाहर सूरज आग उगल रहा है तो हमारा क्या होगा, इसका असर हमारे शरीर पर पड़ेगा और पाचन बिगड़ेगा। इतना ही नहीं, इसका असर त्वचा पर रिएक्शन के तौर पर भी नज़र आएगा। लिहाजा गर्मियों में हमें सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी ठंडा रहने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो बहनों, पहचाने अपने शरीर के संकेतों को। जी हाँ, गर्मी के मौसम में अगर बार बार प्यास लगे या ज़्यादा पसीना आए या फिर थकान, सिर दर्द, चक्कर आना, त्वचा पर लालिमा, जलन, चिड़चिड़ापन, बार बार गुस्सा आए, तो समझ जाए कि पित्त दोष का ये संकेत है। तो बहनों, इसी चर्चा पे आगे भी बातचीत करेंगे, पर उससे पहले सुनवाते हैं एक और प्यारा सा फिल्म संगीत।

बहनों, मौसम चाहे जो भी हो, मौसम के हिसाब से ही हमारा खान पान होनी चाहिए। जी हाँ, बढ़ते गर्मी के साथ हमें ऐसे आहार और आदतें अपनानी चाहिए जो शरीर को शांत करे, ठंडक दे

और पित्त को संतुलित रखे। हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर के लिए पानी कितना ज़रूरी है और ये पानी हमें इस मौसम में ज़्यादा ही पीना चाहिए। बहनों, पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, पर ये हम नहीं जानते हैं कि पानी कैसे पीना है, पानी कितना पीना है। पहले कुछ बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे एकदम ठंडा या बर्फ़ वाला पानी पीने से बचे। संभव हो तो मिट्टी के घड़े का पानी ज़रूर पिए, पानी थोड़ा थोड़ा करके पिए, एक बार में बहुत ज़्यादा पानी ना पिए। सुबह उठकर गुनगुना पानी पाचन के लिए अच्छा रहता है, हो सके तो सुबह एक गिलास गुनगुना पानी ज़रूर पिए। चाहे तो पानी में पुदीना, धनिया या सौंफ डालकर भी आप पी सकती हैं, ये प्राकृतिक का अच्छा स्रोत है। तो बहनों, आज का हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें पत्र के माध्यम से ज़रूर बताएं। हमारा पता है कार्यक्रम नारी संसार द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी दरभंगा, पिन कोड 8460004। तो बहनों, अब दीजिए आरती को विदा। नमस्कार।

0: बहने अभी सुन रही थी अपना कार्यक्रम नारी संसार, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। स्टूडियो की घड़ी में इस समय 1 बजने ही वाला है। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत तटस्थ रखा गया है।
2: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
1: बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। उद्योग संगठन SOCHM ने RBI के रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा है कि यह विकास को गति देगा और उद्योग जगत को मजबूती प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक विशाल जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे।
3: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4 लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुँच में सुधार होगा। जन कल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 2400 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ESIC अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की डिजिटल बुनियादी ढांचा यात्रा गति पकड़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एयर ट्रंक ने भारत में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने और 5 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ये देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। गृह मंत्री अमित शाह त्रिपुरा के अगरतला में BSF के जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की हर

0: सीमा की भौगोलिक और सुरक्षात्मक चुनौतियां अलग अलग हैं, इसलिए सभी सीमाओं पर एक जैसी रणनीति के बजाय स्मार्ट मॉडल अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पर्यावरण को लेकर कई कदम उठाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अनामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अनामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें बेंगलुरु विकास मंत्रालय देने का वादा किया गया था, लेकिन उन्हें जल संसाधन मंत्रालय दिया गया। उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्र भूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इससे झलकती है। नागालैंड सरकार ने राज्य में तंबाकू या निकोटीन युक्त सभी खाद्य उत्पादों के निर्माण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर एक वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध पान मसाला, सुगंधित और स्वादयुक्त चबाने योग्य उत्पादों के साथ साथ तंबाकू या निकोटीन युक्त किसी भी अन्य खाद्य पदार्थ पर लागू होता है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज गिरावट का रुख रहा। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 86 अंक फिसल कर 74,274 पर, जबकि निफ्टी 43 अंक लुढ़क कर 23,374 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलो हर्ट्ज पर।

कार्यक्रम विवरण। श्रोताओं, इसके तहत जानकारी प्राप्त कीजिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि 1:10 पर आप सुनेंगे समवेत स्वर में देश भक्ति गीत। आज शुक्रवार है श्रोताओं, हम आप तक पहुंचाएंगे पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

दिन के 2 बजे सुनिएगा प्रादेशिक समाचार और 2:05 पर इलाकाई खबरें। दिन के 2:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से आप सुनेंगे रोजगार सूचना और 2:15 पर दोपहर समाचार प्रसारित किए जाएंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। दिन के 2:30 आप आनंद ले सकते हैं फिल्म संगीत का। ये थे पहली सभा के शेष कार्यक्रम। एक नज़र हम डालते हैं अपनी दूसरी सभा के ऊपर। दूसरी सभा की शुरुआत 5:00 युवावाणी कार्यक्रम के साथ। शाम 6:10 पर

शाम 6:25 पर मैथिली संवाद, शाम 6:30 कार्यक्रम गाम घर और 7 खेती गृहस्थी। रात 8:15 पर आप सुनेंगे मैथिली साहित्यिक कार्यक्रम सिंगरहाट। रात्रि 8:45 पर हम आप तक पहुंचाएंगे समाचार संध्या और रात 9 न्यूज एट 9। रात 9:15 पर उर्दू में खबरें और रात 9:30 सुनिएगा आज शब्द शिल्प, आकाशवाणी भागलपुर की प्रस्तुति शब्द शिल्प, जिसे हम पटना केंद्र से रिले कर आप तक पहुंचाएंगे। और आज शुक्रवार है, रात में आप 10 सुनिएगा पुराने फिल्मों के सदाबहार गाने कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी में। तो ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त रूपरेखा। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में देशभक्ति गीत।

समवेद स्वर में अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। हमारा अगला कार्यक्रम पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश, बस कुछ ही पलों में।

जी हाँ, आपके मिजाज कैसे हैं? बिल्कुल फरमाइए, और हम आपकी सेवा में हाजिर हैं ढेर सारे खतों के साथ आपकी फरमाइश को लेकर। तो स्वीकार कीजिए रज्जू का सस्नेह नमस्कार कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, और साथ ही विश्व पर्यावरण दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे तमाम श्रोताओं को, क्योंकि आप तो सभी जानते हैं हर वर्ष 5 जून यानी कि आज ही के दिन विश्व पर्यावरण दिवस हम सभी मनाते हैं। और मनाए भी क्यों नहीं, क्योंकि यह दिन हमें प्रकृति के महत्व को समझाता है। पेड़ लगाएं, पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं। पर्यावरण है हम सबकी जान, इसीलिए करो इसका सम्मान। और साथ ही एक पेड़ लगाना भी तो एक पुत्र के समान है। तो बिल्कुल इस दिन को याद करते हुए अब हम बगैर टाइम को लेते हुए करते हैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत, और पत्रों की गठरी को खोल रहे हैं। ये रहा मेरे हाथ में कार्यक्रम की पहली फरमाइश। ये खत आया है गांधी चौक रोपर पंजाब से। आप हैं हरदेव मिका, बलविंदर बिरक, जितेन बिरक, मिका बिरक और आपके सारे दोस्त। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से आप हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झाबेंद्र कुमार वर्मा जी। अनूपपुर मध्य प्रदेश से आप हैं जयमंत्री के भट्ट, कृष्णा के भट्ट और रुद्रानी के भट्ट और पूरा के भट्ट परिवार के सभी लोग। नाका नंबर 5 लाल पोखर जिला दरभंगा बिहार से आप हैं मोहम्मद कलीम दीवाना, मोहम्मद दानिश बाबू, अमन बाबू, सरफराज बाबू, सोनी बेगम।

हम खुशबू प्रवीण, साहिस्ता प्रवीण, शमा प्रवीण, डॉली प्रवीण, मेहरा प्रवीण और आपके सारे दोस्त जैतू का किशनपुर से आप हैं। आलम दिलकश, शवानाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, वकील राही, चांदनी नाज और आपके अम्मी आपा। नाहर मंटोला, जिला दरभंगा बिहार से आप हैं। कादिर अली, जाकिर अली, हामिद अली, जाबिर अली, मोहम्मद अरमान और मोहम्मद सलमान जी। नूर महल मैसोल, सीतामढ़ी बिहार से आप हैं। मुशरत जहानाज, तलत जहानाज, फरहत जहानाज, रिफत जहानाज, नुजहत जहानाज, साजिया साहिन नाज, नाजिया नूरी नाज और बच्चू शेख और चीना शेख जी। गुलूबरा इमलीघाट, जिला दरभंगा बिहार से आप हैं। भोलबम परमेश्वर मंडल, सोनिया देवी, शिव पूजन मंडल, शंभु मंडल, राम बाबू और पूनम कुमारी। तो लीजिए, आप सबों की फरमाइश पर पेश है कार्यक्रम का पहला गीत आपके रेडियो सेट और मोबाइल ऐप पर। सोनू निगम और अलका याज्ञिक की आवाजों में फिल्म रिफ्यूजी का ये प्यारा सा गीत।

0: ऊपर वाले ने अपनी मोहब्बत के सदके में हम सब के लिए ये धरती बनाई थी, पर मोहब्बत के दुश्मनों ने इस पर लकीरें खींच के सरहदें बना दी। मैं जानता हूं वो लोग तुम्हें इस बार नहीं आने देंगे, मगर ये पवन जो तुम्हारे यहां से होकर आई है तुम्हें छू कर आई होगी। मैं इसे सांस बनाकर अपने सीने में भर लूंगा।
1: ये नदियां जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो, मैं इसके पानी से अपने प्यासे होंठों को भिगो लूंगी।

0: आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: पंछी नदिया पवन के झोंके, सरहद ना कोई रोके, रिफ्यूजी फिल्म का ये गीत सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजों में हम आप तक पहुंचा रहे थे। पसंद आप सबने की थी। श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। ये कार्यक्रम प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 1:15 से दिन के 2 बजे तक प्रसारित होती है और यह कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ आप सबों द्वारा भेजे गए खातों पर ही आधारित होता है। तो लिखते रहिए ढेर सारे खत और सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा को। और लीजिए अगला गीत सुनने से पहले एक सूचना हम आप तक पहुंचा रहे हैं जो कार्यक्रम संबंधी है। श्रोताओं, आप जैसा कि प्रदूषण नियंत्रण, प्राकृतिक संसाधनों के संतुलित उपयोग तथा जैव विविधता की रक्षा करके ही हम पृथ्वी को अपने लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण और हमारी जिम्मेदारी, यही है आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के अगले अंक का विषय। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर मनुराज शर्मा। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़ने के लिए फोन नंबर होंगे 9430029353 और बेस नंबर हमारा है 2222481। बाहर के श्रोता कोड लगाएंगे 06272। समय याद रखें रविवार यानी कि 7 जून 2026 दिन के 11 बजे। सूचना समाप्त हुई और बढ़ते हैं हम अगले खत की तरफ। आप हैं ग्राम महेश्वरी तहसील मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धारे, वाल्मीकि धारे, नीनाजी धारे, स्वप्निल धारे, अजय सिरोडकर और आपके सारे दोस्त। गोला बाजार बक्सर से आप हैं श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित जी। अगला खत आया है रंगोली लिस्नर्स क्लब राजनगर जिला मधुबनी बिहार से। आप हैं नवीन सिंह, ज्योति सिंह, सुशांत, चुलबुल रानी और सागर बाबू। ग्राम पंचायत बठेना से आप हैं बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा और रेखा धनेश्वरी वर्मा जी। पुराना तालाब डुमराव से आप हैं बलीउल्लाह अंसारी, आसमानाज अंसारी और आपकी प्यारी बिटिया सोनम। सारिमपुर बक्सर से आप हैं शरीफुद्दीन अंसारी, फातमा नाज अंसारी और पूरा अंसारी परिवार के सभी लोग। इंदिरा बिहार दिल्ली से आप हैं डब्लू अंसारी, वसीम अकरम और आपके सारे दोस्त। रामपट्टी गौसनगर जिला दरभंगा बिहार से शुभ नारायण महतो, राजा बाबू, राजेश कुमार, लक्ष्मी नारायण महतो और अजय कुमार जी। और आप हैं आमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारणी ठाकुर, सूरज, ज्योति, रियांश और गुरिया ठाकुर जी। गांधी चौक रोड पर पंजाब से आप हैं हरदेव मिका, बलविंदर बिरक, जितेन बिरक और मीका बिरक जी। तो लीजिए आप सबों के फरमाइश पर पेश है कार्यक्रम का अगला गीत आपके रेडियो सेट और मोबाइल ऐप पर अनुराधा पौडवाल और विपिन सचदेवा का गाया हुआ। फिल्म का नाम है जुनून। तो लीजिए सुनिए।

मिलते मिलते हंसी वादियों में दिल खो गया तो क्या करोगे। जुनून फिल्म का ये गीत अनुराधा पौडवाल और बिपिन सचदेवा की आवाजों में हम अभी आप तक पहुंचा रहे थे। पसंद आप सबकी थी। आप सुन रहे हैं इस समय कार्यक्रम आपकी फरमाइश, जो सिर्फ और सिर्फ श्रोताओं आपके द्वारा भेजे गए पत्रों पर ही आधारित होता है। तो लिखते रहिए ढेर सारे खत, और जो आकाशवाणी दरभंगा के कार्यक्रम से अभी तक नहीं जुड़े हैं, पुराने श्रोता को तो हमारा पता मालूम ही है, जो नए जुड़ना चाहते हैं तो उठाइए कलम और कागज, लिखिए हमारा पता कार्यक्रम आपकी फरमाइश द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी दरभंगा। और जो इस कार्यक्रम को अपने स्मार्टफोन पर सुनना चाहते हैं तो न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड कीजिए और आनंद उठाइए इस कार्यक्रम का दिन के 2 बजे तक। जी हाँ, ये अगला खत जो आया है ये है टाबर चौक आशापुर जिला दरभंगा बिहार से। हमारे श्रोता हैं अमर लाल मनोहर, दुलारे लाल मनोहर, सुंदर लाल मनोहर, प्रेम लाल मनोहर और आपके सारे दोस्त। पुणे से आप हैं पंकज आर्या, प्रियंका आर्या, जरूर बरोद, बाबा साहब बरोद, मीनाक्षी चरणे और रजनी कानीरे जी। इंदिरा विहार रायगढ़ से अकरम नूरजहां, डब्लू नूरजहां, वसीम नूरजहां और वली उल्लाह नूरजहां। राजनंदन गांव से याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा और इरफान आसमा जी। जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी और आदिबा तिवारी। इनामटोला भगवतीपुर पंचायत जिला दरभंगा बिहार से आप हैं नूतन सहनी, कंचन, बबीता, कोमल, नव्या, सुधा, ज्योति त्रिपुरारी, रासो देवी, रिंकू देवी, रुचि कुमारी, एस के सहनी जी। अमरपुर पैंड्रा छत्तीसगढ़ से आप हैं दीपक कुमार, रोशन कुमार, वंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, दिशा और लब श्रीवास्तव। शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और क्रिस श्रीवास्तव जी। झंझारपुर लंगरा चौक जिला मधुबनी बिहार से आप हैं हरे राम पासवान, काजल कुमारी, जयशंकर पासवान, रानी कुमारी और आपके सारे दोस्त। तो लीजिए, आप समूह की फरमाइश पर पेश है कार्यक्रम का अगला गीत साधना सरगम और पंकज उदास की आवाजों में। गीत के बोल इंदिवर के हैं और संगीत है बीजू शाह का। फिल्म का नाम है मोहरा।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दरभंगा और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पत्रों पर आधारित फार्मा।

ऐसी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। अगला गीत सुनने से पहले कार्यक्रम संबंधी एक सूचना हम आप तक पहुंचा रहे हैं। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, प्रदूषण नियंत्रण, प्राकृतिक संसाधनों के संतुलित उपयोग तथा जैव विविधता की रक्षा करके ही हम पृथ्वी को अपने लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण और हमारी जिम्मेदारी, यही है आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के अगले अंक का विषय। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर मनुराज शर्मा। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़ने के लिए फोन नंबर होंगे हमारा 9430029353 और बेस नंबर है 222481। बाहर के श्रोता कोड लगाएंगे 06272। समय याद रखें, रविवार 7 जून 2026 दिन के 11 बजे।

ये सुरक्षित रख सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण और हमारी जिम्मेदारी, यही है आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के अगले अंक का विषय। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर मनुराज शर्मा। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़ने के लिए फोन नंबर होंगे हमारा 9430029353 और बेस नंबर है 222481। बाहर के श्रोता कोड लगाएंगे 06272। समय याद रखें रविवार 7 जून 2026 दिन के 11 बजे। सूचना समाप्त हुई और बढ़ते हैं हम अगली फरमाइश की तरफ। आप हैं नरहन एस्टेट जिला समस्तीपुर बिहार से उदयकांत ठाकुर, अमन पराशर, बेबी आराध्या, नूतन भाभी जी और ललन मिश्रा जी। ग्राम झांसी से आप हैं राजकुमार डूडी, सरजीत सिंह डूडी, प्रमोद कुमार डूडी। हांसी शहर से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष, योगी, बब्बू और डब्बू जी। बंदना नगर एयरपोर्ट रोड गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर मध्य प्रदेश से आप हैं पूजा, बबीता, शोभा, रेखा रघुवंशी। स्वाति प्रयाग चौधरी, परी, ललिता खर्चे, गणेश, कार्तिक और नारायण भाव खर्चे जी। बेरडी से आप हैं राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने, अर्जुन गवनेकर और धीरज सबसेरे जी। और ये फरमाइश है आशा रेडियो श्रोता संघ मेहर नगर उमरखेर महाराष्ट्र से। आप हैं अभिजीत गहवांकर, श्रीमती सरिता गहवांकर, प्रिंस एकांश गहवांकर। आकार हाइट्स बहादुरपुरा नागपुर से हैं श्रीमती वैशाली शैलेश गहवांकर, श्वेता, सुमित, कुमारी ध्वनि और परी। महाराष्ट्र बीड शहर से आप हैं प्रकाश पागरिया, पराग पागरिया, प्रदीप पागरिया, केशव पटेल, रामनिवास अग्रवाल जी। और हनुमानगढ़ राजस्थान से आप हैं महाकांत सिंह और सिंह परिवार के सभी लोग। तो लीजिए, आप सबों ने सुनना चाहा है अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज़ों में ये प्यारा सा गीत। गीत के बोल समीर के हैं और संगीत नदीम श्रवण का। फिल्म का नाम है आशिकी।

0: हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: जी हाँ श्रोताओं, अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज़ों में

अभी आप सुन रहे थे आशिकी फिल्म का ये प्यारा सा गीत। गीत के बोल समीर के थे और संगीत नदीम श्रवण का। और कार्यक्रम भी अब हमें इशारा कर रही है विदा लेने के लिए, तो चलते चलते हम सभी श्रोताओं से गुजारिश करेंगे और यही कहना चाहेंगे कि जो पर्यावरण को करो रक्षा, यही है हमारी सच्ची शिक्षा, क्योंकि हम सब का एक ही सपना है, हरा भरा हो देश अपना। इसे उम्मीद के साथ अगले अंक तक के लिए कार्यक्रम आपकी फरमाइश से अब दीजिए रंजू को इजाज़त। नमस्कार।

0: ये था पत्रों पर आधारित फरमाइशें फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जा रहा था। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 2 बजने ही वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, उसके बाद इलाकाई खबरें। हमारे
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय ने आज पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली। पटना स्थित बिहार लोक भवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय के सम्मान में पटना हाई कोर्ट में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल, खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी, सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव सहित राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य उपस्थित थे। समारोह में कई न्यायाधीश, प्रशासनिक अधिकारी और गणमान्य लोग भी मौजूद थे। गौरतलब है कि इससे पहले न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय सिक्किम उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश थीं। वे पटना हाई कोर्ट की दूसरी महिला और 48वीं मुख्य न्यायाधीश बनी हैं। बक्सर जिले के इटाढ़ी रेलवे कुमटी पर नवनिर्मित रोड ओवरब्रिज क्षतिग्रस्त हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि 26 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से निर्मित इस आरओबी का उद्घाटन 4 दिन पहले हुआ था। आरओबी का पाया संख्या 5 पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके बाद प्रशासन ने पुल पर आवागमन बंद कर दिया है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर जीवन को बचाने और जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत यह दिवस वर्ष 1973 से मनाया जाता है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस अवसर पर राजधानी पटना के जेपी गंगापत उद्यान परियोजना में पौधारोपण कर 1,00,000 पेड़ लगाने के कार्य का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने लोगों से अधिक पौधारोपण कर धरती पर हरियाली बढ़ाने की अपील की। साथ ही उन्होंने लोगों को बिजली की बचत, सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाने, ईंधन बचाने और ईवी वाहनों का उपयोग करने को कहा। इधर हमारे संवाददाताओं ने बताया कि इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण के संकल्प के साथ कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। पूरा प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में है। कई स्थानों का

तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 41.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ बक्सर राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान तापमान में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान उत्तर पश्चिम और उत्तर मध्य भागों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने की चेतावनी जारी की गई है। आज संपूर्ण क्रांति दिवस है। आज ही के दिन लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। मुख्य राजकीय समारोह पटना के जेपी गोलम्बर पर आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी समेत राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्यों ने जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। अररिया जिले के पलासी थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर एक व्यक्ति को लगभग 5 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। शेखपुरा से पुलिस ने 2 कार से भारी मात्रा में शराब के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। खगड़िया जिले की चौथम थाना क्षेत्र में एनएच 107 पर एक तेज रफ्तार हाईवा की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की मौत हो गई। इधर समस्तीपुर के मुसरी खरारी थाना क्षेत्र के गंगापुर गांव के पास एक अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

ये आकाशवाणी पटना है। अब आप शर्फुल हुदा से इलाकाई खबरें सुनिए। जस्टिस मीनाक्षी मदन राय ने आज पटना हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ लिया। पटना वाक़े बिहार लोक भवन में मुनक़िद एक तकरीब में गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन ने उन्हें ओहदे और राजदारी का हल्फ दिलाया। हल्फ बर्दारी के बाद जस्टिस मीनाक्षी मदन राय के एजाज़ में पटना हाईकोर्ट में इस्तकबालिया तकरीब मुनक़िद की गई। इस मौके पर वज़ीर आला सम्राट चौधरी, नायब वज़ीर आला विजय कुमार चौधरी, महसूलात व इस्लाहात अराजी के वज़ीर दिलीप जायसवाल, खुराक और सार्फीन तहफ़ के वज़ीर अशोक चौधरी, इमदाद बाहमी के वज़ीर राम कृपाल यादव समेत रियासती काबीना के कई अराकीन मौजूद थे। तकरीब में कई जजेस, इंतजामी अफसरान और मुअज्जज़ शख्सियतें भी मौजूद थीं। गौरतलब है कि इससे कबल जस्टिस मीनाक्षी मदन राय सिक्किम हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस थीं। वो पटना हाईकोर्ट की दूसरी खातून और 48वीं चीफ जस्टिस बनी हैं। बक्सर ज़िले के इटाढ़ी रेलवे गुमटी पर नवतामीर रोड ओवर ब्रिज नुकसान ज़दा हो गया है। हमारे नामानिगार ने बताया कि 26 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से इस आरओबी का इफ्तिताह 4 दिन पहले हुआ था। आरओबी का पिलर नंबर 5 पूरी तरह तबाह हो गया है। इसके बाद इंतज़ामिया ने पुल पर आमदोरफ्त मसदूद कर दिया है। आज आलमी यौम माहौलियात है। ज़मीन पर ज़िंदगी को बचाने और बेदारी पैदा करने के लिए अक़वामे मुत्तहिदा माहौलियात प्रोग्राम के तहत ये दिन 5 जून को 1973 से मनाया जाता है। वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने इस मौके पर राजधानी पटना के जेपी गंगापत बोटानिकल प्रोजेक्ट में शजरकारी करके 1 लाख दरख्त लगाने का काम किया। वज़ीर आला ने लोगों से ज़्यादा शजरकारी करके ज़मीन पर हरियाली बढ़ाने की अपील की है। साथ ही उन्होंने लोगों को बिजली की बचत, शमसी तवानाई का इस्तेमाल बढ़ाने, ईंधन बचाने और ईवी गाड़ियों को इस्तेमाल में लाने को कहा। इधर हमारे नामानिगारों ने बताया कि आलमी यौम माहौलियात पर माहौलियात के तहफ़ के अज़्म के साथ कई बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं। पूरी रियासत शदीद गर्मी की जद में है। कई मकामात का दर्जा हरारत 40 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 41.8 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा से ज़्यादा पारा हरारत के साथ बक्सर रियासत का सबसे गर्म जगह रहा। राजधानी पटना का ज़्यादा से

0: ज्यादा दर्जे हरारत 40.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मौसम की पेशगोई में कहा गया है कि अगले 2 से 3 दिनों के अंदर दर्जे हरारत में किसी खास तब्दीली का इम्कान नहीं है। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान रियासत के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान रियासत के शमाल मगरिब और शमाल वस्त हिस्सों में 50 से 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने का भी इंतबाह जारी किया गया है। आज मुकम्मल यौम इनकलाब है। आज ही के दिन लोक नायक जयप्रकाश नारायण ने उस वक्त की कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। खास सरकारी तकरीब पटना के जेपी गोलंबर पर मुनक़िद की गई, जहां वज़ीर आला सम्राट चौधरी और नायब वज़ीर आला विजय कुमार चौधरी समेत रियासती काबीना के कई अराकीन ने जेपी के मुजस्मे पर गुलपोशी करके उन्हें खराज अकीदत पेश किया। अररिया जिले की पलासी थाना इलाके में पुलिस ने छापामारी करके एक शख्स को लगभग 5 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। शेखपुरा से पुलिस ने 2 कार से कसीर मकदार में शराब के साथ 5 स्मगलरों को गिरफ्तार किया है। खगड़िया जिले की चौथम थाना इलाके में NH 107 पर एक तेज़ रफ्तार हाईवा की जद में आने से मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवानों की मौत हो गई। इधर समस्तीपुर के मुसरी घरारी थाना इलाके के गंगापुर गांव के पास एक बेकाबू ट्रक की जद में आने से मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों की मौत हो गई। और इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी दरभंगा है, मीडियम वेव 231.5 मीटर पर।

लीजिए सुनिए अब आकाशवाणी दरभंगा से रोजगार सूचना। भारतीय नौसेना में 2026 के लिए आवेदन आमंत्रित है। आवेदन शुरू होने की तिथि आरंभ है 29 मई 2026 से ही। आवेदन की अंतिम तिथि है 18 जून 2026। कुल पद है 60। इच्छुक अभ्यर्थी इंडियन नेवी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एक और सूचना आप तक हम पहुंचा रहे हैं, एसएससी सीजीएल संयुक्त स्नातक परीक्षा 2026, पदों की संख्या 12,256। आवेदन आरंभ की तिथि है 21 मई 2026 और अंतिम तिथि 22 जून 2026। न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम 32 वर्ष। इच्छुक अभ्यर्थी एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एक सूचना है रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट के लिए, पदों की संख्या है 11,127। आवेदन आरंभ की तिथि 15 मई 2026 से है, अंतिम तिथि है 14 जून 2026। न्यूनतम उम्र इसके लिए है 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 30 वर्ष। इच्छुक अभ्यर्थी रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर साथ ही कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए कुल 543 पदों के लिए रिक्तियां निकाली है। पदों की संख्या है, एक बार फिर से याद दिला देते हैं, 543। आवेदन शुरू

0: है 1 जून 2026 से। आवेदन की अंतिम तिथि है 21 मई से, एक बार हम बता दें इसके लिए न्यूनतम उम्र है 18 वर्ष और अधिकतम 21 वर्ष। इच्छुक अभ्यर्थी इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ रोजगार सूचना अब समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:15 होने ही वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.25% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्कों का उद्घाटन किया। और जापान में पुरुषों के अंडर 18 हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों के 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा जाएंगे। प्रधानमंत्री दोपहर में एक जनसभा को संबोधित करने से पहले औद्योगिक और बुनियादी ढांचा कार्यों की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री शाम को दमन का दौरा करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दमन में नमो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन और आधुनिक नमो अस्पताल का उद्घाटन करेंगे, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री आज दमन कन्वेंशन सेंटर, निफ्ट परिसर और एक प्रतिष्ठित ब्रिज समेत कई ऐतिहासिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। समुद्री विकास की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में प्रधानमंत्री आज केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए भी 885 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं के तहत कल्पेनी और कदमत द्वीपों पर बहुउद्देश्य जेटियों का विकास किया जाएगा, जिससे स्थानीय मछुआरों को एकीकृत मछली पकड़ने और नाव मरम्मत सुविधाएं मिलने के साथ साथ बड़े यात्री और क्रूज जहाजों के लिए साल भर रुकने की व्यवस्था उपलब्ध होगी। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, सूरत।
1: सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाले पूंजीगत लाभ और ब्याज से आय को पूरी तरह से कर छूट दे दी है। ये छूट इस वर्ष 1 अप्रैल से लागू होगी। सरकार ने इस संबंध में आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से सरकारी प्रतिभूतियों पर कराधान कई देशों के समान हो जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इसी तरह के आयकर छूट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स को भी दी गई है। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.2

0: 5% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत तटस्थ रखा गया है।
1: After a detailed assessment,
2: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
0: स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पूर्वानुमान को भी 4.6% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि पॉलीमर आधारित करेंसी नोट का प्रस्ताव बैंक के विचाराधीन है। देश के विभिन्न हिस्सों में बैंक शाखाओं और ATM में नोटों की कमी को लेकर कुछ ग्राहकों ने शिकायतें की हैं। इन मुद्दों पर उन्होंने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त नकदी है और यदि कोई कमी है तो उसे तुरंत पूरा कर दिया जाएगा। उद्योग संगठन एसोचैम ने RBI के रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा है कि यह विकास को गति देगा और उद्योग जगत को मजबूती प्रदान करेगा। एसोचैम के महासचिव सौरभ सान्याल ने कहा कि यह निर्णय आर्थिक प्रगति के साथ साथ मुद्रास्फीति को एक सुरक्षित दायरे में बनाए रखने में मददगार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की डिजिटल बुनियादी ढांचा यात्रा गति पकड़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एयरट्रंक ने भारत में लगभग 3,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करने और 5 GW डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन के भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल विदेश मंत्री एस जयशंकर के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान श्री खनाल नई दिल्ली में डॉ. जयशंकर से मुलाकात करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधों सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से पारस्परिक हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
3: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की सभ्यता ने अपने नागरिकों को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना सिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम जैसी पहलों ने प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज त्रिपुरा के लंकामुरा सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल BSF के जवानों को संबोधित करते हुए सीमा सुरक्षा को लेकर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर श्री शाह ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों CAPF के पर्यावरणीय योगदान को लेकर कहा कि वर्ष 2019 से CAPF कर्मियों द्वारा लगभग 6,40,00,000 पौधे लगाए गए हैं।
4: 2019 से लेकर आज तक हमारे सभी CAPF में जवानों ने लगभग 6,40,00,000 वृक्षों को लगाने का काम किया। इस साल हम 40,00,000 से 60,00,000 वृक्ष लगाने वाले हैं और अगले साल हम सबका एक सामूहिक संकल्प बनने वाला है कि अगले साल एक ही वर्ष में CAPF के

0: दो करोड़ से ज्यादा वृक्षों का लगाने का काम करेंगे और पर्यावरण की और देश की सेवा करेंगे।
1: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाया। आकाशवाणी से बात करते हुए डॉक्टर मुरुगन ने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने जल संरक्षण, वृक्षारोपण और वृक्षों की रक्षा तथा संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया।
2: माँ का नाम से एक पेड़ लगाने के लिए हमारा प्रधानमंत्री जी ऑलवेज एक्सप्रेस एंड ही कॉल्ड टू द नेशन वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, सो वी आर ऑल ऑब्जर्विंग दिस डे यस एंड माँ का नाम से एक पेड़ लगाएंगे।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजधानी में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत कई पर्यावरणीय पहलों का शुभारंभ किया। श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश बनकर उभरा है।
3: भारत दुनिया में जो विश्व पर्यावरणीय संकट है उसमें एनर्जी के क्षेत्र में, वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। जैसा अभी एरेना की रिपोर्ट में भी आया है कि सोलर ऊर्जा में हम दूसरे नंबर पे आए हैं, देश में वन क्षेत्र बढ़ रहे हैं और दिल्ली में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में धूलमुक्त दिल्ली के लिए कार्यक्रम शुरू हुआ है। दिल्ली में जो लोकल वनस्पतियां और जो पेड़ हैं उसके लिए प्रदर्शनी लगाई गई है। सभी एक पेड़ माँ के नाम पे जरूर लगाएं।
1: इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए हरियाली बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण उपायों में से एक है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हब एंड स्पोक मॉडल का उपयोग करते हुए हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद नेटवर्क के माध्यम से लगभग 100 कारीगरों को अमेरिका के बाजारों से जोड़ा जा चुका है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि ये पहल स्थानीय स्तर पर निर्मित हस्तशिल्प को बढ़ावा देती है और वोकल फॉर लोकल के दृष्टिकोण को मजबूत करती है।
4: जो बसंत कुंज में अवस्थित ये मार्केट है, सरकार ने मुझे ये जमीन दी है आर्टिजन के बढ़ावा के लिए, तो हम इसमें आर्टिजन को अभी स्टॉल लगा रहे हैं। लोकल फॉर वोकल है और दूसरा एकदम पर्यावरण अनुकूल।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव का एक लेख साझा किया है। अपने लेख में श्री यादव ने पर्यावरण संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई और जन भागीदारी का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भूपेंद्र यादव ने प्रकृति आधारित समाधानों के माध्यम से इन चुनौतियों से निपटने का अनुरोध किया है जो टिकाऊ, किफायती और दीर्घकालिक पारिस्थितिकी लाभ प्रदान करने में सक्षम है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कई मंत्रियों ने एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत पौधारोपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्र भूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इसमें झलकती है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अन्नामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता जारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते में स्थायी रूप से ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जाना चाहिए। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा कि परमाणु अप्रसार उनकी सरकार के दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य बना हुआ है। एक रिपोर्ट।
5: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भविष्य में किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते की आलोचना करते हुए इसे ईरान के परमाणु हथियार हासिल करने का मार्ग बताया और यह दावा किया कि कोई भी नया समझौता मौलिक रूप से अलग होगा। ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए अमरीकी हमलों का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि ये ठिकाने पूरी तरह नष्ट कर दिए गए थे और उन पर कड़ी निगरानी की जा रही थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी

0: थी कि अगर अमरीकी सैनिकों को निशाना बनाया गया तो तुरंत जवाबी कार्रवाई की जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति की ये टिप्पणियां ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर दीर्घकालिक समझौते तक पहुंचने के लिए जारी राजनयिक प्रयासों के बीच आई। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलते तक सेंसेक्स 289 अंक फिसलकर 74,071 पर, जबकि निफ्टी 100 अंक लुढ़ककर 23,317 पर था। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच जापान के काकामिगाहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.2% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर, और विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलो हर्ट्ज पर। दोपहर समाचार के बाद फिर से स्वागत है श्रोताओं आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र में, और आनंद उठाइए फिल्म संगीत का। फिल्म संगीत की शुरुआत हम कर रहे हैं रोजा फिल्म के इस गीत के साथ।

अगला गीत सुनने से पहले सुनिए कार्यक्रम संबंधी सूचना। श्रोताओं, प्रदूषण नियंत्रण, प्राकृतिक संसाधनों के संतुलित उपयोग तथा जैव विविधता की रक्षा करके ही हम पृथ्वी को अपने लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। यही है पर्यावरण संरक्षण और हमारी जिम्मेदारी। आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी का यही विषय है। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर मनुराज शर्मा। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़ने के लिए फोन नंबर होंगे 9430022 9353 और बेस नंबर का फोन नंबर है 222481। बाहर के श्रोता कोड लगाएंगे 06272। समय याद रखें, रविवार 7 जून 2026 दिन के 11 बजे। सूचना समाप्त हुई और आनंद उठाइए अभी से फिल्म संगीत का।

रक्षण और हमारी जिम्मेदारी, यही है आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के अगले अंक का विषय। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर मनुराज शर्मा। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़ने के लिए फोन नंबर होंगे 9430029353 2222481। ये हमारा बेस का नंबर हुआ। बाहर के श्रोता कोड लगाएंगे 06272। समय याद रखें रविवार 7 जून 2026 दिन के 11 बजे। सूचना समाप्त हुई।

आकाशवाणी दरभंगा से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम संबंधी सूचना। श्रोताओं, प्रदूषण नियंत्रण, प्राकृतिक संसाधनों के संतुलित उपयोग तथा जैव विविधता की रक्षा करके ही हम पृथ्वी को अपने लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण

इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त हुआ। फिल्में थी रोजा, तलाश, दामिनी, दिल है कि मानता नहीं, प्यार तो होना ही था। आवाजें एआर रहमान, मिनमी, अलका याग्निक, कुमार सानू, अनुराधा पौडवाल, सुरेश वाडेकर, आशा भोसले और उदित नारायण की थी। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में अपराह्न के 3 बज चुके हैं। आज की पहली सभा यहीं समाप्त होती है। दूसरी सभा इसी मीटर पर संध्या 5 बजे आरंभ होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।

0: विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: हेलो सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और श्रोताओं को आरती श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, जब हम किसी से मिलते या बात करते हैं तो उस व्यक्ति के बारे में, उसकी सोच के बारे में पता करने के लिए एक छोटी सी मुलाकात ही काफी होती है। वो एक छोटी सी मुलाकात अक्सर ताउम्र के लिए हमें एक प्यारा सा दोस्त दे जाती है। बेपरवाह अल्हड़ सवालों और जवाबों से परे होती है ये मुलाकात। कई बार तो रोज रोज मिलने वालों से वो दिल की बात नहीं हो पाती जो एक छोटी सी मुलाकात से बने दोस्त से हो जाती है। इन छोटी छोटी मुलाकातों से ही रिश्ते उम्र दराज होते हैं। तो हाँ, मुलाकातों का सिलसिला चलते रहना चाहिए और हर मुलाकात के लम्हों की अहमियत को समझना चाहिए, क्योंकि इन छोटी छोटी मुलाकातों की यादों से पूरा जीवन खुशबू से भर जाता है। तभी तो हमें भी रहता है ना इस छोटी सी मुलाकात का इंतजार, जो हेलो सहेली के माध्यम से हमें हमारी सखियों से मिलवाती है और दे जाती है यादों में सहेजने वाले ढेर सारे खूबसूरत पल। तो खत्म हुआ इंतजार, देखते हैं कौन और कहां से है आज की हमारी पहली कॉलर।
1: हेलो।
0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, कौन बोल रही हैं?
1: मैं भावना बोल रही हूँ, आदमपुर बिहार से, हरियाणा से।
0: अच्छा, हरियाणा से बोल रही हैं आप। तो बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैं घर से ही अपना बुटीक है मेरा, सिलाई करती हूँ।
0: यानी आपका बढ़िया कपड़ों का है ना?
1: हाँ जी।
0: तो इस समय अच्छा चल रहा है?
1: हाँ जी।
0: आप महिलाओं के कपड़े केवल बनाती हैं या सब मिक्स?
1: हाँ जी, महिलाओं के बनाती हूँ मैम, बच्चों के और महिलाओं के, सारी गारमेंट्स बनाती हूँ मैम।
0: बहुत अच्छी बात है।

0: अपना खुद का काम कर रही हैं। और बताइए आप आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं सुनना चाहूंगी आज तेरा मेरा साथ है फिल्म का, तेरा मेरा साथ है।
0: बहुत प्यारा है, तो चलिए सुनवाते हैं आपको ये वाला गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैम, नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रही हैं आप और कहाँ से?
1: स्वाति सिंह बोल रहे हैं, मनकापुर गोंडा उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं आपसे।
0: जी अच्छा, तो आप बताइए अब कि आप क्या कर रही हैं?
1: मैम हम पढ़ाई तो पूरी कर चुके हैं, आईटीआई कर रहे हैं और मैम घर का काम करते हैं और आपका प्रोग्राम सुनते हैं। रेडियो सुनने का शौक बहुत ज्यादा है।
0: अरे वाह, बहुत ही अच्छा शौक है आपका। और
1: हाँ,
0: तो आप जो पढ़ाई कर रही हैं उसमें आपको अच्छा पूरा इंटरेस्ट आता है, पूरी दिलचस्पी रहती है उसमें?
1: हाँ मैम रहती है, लेकिन इस समय गर्मी ज्यादा हो रहा है मैम, तो कहीं आना जाना नहीं हो पा रहा है, बस घर पे ही अपना तैयारी कर रहे हैं।
0: तो आपको मिल जाता है समय रेडियो सुनने का?
1: मैम मिल जाता है। मैम आज बहुत दिनों से ट्राई कर रहे थे तो आज आके मेरा कॉल लग गया, मेरा इंतजार खत्म हो गया। बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके।
0: बधाई हो आपको बहुत ज्यादा। और आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए और साथ ही रेडियो भी सुनते रहिए। और आप अपने पसंद का कोई गीत बताइए जो आप सुनना चाहती हैं।
1: मैम मूवी का नाम है इज्जत और गाने की बोल है, क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फिक्र छिपी रहे।
0: अच्छा, अरे वाह, बड़ी अच्छा गाना है।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: कौन बोल रहा है?
1: मैं बरगढ़ जिला उड़ीसा से सन प्रभाकर बोल रही हूँ।
0: अरे वाह, उड़ीसा से बोल रही हैं आप, तो बताइए आप क्या करती हैं?
1: जी मैं तो घर में हूँ, अभी तो शादी नहीं हुई और घर का काम काज करती हूँ और सभी कार्यक्रम सुनती हूँ, आकाशवाणी के सभी केंद्रों के कार्यक्रम सुनती हूँ।
0: पढ़ाई आपने करी है? पढ़ाई करती हैं?
1: हाँ, पढ़ाई तो खत्म है, कब से मेरी पढ़ाई खत्म हो गई है।
0: अच्छा, तो बताइए आपने क्या किया है?
1: मैं 10वीं पास हूँ जी।
0: अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: जी अभी अभी तो हमारे जो सिंगर है सुमन कल्याणपुर जी, उनका निधन हो गया है, तो
0: हाँ।
1: उनकी याद में एक गाना सुनेंगे उनकी आवाज में। तो जो भी उनके जो भी फिल्में हैं, मुझे तो याद नहीं फिल्मों के नाम, तो एक बढ़िया सा गाना उनकी याद में दे दीजिए।
0: बिल्कुल, मैं सुमन कल्याणपुर जी का ही मैं आपको एक गीत सुनवाती हूँ प्यारा सा।

0: अंतराल के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम हेलो सहेली में। तो देखते हैं कौन और कहां से है हमारी सखी जिनका कॉल लगा है अभी। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: आप पहले तो अपना नाम बताइए और फिर अपने शहर का नाम।
1: मैं इंदौर से ललिता मंडली।
0: अच्छा ललिता जी, इंदौर से बोल रही हैं। तो बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैं अभी हाउसवाइफ हूँ
0: जी। तो अभी इस समय गर्मियों के दिन चल रहे हैं, तो आप क्या करती हैं गर्मियों से थोड़ा सा राहत पाने के लिए?
1: गर्मियों से राहत पाने के लिए अपने पारंपरिक तरीके, नींबू शरबत।
0: बढ़िया।
1: और दिन में धूप में कम निकलना।
0: ये तो बहुत अच्छा।
1: ज्यादा जरूरत है धूप में निकलना तो फिर डॉक्टर जाना।
0: हाँ, तो आपके घर में कौन कौन है?
1: मेरे परिवार में हम पति पत्नी और दो बच्चे हैं मेरे।
0: बच्चे छोटे हैं कि बड़े? बच्चे छोटे हैं आपके?
1: बड़े हो गए।
0: बड़े हैं, चलो सब सही है, परेशान नहीं करते होंगे आपको ज्यादा।
1: आप बड़े हो गए तो ज्यादा परेशान करते हैं।
0: अच्छा अच्छा, ऐसा है। ऐसा भी होता है कि छोटे बच्चों के पीछे पीछे भागो और बड़े बच्चों के भी पीछे पीछे भागो। जी बिल्कुल। तो
1: आपसे बात करके बहुत आनंद आ रहा है मैम, आपसे पहली बार बात हो रही है।
0: अच्छा जी, तो आप बताइए कि आप जैसे कि अपने जो बच्चे हैं उनको आप जो गर्मियों के दिनों में बढ़िया बढ़िया नींबू के शरबत और बढ़िया बढ़िया चीजें बना बना के देती हैं?
1: देती हूँ, एक ऑफिस आता है तो उससे थोड़ा कम समय दे पाते हैं, वो सुबह 9 बजे निकल जाता है।
0: अच्छा,
1: तो रात को ही आता है 9 बजे। अच्छा, छोटा वाला रहता है तो हम दोनों माँ बेटे मजे करते हैं घर में।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है फिर तो। क्या नहीं क्या, अच्छा टाइम अपना निकलता होगा आपका। तो आप बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं अनिल कपूर की फिल्म है कसम, उसका शीर्षक गीत सुनना चाहती हूँ। कसम क्या होती है, कसम क्या होती है, जो तोड़ी ना जाए, जो छोड़ी ना जाए।
0: चलिए ठीक है, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: आप बताइए कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से?
1: मैं रेखा वर्मा बोल रही हूँ, मैं उज्जैन से।
0: अच्छा, रेखा जी बोल रही हैं उज्जैन से। तो बताइए रेखा जी, आप क्या करती हैं?
1: मैं मैम हाउसवाइफ हूँ।
0: अच्छा, तो आपके परिवार में कौन कौन है?
1: मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड, मेरी सासू माँ, एक लड़की मेरी और एक बेटा है, अभी बेटे की शादी हुई है।
0: अरे वाह, यानी आप भी सासू माँ बन चुकी हैं ना?
1: जी जी मैम, अभी 2-3 महीने हुए।
0: अरे वाह, तो आप कैसी सासू माँ है, कड़क वाली की अच्छी वाली?
1: नहीं नहीं नहीं
0: नहीं नहीं, आप अच्छी वाली होंगी, आपकी आवाज से मुझे लग रहा है ऐसा कुछ। तो आप बताइए कि आपको क्या करना अच्छा लगता है दिन में, मतलब अपने लिए जो समय बचता है उसमें आप क्या करना पसंद करती हैं?
1: मैम हम लोगों को तो घूमना अच्छा लगता है, और शाम की टाइम हम रोज घूमने जाते हैं, मेरे साथ वाली फ्रेंड है बराबरी की।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है।
1: हम रोज मतलब खाना खाने के बाद हम निकल जाते हैं साथ में घूमने के लिए।
0: चलिए, इतनी अच्छी बात है ना, क्योंकि अपने दोस्त का जब साथ मिल जाता है ना, तो समझिए फिर तो आप थोड़ा वॉक भी हो जाती है इस बहाने आपकी, और आपकी बातें भी हो जाती हैं, तो आपका जो तनाव भी थोड़ा बहुत रहता है ना वो भी खत्म हो जाता है। तो बहुत बहुत ही अच्छा आप करती हैं जो ये वॉक करती हैं, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ वॉक करती हैं।
1: मैम अच्छा लगता है उनके साथ, और अब थोड़ा टाइम और मिल जाता है, घर पे बहू आ गई तो अब टेंशन फ्री है थोड़ा।
0: बिल्कुल, यानी कि आप किसी सास हैं और आप भी किसी की सास हैं।
1: बिल्कुल।
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मुझे राजा और रंग मूवी का सुनना है मैम। तो कितनी प्यारी है, तो कितनी भोली है।
0: अरे वाह, क्या प्यारी सी पसंद है आपकी, तो सुनवाते हैं आपको ये आपका पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: तो बताइए आपका नाम पहले और अपने शहर का नाम।
1: मैं बोल रही हूँ भगवती सोलंकी, दिल्ली से।
0: दिल्ली से बोल रही हैं आप। तो बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ।
0: अच्छा, यानी आप जो चार दीवारें हैं ना उनको घर बनाती हैं।
1: हाँ जी।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आपकी
1: तो संभालना जरूरी है ना घर में, तो सब मैंने सब बाहर ही जाएंगे तो घर को ही कौन संभालेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा ना आप चार दीवारों को घर बनाती हैं। तो आपके परिवार में कौन कौन है?
1: मेरे परिवार में है, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है, मेरे बेटे, दो बेटे हैं, बहू है, मेरी एक पोती है 6 साल की।
0: अरे वाह, यानी आप सास भी बन चुकी हैं और दादी भी बन चुकी।
1: हाँ जी, दादी भी बन चुकी हूँ
0: जी। तो बताइए आप अपना जो समय रहता है, कोई खाली समय रहता है जो, उसमें आप अपना समय बिताने के लिए क्या करती हैं?
1: तो सबसे पहले तो मेरा का शौक है म्यूजिक सुनना, तो मेरा रेडियो चालू हो जाता है, रामायण से चालू होता, भूले बिस्मी संगीत सविता, भूले मिश्र गीत, ये सारा प्रोग्राम चलता रहता, सुन किचन में चलता रहता, मैं काम करती रहती हूँ।
0: बहुत बहुत अच्छी बात है ये। संगीत में अगर रुचि है ना आपकी, तो समझिए आपका जीवन बहुत बहुत बहुत शांत है, बहुत अच्छा है।
1: हाँ, और फिर गुनगुनाती भी हूँ और गाने भी सुनती हूँ। फिर मुझे घर का काम करना, साफ सफाई करना मुझे बहुत पसंद है,
0: ये अच्छी चीज है।
1: हाँ, और दूसरा सबसे बड़ा है मुझे पौधे लगाना घर में। मैंने अपने आगे पीछे बालकनी में मैंने पेड़ ही करीब कम से कम 30-35 पेड़ लगाए हुए हैं गमलों में सब में।
0: अरे वाह।
1: सबसे ज्यादा तो मैंने गुड़हल लगाया हुआ, मेरे घर में तुलसी इतनी है कि मेरे से भी बड़ी तुलसी का पेड़ है।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। देखिए जिस तरीके से आप, पर्यावरण दिवस भी है और आपने इतनी अच्छी बात कही है कि आप पौधे लगा रही हैं, यानी कि सोचिए आप कितना अच्छा कर रही हैं।
1: मेरा पीआर जो है जबलपुर का है
0: जी,
1: तो हाँ जबलपुर में है, तो जबलपुर में भी हम बचपन से इतने पौधे लगा के आए कि अब हम बाद में जाते रहे तो वहाँ पर हमें शरीफा इतना पेड़, अमरूद, शरीफा, सहजन की फलियाँ, इतने पौधे में पेड़ मतलब फल लगते रहे कि मुझे देख के खुशी होती थी। मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज अपने आसपास हरियाली बना के रखो, जो समय हमारी जीवन देते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: गाना सुनूंगी गागो साइड खान का, नाचो तो बंसी बजा। हाँ
0: जी बिल्कुल, सुनवाती हैं आपके पसंद का ये गीत।

सखियों, अब कार्यक्रम हेलो सहेली में हो चला है समय एक अंतराल का, तो मिलते हैं इस अंतराल के बाद।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का प्यार भरा स्वागत करती हूँ मैं यानी कि आरती श्रीवास्तव। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: मैं पूर्णिमा बोल रही हूँ
0: जी,
1: पूर्णिमा सरगम, अभी तो तेलंगाना में रह रही हूँ।
0: अच्छा अच्छा,
1: गाने सुनती रहती हूँ।
0: आप बताइए क्या करती हैं आप?
1: कुछ भी नहीं, अभी तो सिर्फ मेरी बच्ची को संभालती हूँ।
0: कितना छोटा है आपका बच्चा?
1: अभी 2 साल की हुई है।
0: ओहो, इतनी छोटी सी है। तब तो आपको बहुत भाग दौड़ करते रहना पड़ता होगा उसके पीछे।
1: वो ज्यादा नहीं कर पाती पर मैं फिर भी उसके पीछे भागती हूँ।
0: जी बिल्कुल, छोटे बच्चों का तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है जी।
1: हाँ, समझदार है, ज्यादा परेशान नहीं करती,
0: यानी अच्छी बच्ची है।
1: हाँ।
0: जी तो बताइए आपको क्या करना अच्छा लगता है अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम बचता है?
1: मुझे डांस करना अच्छा लगता है, म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है।
0: तो आप अपना डांस करती हैं या ऐसी अपनी मतलब भी आप छोड़ रखा है इस समय?
1: अभी ये छोटी है इसलिए छोड़ रखा है, बाकी मैं करती ही हूँ। मैं क्लासिकल डांस टीचर भी रह चुकी हूँ।
0: अरे वाह, बहुत बहुत अच्छी बात है। तो आपने सीखा हुआ यानी कि क्लासिकल?
1: जी, मैंने कथक सीखा हुआ है, भरतनाट्यम भी सीखा हुआ है।
0: अरे अरे वाह, बहुत बहुत बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो मुझे ये जो नृत्य की जो कला होती है ना, ये जो आप सीख लेते हैं तो हमको इतना एकदम तरोताजा रखती, कोई परेशानी हमें एकदम आसपास भी नहीं आती, क्योंकि हम इतने ज्यादा उसमें खो जाते हैं ना, सारी परेशानियों का हल हमें अपने संगीत में मिल जाता है। तो
1: बीमारी सही कर दे, डांस बिल्कुल म्यूजिक तो ऐसी चीज है।
0: जी, एकदम फिट भी रहते हैं उसकी वजह से।
1: हाँ, फिट भी रहते हैं बहुत।
0: जी तो आप बताइए आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आप?
1: मैं कभी कभी मूवी का लता मंगेशकर की आवाज में मेरे घर आई एक नन्ही परी।
0: अच्छा, आपके घर एक नन्ही परी आई है। तो उसको सुनाने के लिए हम आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत।
1: जी।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: जी मैं रत्ना बोल रही हूँ। हाँ, रत्ना सिन्हा।
0: अच्छा रत्ना जी बोल रही हैं, कहाँ से?
1: बाराबंकी से।
0: तो आप थोड़ा बताएंगे अपने बारे में, आप क्या करती हैं?
1: जी मैं ऐसे तो हाउसवाइफ हूँ, मगर मेरा म्यूजिक के प्रति इंटरेस्ट काफी रहा है
0: जी। और वैसे तो हाउसवाइफ क्यों है यार, बड़ी गर्व से कही हाउसवाइफ है क्योंकि हाउसवाइफ का काम बहुत ज्यादा होता है, 24 घंटे का काम होता है
1: बिल्कुल बिना रुके बिना थके
0: बिल्कुल, और काम करती रहती है और सब पूरे फैमिली, पूरा समझ लीजिए सारी फैमिली उनके पर निर्भर होती है,
1: और ऐसा कि पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करते हुए
0: बिल्कुल
1: जो है।
0: आपके परिवार में कौन कौन है?
1: मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड, दो बेटे हैं, बहू है, पोती है।
0: बहुत बढ़िया तब तो आप पोती के साथ खेलते खेलते आपका समय निकल जाता होगा अच्छे से
1: जी जी जी
0: जी तो बताइए जी, तो आप बताइए आपको पेड़ पौधों का शौक है?
1: जी बहुत बहुत पेड़ पौधों का शौक है, मतलब सुबह शाम पेड़ पौधों को निहारना, देखना, पानी वानी डालते हैं।
0: अच्छा अच्छा, आपने लगा रखे हैं?
1: हाँ लगा रखे हैं, और चिड़ियों के लिए दाना है, पानी है, ये सब भी।
0: अरे वाह, बहुत बहुत अच्छी बात है, गर्मियों के दिन में सोचिए वो चिड़िया पक्षी उड़ रहे हैं, उनको कहाँ से दाना पानी के लिए आपने उनका इंतजाम किया, बहुत अच्छी
1: जी,
0: बात
1: जी,
0: है ये।
1: और चिड़ियों की चहचहाट सुबह सुबह बहुत अच्छी
0: वही तो हम जैसे अगर उनको पानी देते हैं या दाना कुछ उनको खाने के लिए रखते हैं ना, तो वो भी तो बदले में हमें अपनी चहचहाट देती हैं, अपनी खुशियां देती हैं ना
1: तो बिल्कुल आती हैं, सब खेलती हैं,
0: जब वो चहचहाती हैं तो हमारे आंगन में एकदम खुशियां बिखर जाती हैं, है ना?
1: जी जी जी।
0: तो अब बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: अभिमान फिल्म।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली,
0: जी। तो आप बताइए पहले तो अपना नाम और अपने शहर का नाम।
1: मेरा नाम शीला निको से है।
0: तो आप कहाँ से
1: मैं
0: हैं?
1: चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट वरोरा महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ।

0: अच्छा, चंद्रपुर से बात कर रही हैं आप, तो बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैं हाउस वाइफ हूँ मैडम।
0: अच्छा,
1: घर में रहती हूँ और दृष्टिहीन हूँ मैं।
0: तो आप बताइए कि आपको क्या करना अच्छा लगता है, जो आपको बहुत
1: गाना सुनना अच्छा लगता है।
0: गाना सुनना अच्छा लगता है आपको, और गाना गाना अच्छा लगता है?
1: हाँ, गाना गाना भी अच्छा लगता है, गाना सुनना भी अच्छा लगता है।
0: तो बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आज?
1: मुझे जाकवर सिंह ने का वो गाना सुनना है, तुझको ना देखूं तो दिल घबराता है।
0: तुझको ना देखूं तो दिल घबराता है, तो आपको सुनवाते हैं जानवर फिल्म का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, तो बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: मैं ओडिशा गरम गंजाम जिला से बोल रही हूँ
0: जी। आप अपना नाम बताइए।
1: ममता दास मेरा नाम।
0: अच्छा, तो आप क्या करती हैं ममता जी?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ।
0: अच्छा, तो और आपके परिवार में कौन कौन है?
1: घर में मैं और मेरा हस्बैंड और मेरी दो बेटियां हैं।
0: अरे वाह, दो बेटी हैं आपकी, तो बड़ी है कि छोटी है?
1: हाँ, बड़ी हो गई है, अभी पढ़ाई कर रहे हैं नर्सिंग की।
0: अरे वाह,
1: बीएससी नर्सिंग की।
0: बहुत अच्छी बात है, यानी सेवा वाली वो नौकरी कर रही है, वो पढ़ाई कर रही है जिससे कि वो सबकी सेवा कर सके, है ना? जी, तो बताइए आपको क्या करना अच्छा लगता है जब आपका खाली समय होता है? तो
1: मुझे सिलाई आती है, तो मैं कभी खाली नहीं रहती, काम खत्म, घर की काम खत्म होने के बाद सिलाई कर लेती हूं।
0: बहुत अच्छी बात है ये, आप अपना ये अपना जो मनपसंद काम है वो आप करती हैं, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ना हमें, हम सभी को कोई ना कोई शौक होता है, कोई ना कोई हॉबी होती है, लेकिन क्या है ना, हम उसको पूरा नहीं कर पाते क्योंकि हम सोचते हैं अरे घर के काम है, ये सब कर लें फिर समय कहाँ मिलता है, लेकिन आपने उस चीज को अच्छे से किया है। तो आप क्या क्या चीजें सिल लेती हैं?
1: ऐसी हो रही है कि आज सखी सहेली पर मेरी फोन लगी। तो जून 5 में मेरी छोटी बेटी की बर्थडे है, जो जून 25 में मेरी बड़ी बेटी की बर्थडे है।
0: अरे वाह, जून में ही है दोनों बेटियों का बर्थडे।
1: हाँ हाँ, और मेरी बहन की बेटी के जून 4 में है।
0: अच्छा,
1: तो हैप्पी बर्थडे के गीत सुनाई देंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हमारी तरफ से भी उनको बहुत बहुत बर्थडे की, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं, वो खूब आगे बढ़े और आपका नाम रोशन करें। तो आपने बताया कि आप सिलाई कर लेती हैं, तो आप क्या क्या सिलती हैं?
1: सलवार ब्लाउज सब सिलाई कर देती हूँ।
0: अच्छा, सारी चीजें आप सिल लेती हैं। तो आपको बाहर के सिले हुए कपड़े खरीदने अच्छे लगते हैं, बाहर से शॉपिंग करती हैं, या अपने घर में आपको बनाना अच्छा लगता है?
1: मुझे बनाना बहुत अच्छा लगता है।
0: तो ये तो बहुत अच्छी बात है, तो बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: जो सुजाता फिल्म का गीत है ना।
0: सुजाता का कौन सा?
1: 2000 साल की बात।
0: अच्छा ठीक है, तो चलिए सुनवाती हैं आपको, पसंद करिए ये गीत।

0: आज के हेलो सहेली कार्यक्रम का समय जैसे पंख लगाकर तेजी से निकल गया। आपकी इतनी प्यारी प्यारी बातों और सुरीले गीतों की पसंद ने तो हमें बांध ही लिया और पता भी नहीं चला कि कार्यक्रम अपनी समाप्ति के मोड़ पर आ गया। तो आज की हमारी मुलाकात बस इतनी। चलते चलते आपको कुछ जरूरी जानकारी दे देते हैं। आपकी कॉल्स की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार सुबह 11 बजे से 12 बजे तक की जाती है और आप हेलो सहेली कार्यक्रम में इन नंबर्स पर कॉल कर सकती हैं, जो हैं 4002-4662 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। नंबर फिर से एक बार 4002-4662 और एसटीडी कोड है 022। अब आप दूसरा नंबर भी नोट कर लीजिए, जो है 2867-0288 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। फोन नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए, 2867-0288 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। तो इन नंबर्स पर कॉल लगाने के लिए कीजिए बस अगले मंगलवार तक का इंतजार। और हाँ, एक बात और याद दिला दें, हेलो सहेली कार्यक्रम हर शुक्रवार को 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है, तो आपसे आग्रह है कि सुनना भूलिएगा नहीं। और हमारी जिन भी सखियों की कॉल आज नहीं लग पाई वो बिल्कुल भी निराश ना हो, आप अगले मंगलवार को एक बार फिर से प्रयास कीजिएगा। और ध्यान रहे, लगातार किए जाने वाले प्रयास कभी ना कभी तो कामयाब होते ही हैं। और जिन सखियों का प्रयास आज सफल हो गया था उनसे भी हमारा प्यार भरा आग्रह है कि आप अगले 2 महीने तक कॉल नहीं लगाइए और अपनी सखियों को भी अवसर दीजिए अपनी बात कहने का। तो आपको बता दें कि आज का हेलो सहेली का सफर तय किया आपने अपनी सखी आरती श्रीवास्तव के साथ। इस सफर में हमें सहयोग मिला रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक का और संपादन में हमारी सहयोगी बनी नम्रता टिकोड़े। और साथ ही विविध भारती की ओर से हेलो सहेली की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक। तो अब आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए लक्ष्मी श्रीवास्तव की लिखी कहानी नजरिया, वाचन स्वर नेहा शर्मा का। आप आ गए? मुझे तो पता ही नहीं चला, भावना ने रसोई घर से निकलते हुए संदीप से कहा। अभी आया हूं बस, मां ने दरवाजा खोला। पता है तुम्हें, घंटी बजाने ही वाला था कि मां ने दरवाजा खोल दिया, संदीप ने कहा। हाँ, खाना खिला दिया उन्हें, कह रही थी कि आप आओगे तो साथ में बैठकर खाएंगे, पर मैंने आपका ही नाम लेकर कह दिया कि उन्होंने कहा है कि माँ को जल्दी खाना खिला दिया करो, माँ के लिए लेट खाना खाना ठीक नहीं। मैंने खाना खाकर घूमने का और कह दिया, इसीलिए गई हैं शायद थोड़ा नाराज होकर। तुमने अच्छा किया भावना, ऐसी नाराजगी सर आंखों पर, शुगर में जल्दी खाना घूमना फिरना जरूरी है और माँ इस मामले में बेहद लापरवाह है। तुमसे नाराज होती हैं तो मैं ही कह दिया करूंगा। नाराजगी में क्या कहकर गई हैं पता है? कह रही थी जो हुकुम, अब तो जैसा आप कहेंगी वैसा ही करना पड़ेगा, भावना ने हंसते हुए कहा और फिर नाटकीय अंदाज में कहने लगी, सोचो जरा क्या क्या सुनना पड़ता है हमें। खैर कैसा रहा आज का दिन? भावना ने संदीप को पानी देते हुए पूछा। रोज की तरह ही था, बहरहाल मेरा एक सरप्राइज फेल हो गया। सोचा था इस बार तुम्हारा बर्थडे धूमधाम से मनाएंगे, शादी को 2 साल हो गए पर तुम्हें कोई सरप्राइज ही नहीं दे पाया। एक पेमेंट मिलने की उम्मीद थी पर वो अब अगले महीने के लिए टल गई, और अगले ही हफ्ते तो तुम्हारा बर्थडे है। पता नहीं क्यों जो सोचता हूँ हो ही नहीं पाता, सैलरी में तो घर का खर्च ही मुश्किल से निकल पाता है और तुम्हें ज्यादा खुशी नहीं दे पा रहा, क्या करूं? संदीप ने गहरी सांस ली। अरे ऐसा क्यों कहते हो आप? आप इतना सोचते हो वही काफी है, मुझे तो याद भी नहीं था कि मेरा जन्मदिन आ रहा है। आपको तो याद भी था, कई सारे पतियों को तो अपनी पत्नी के जन्मदिन तक याद नहीं रहते। याद है वो दीपेश जी, अपनी पत्नी से ही पूछ बैठे तुम्हारा जन्मदिन कब पड़ता है, भावना हंसकर कहने लगी। बर्थडे फिर मन जाएगा, आपका साथ है तो सब बढ़िया है।

सब बढ़िया तो है भावना, लेकिन इस मन का क्या करें? तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारा अगला बर्थडे बेस्ट होगा। मम्मी ने बताया था तुम्हें चंदेरी साड़ी लेने की बहुत इच्छा है। देखता हूँ बजट में बिठाते हैं, बर्थडे में ना सही बाद में ही सही, समझो वही तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा रहा। क्या कहा? भावना ने आश्चर्य से कहा, मम्मी जी ने बताया कि मुझे चंदेरी साड़ी लेनी है। आपको पता है मैंने जिक्र किया नहीं और मम्मी ने पहले ही कह दिया कि दीदी के लिए चंदेरी साड़ी लेनी है। सबसे पहले मम्मी जी के लिए तो हर चीज पहले उनकी बेटी के लिए आएगी, फिर बहू के लिए। बहू दिन भर उनका ध्यान रखे पर उनका मन तो अपनी बेटी में ही लगा रहता है। और तो और आजकल तो उनकी एक नई सहेली बन गई है, पड़ोस में नई किरायेदार आई है ना मुक्ता, उससे आजकल मम्मी जी की खूब पट रही है। 2 दिन से लगातार आ रही है और जब आती है तो मम्मी जी अपने कमरे के गेट भी बंद कर लेती हैं। कल मैं चाय लेकर पहुंची तो जाने क्या बात कर रही थी, मुझे देखकर बिल्कुल चुप हो गई, जैसे मेरी बुराई कर रही हूं, और मैं पहुंच गई। इतने में दरवाजे की घंटी बजी। भावना अब छोड़ो ये बात, लगता है माँ आ गई, मैं दरवाजा खोलता हूँ तुम खाना लगाओ। लो मैं तो टहल कर आ भी गई और यहाँ खाना भी नहीं लगा मेज पर, और कोई हमसे कहता है कि खाना जल्दी खाया करो आप, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। बेटा मैं बूढ़ी हूँ तो क्या हुआ, अच्छे स्वास्थ्य की जरूरत तो तुम दोनों को भी होनी चाहिए, माँ ने थोड़ा डांटते हुए कहा।

हाँ माँ, आप सही कह रही हो, आगे से ध्यान रखेंगे, संदीप ने बात को संभालते हुए कहा और भावना से चुप रहने का इशारा किया। भावना को मम्मी जी की ये बातें ताने जैसी चुभ गई और उसके मन का रेडियो ये गीत गाने लगा।

भावना और संदीप खाना खाने लगे। माँ अपने कमरे में सोने चली गई थी। भावना का मूड खराब हो चुका था। संदीप को पूरा एहसास था कि ज्वालामुखी फटने ही वाला है। वो तैयार था। देखा आपने क्या गलत कहा था मैंने? उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए ही तो कहा था ना। फिर भी कितना सुना दिया मुझे। इतना ध्यान रखती हूँ फिर भी कोई कदर नहीं मेरी। अरे वो भी तो हमारे स्वास्थ्य के लिए कह रही थी, और तुमसे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो तो मुझे कह रही थी भावना, संदीप ने बचाव में कहा। हाँ हाँ मैं सब समझती हूँ, वो अक्सर ऐसा ही करती हैं। कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, मेरी कमियां ही बताती रहती हैं, और दीदी की हर जगह तारीफ। मुझे तो लगता है मुक्ता से भी मेरी बुराई ही करती होंगी। भावना ऐसा क्यों सोचती हो? नजरिया बदलो अपना। नजरिया बदलने से कई बार पूरा दृष्टिकोण ही बदल जाता है। तुम्हें क्यों लगता है कि माँ तुम्हारी बुराई ही करती हैं? तुम माँ को लेकर अपने पूर्वाग्रहों से बाहर तो निकलो, तुम्हें बेहतर लगेगा। घर में थोड़ी बहुत बातें तो होती ही रहती हैं, अब इसमें इतना बुरा मानने वाली बात क्या है? माँ भी तो तुम्हारा ध्यान रखती हैं, बस उनके तरीके थोड़ा अलग हैं। अब सोचो तुम्हारी मम्मी भी तो तुमसे कितना प्यार करती हैं। इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि वो अपनी बहुओं से प्यार नहीं करती। तुम परीक्षा की तैयारी कर सको इसलिए तो माँ तुम्हारा काम में हाथ भी बटा देती हैं, और इस पर थोड़ा बहुत डांट भी देती हैं तो टाल दिया करो, संदीप ने समझाते हुए कहा। मुझे पता था आप यही कहोगे, हमेशा की तरह। आजकल तो मम्मी जी अपनी सहेली के साथ व्यस्त रहती हैं, तो पूरा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। पढ़ाई कैसे हो? तो पढ़ाई होगी भी कैसे, पूरा ध्यान तो तुम्हारा माँ पर ही लगा रहता है। हाँ मुझे जो लगा कह दिया, भावना गुस्से में बोली। अच्छा अच्छा तुम नाराज मत हो मेरी प्रिये, तुम गलत सोचती हो। सही सोच रखो, जब तुम्हारी मम्मी घर पर कहती हैं कि पहले मेरी बेटी के लिए ये चीज आएगी, तब तो तुम खुश होती हो, और माँ वो बात कहे तो बुरी लगती है। मेरी मम्मी की बात तो आप ही ना करें, वो ऐसी नहीं है। वो तो मेरी भाभी का बहुत ध्यान रखती हैं, पलकों पर बिठाती हैं उन्हें। ऐसा तुम्हें लगता है, थोड़ी बहुत बातें तो उनकी भी होती ही होंगी। छोड़िए इस बात को, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती। ये तो मन की बात है, प्यार तो दिल तक पहुंच ही जाता है। अगर उनके मन में मेरे लिए स्नेह होगा तो पहुंचेगा। भावना आज तुम्हें गुस्सा आ रहा है, लेकिन एक दिन जरूर तुम्हें एहसास होगा कि मैं सही कह रहा था। बस समय रहते तुम्हें एहसास हो जाए।

अगले दिन भावना ने अपने मूड को ठीक किया। नया दिन, नई शुरुआत। मम्मी जी को चाय नाश्ता दिया। संदीप नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल चुका था। सब्जी अक्सर मम्मी जी ही बनाया करती थी, रसोई में भावना का पूरा साथ देती, लेकिन आज सुबह से ही उन्होंने मना कर दिया था। भावना, जो मन हो वो सब्जी बना लेना, मैं नहीं बना रही। और नाश्ता करके अपने कमरे में चली गई। और तो और, आज तो पूजा भी उन्होंने जल्दी जल्दी कर ली थी। थोड़ी ही देर में दरवाजे पर दस्तक सुनाई पड़ी। मम्मी जी अपने कमरे से तेजी से आई, जैसे वो इस आने वाले का इंतजार ही कर रही थी। दरवाजा खोला, भावना ने देखा मुक्ता। लो, आज तो ये सुबह से ही आ गई। दोनों अंदर कमरे में गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। भावना का सिर चकरा गया। ऐसी भी क्या बात, मम्मी जी का पूजा पाठ में भी मन नहीं लग रहा, इतनी गपशप की लालसा। हे राम, ये मम्मी जी को

पता नहीं क्या होता जा रहा है। उस दिन शाम की चाय पीकर ही मुक्ता अपने घर गई। देर शाम जब संदीप घर आया तो समझ गया कि आज भी भावना का मूड कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है। जैसे ही उन्हें एकांत मिला, उसने भावना से पूछ लिया, अब आज क्या हो गया? आज तो मुक्ता सुबह से ही घर आ गई थी, शायद मम्मी जी ने ही बुलाया था, और शाम की चाय पीकर ही घर गई। आज भी मम्मी जी ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया था। दोपहर के समय तो खाना खाने के बाद मैं और मम्मी जी रोज रेडियो पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम सुनते हैं। तुम्हें पता है, मम्मी जी का साथ देते देते मुझे भी रेडियो सुनने की आदत हो गई है। रेडियो सुनते सुनते मेरी पढ़ाई भी अच्छी हो जाती है। पर आज तो वो सखी सहेली सुनने भी नहीं आई। मैंने उन्हें बुलाया, फिर भी नहीं आई। कहा रात में सुन लूंगी या फिर कल सुनेंगे। तुम मुझे पहले बताओ, तुम्हें क्या बुरा लग रहा है, मुक्ता का आना या माँ का तुम्हारे साथ समय नहीं बिताना, या सखी सहेली उनके साथ नहीं सुन पाना? संदीप ने शरारत भरी मुस्कुराहट से पूछा। सब कुछ, मम्मी जी ने ऐसा अब तक कुछ नहीं किया। हम एक दूसरे पर कितना ही नाराज हों, पर हमें एक दूसरे की आदत हो गई है। तुम्हें कहीं मुक्ता से जलन तो नहीं हो रही है? संदीप ने चुटकी ली। मेरी जीवन संगिनी, ओ मेरी अर्धांगिनी, अपने दिल को बड़ा करो, संदीप ने नाटकीय अंदाज में कहा, और माँ से नहीं मम्मी जी से कहो, जाइए मम्मी जी, जी लीजिए अपनी जिंदगी। और फिर थोड़ा संजीदा होकर कहने लगा, वैसे माँ के प्रति तुम्हारा ये स्नेह देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपको क्या लगता है, मैं कोई उनके दुश्मन थोड़े ही हूँ? आखिर उन्होंने मुझे आपको जो दिया है। वाकई में? संदीप ने प्यार भरे अंदाज में कहा और दोनों खिलखिला पड़े।

अगले दिन रोज की ही तरह संदीप ऑफिस के लिए निकल गया। मम्मी जी कुछ शांत सी थीं, अपने रोजमर्रा के कामों में लगी हुई थी। भावना को उनकी शांति चुभ रही थी। वो कुछ ना कुछ कोई ना कोई बात निकलवाती, पर मम्मी जी हाँ हूँ सा छोटा सा जवाब देकर चुप हो जाती। फिर वही शांति। दोपहर के बाद मम्मी जी के फोन की घंटी बजी और वो फोन लेकर अंदर चली गई। जब बाहर आई तो भावना ने कौतूहल से पूछा, क्या दीदी का फोन था? पर मम्मी जी ने कोई जवाब ही नहीं दिया। भावना को बड़ा बुरा लगा, ये मेरे साथ ऐसा क्यों व्यवहार कर रही हैं? मैंने ऐसा क्या किया है? खैर अब मैं भी इन पर ध्यान नहीं दूंगी, अपना काम कर दिया, बाकी उन्हें जो करना है करें। मैं तो मन लगाकर पढ़ाई करूं जिससे मेरी सरकारी नौकरी लग जाए, फिर इन्हें मेरी कदर होगी। और भावना ने ये सोचकर अपने सारे काम निपटाकर पढ़ाई करने बैठ गई। अगले कुछ दिन घर का माहौल ऐसा ही रहा। दिन गुजरे और वो खास दिन आ गया। आज भावना का जन्मदिन है। माँ ने सुबह सुबह भावना के बेडरूम का गेट खटखटाया। भावना जाओ दरवाजा खोलो, लगता है माँ आई है तुम्हें विश करने। इतने सुबह कौन विश करता है, बर्थडे के दिन भी चैन से सो नहीं सकते, भावना ने खींचते हुए कहा। संदीप ने नींद में ही कहा, तुम्हें पता है ना माँ हमें यूं ही सुबह सुबह चाय पिलाकर विश करती हैं। देखना तुम्हारे लिए स्पेशल वाली चाय भी लाई होंगी, मैंने कहा तो था तुमसे माँ हम में फर्क नहीं करती। ठीक है मम्मी जी के श्रवण कुमार, खोलती हूँ दरवाजा, भावना ने उठकर दरवाजा खोला। अरे मम्मी जी आप इतनी सुबह, हैप्पी बर्थडे बेटा, हमेशा खुश रहो। मैंने सोचा रोज तुम चाय पिलाती हो तो आज तुम्हारे बर्थडे के दिन मैं चाय पिला दूं तुम्हें। ये लो गर्मा गर्म चाय, संजू के लिए नहीं बनाई, सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनाई है। भावना ने मुस्कुराकर चाय की प्याली अपने हाथ में लेकर टेबल पर रख दी और मम्मी जी ने भावना को प्यार से गले लगा लिया। फिर उन्हें भावना थोड़ी असहज लगी तो वो कहने लगी, अरे बेटा माफ करना, तुम्हें विश करने की उत्सुकता में मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मैंने तुम्हें बहुत जल्दी जगा दिया। ठीक है तुम आराम करो। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो उठ ही गई थी, आशीर्वाद दीजिए। और भावना ने ये कहकर उनके पैर छू लिए। मम्मी जी ने आशीर्वाद दिया।

माँ, मेरी स्पेशल वाली चाय कहाँ है? बस भावना को पिला दी। संदीप ने माँ को छेड़ते हुए कहा। वो तुम्हारे जन्मदिन पर मिलेगी, माँ ने हंसते हुए जवाब दिया। इतने में भावना चाय और नाश्ता लेकर आ गई। मम्मी जी, वाकई आपकी स्पेशल वाली चाय का कोई जवाब ही नहीं। और संदीप को देखकर बोली, लीजिए आप ये चाय पीजिए। पारिवारिक खुशनुमा वातावरण में सबने मिलकर चाय नाश्ता किया। भावना आज खुश थी। एक तो जन्मदिन की खुशी और उस पर मम्मी जी का प्यार भरा बर्ताव, जिसकी उसे हमेशा से चाह थी। मन ही मन सोच रही थी, बस आज दिन भर मम्मी जी ऐसी ही प्रेम वर्षा करती रहें और वो मुक्ता ना आए, बस मन गया मेरा जन्मदिन। इससे ज्यादा की मुझे उम्मीद भी नहीं है, यही बहुत है। संदीप को छुट्टी नहीं मिल पाई थी, सो वो ऑफिस के लिए चला गया। इधर भावना अपने कामों में लग गई, पर मम्मी जी का ध्यान दरवाजे की घंटी पर ही लगा था। और दोपहर ढलते दरवाजे की घंटी बजी। भावना कुछ काम कर रही थी, सो उसने मम्मी जी से कहा, मम्मी जी कोई है दरवाजे पर, क्या आप देख लेंगी? लेकिन मम्मी जी जानबूझकर अपने कमरे में चली गई, जैसे कुछ सुना ही ना हो। अब भावना को गुस्सा आना लाजमी था। मन ही मन बुदबुदाई, काम कर रही हूँ पर नहीं कि दरवाजा भी मैं ही खोलूं, बाकी सब तो बहुत बिजी हैं। उसने दरवाजा खोला, उसके चेहरे का गुस्सा मुस्कुराहट में तब्दील हो चुका था। एक फूलों का गुलदस्ता और एक पार्सल, दोनों साथ में। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मम्मी जी दूर से उसे ताक रही थी। भावना बेहद खुश थी। खुशी खुशी मम्मी जी को बताया, मम्मी जी देखिए, इन्होंने तो इतना बढ़िया सरप्राइज दिया है, सुंदर फूलों का गुलदस्ता और ये गिफ्ट पार्सल। शायद इसीलिए आज ऑफिस चले गए हैं कि ये सरप्राइज दे सकें। बढ़िया है बेटा, गिफ्ट तो देखो क्या है। हाँ मम्मी जी। और उसने गिफ्ट को खोला और वो लगभग उछल पड़ी। चंदेरी की साड़ी, मम्मी जी याद है आपको, हम उस दिन देख रहे थे तो यही साड़ी मैंने ऑनलाइन पसंद की थी। इन्हें कैसे पता चला? उफ, मुझे ये साड़ी इतनी पसंद आई थी और उन्होंने पता नहीं कैसे पर मुझे मेरे बर्थडे पर ही ये गिफ्ट कर दी। मैं तो आज बहुत खुश हूँ मम्मी जी। कितनी बातें बना रहे थे कि इस महीने नहीं हो पाएगा, बजट नहीं है, और देखिए। माँ भी उसकी खुशी देखकर खुश हो रही थी। भावना साड़ी लपेटकर नाच ही रही थी और उसके मन के रेडियो पर एक बार फिर से गीत बज रहा था। वो गीत था ये।

भावना बेसब्री से संदीप के आने का इंतजार कर रही थी। उसने वही चंदेरी की साड़ी पहन भी ली थी, उसे मैचिंग ब्लाउज भी मिल ही गया था। संदीप को आने में थोड़ी देर ही हो रही थी और घंटी बजी। भावना दौड़ी दरवाजा खोलने के लिए। संदीप अपने ही बचाव में कहने लगा, अरे भावना, वो तुम्हारे लिए केक लेने लगा तो थोड़ी देर हो गई। भावना मुस्कुराकर देख रही थी। भावना, तुम्हारी साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है, कब खरीदी थी? अब आप ज्यादा मत बनो, आपने ही तो आज कमाल कर दिया। मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन बर्थडे है, फूलों का गुलदस्ता, चंदेरी की मेरी पसंदीदा साड़ी, और आप कहते थे कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा। संदीप हैरान था, कुछ कहने ही वाला था कि दरवाजे पर घंटी बजी। भावना ने दरवाजा खोला, सामने मुक्ता थी। मुक्ता

को देखकर यूं तो उसे खुशी नहीं होती थी, पर आज तो वो यूं ही बहुत खुश थी। हैप्पी बर्थडे भाभी, कैसी लगी साड़ी? आंटी ने खूब मेहनत करवाई, इतनी शॉपिंग साइट्स देखी तब जाकर ये साड़ी मिली। आंटी को आपको यही गिफ्ट करनी थी। भाभी बहुत लकी हो आप, आंटी को आपकी पसंद ना इतनी पता है, मैं तो हैरान ही हो गई। वैसे साड़ी आपको पसंद तो आई ना? मम्मी जी की ओर देखकर मुक्ता कहने लगी, आंटी देखिए रंग तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा ऑर्डर किया था। भाभी वैसे गुलदस्ता कैसा लगा? वो मेरा आइडिया था, बस मैंने उसमें पीले फूल भी जोड़ने के लिए कहा था। खैर आंटी जी अब तो आप खुश है ना? भाभी आप जो एग्जाम दे रही हो उसमें अव्वल आओ, आंटी को तो आप पर इतना कॉन्फिडेंस है, वो कह रही थी आप अगले साल सरकारी अफसर बन जाओगी। कह रही थी मेरी भावना तो ऑनलाइन का काम चुटकियों में कर लेती है, पर उसके जन्मदिन पर सरप्राइज देना था इसलिए मुझसे हाथ मिलाना पड़ा। इतने में मुक्ता के फोन की घंटी बजने लगी और वो बाहर चली गई। मम्मी जी ने हंसते हुए कहा, कितना बोलती है ये लड़की, बस एक बार शुरू हो जाए। लेकिन अच्छी है, उसी से तो ऑर्डर करवाया, मुझे क्या आता है। भावना अब तुम मुझे सिखा देना, साड़ी पसंद आई? वही वाली है ना जो तुमने पसंद की थी? भावना अवाक होकर मम्मी जी को देख रही थी। मम्मी जी ये सरप्राइज आपका था, तो आपने बताया क्यों नहीं? और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो दौड़कर मम्मी जी से लिपट गई। उसे बीते दिनों की सारी बातें अब एक अलग नजरिए से दिख रही थी। क्या फर्क पड़ता है बेटा, संजू ने दिया या मैंने, बात तो तुम्हारे चेहरे की खुशी से है। तुम्हारी खुशी कम तो नहीं हो गई ना कि सरप्राइज मैंने दिया है? मम्मी जी ने हंसते हुए कहा। अरे नहीं माँ, मेरी खुशी तो कई गुना बढ़ गई। माँ आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, इसीलिए आपकी मुक्ता से सीक्रेट मीटिंग्स चल रही थी और ये मैं समझ ही नहीं पाई। फिर संदीप को देखकर कहने लगी, माँ ने मेरे लिए सब किया। और फिर कस कर मम्मी जी से लिपट गई। संदीप की भी आंखें भर आई। माँ ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और कहने लगी, बेटा तुम्हारी खुशी में ही तो मेरी खुशी है। माँ आज तक आपने मुझे तो सरप्राइज नहीं दिया, संदीप ने छेड़ते हुए कहा। फिर भावुक होकर कहने लगा, पर माँ ये साड़ी तो बहुत महंगी है, इतने पैसे? अरे तुम जो मुझे पैसे देते हो।

मैंने दिया है? मम्मी जी ने हंसते हुए कहा। अरे नहीं माँ, मेरी खुशी तो कई गुना बढ़ गई। माँ आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, इसीलिए आपकी मुक्ता से सीक्रेट मीटिंग्स चल रही थी और ये मैं समझ ही नहीं पाई। फिर संदीप को देखकर कहने लगी, माँ ने मेरे लिए सब किया। और फिर कसकर मम्मी जी से लिपट गई। संदीप की भी आंखें भर आईं। माँ ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और कहने लगी, बेटा तुम्हारी खुशी में ही तो मेरी खुशी है। माँ आज तक आपने मुझे तो सरप्राइज नहीं दिया, संदीप ने छेड़ते हुए कहा। फिर भावुक होकर कहने लगा, पर माँ ये साड़ी तो बहुत महंगी है, इतने पैसे? अरे तुम जो मुझे पैसे देते हो वो ही पड़े थे, मेरा अपना क्या खर्च है? एक प्रीति है, एक भावना है, और मैं, मुझे तो आप भूल ही जाओ, बस ये दोनों बेटियां ही हैं आपकी।

ये आकाशवाणी दरभंगा है, मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज़ पर। साथ ही हम उपलब्ध हैं मोबाइल सेट पर भी न्यूज़ ऑन एयर ऐप के माध्यम से। इस समय स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजे हैं। हमारी

दोस्तों नमस्कार, उपस्थित हो गए हैं आपके इस कार्यक्रम को लेकर जिसका नाम है तरुण कुसुम। बना रहेगा 5:40 तक हमारा और आपका साथ। जैसा कि आपको पता ही है कि आज 5 जून है, अर्थात आज के दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश भर में विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और आज इस कार्यक्रम में यानी तरुण कुसुम कार्यक्रम में हम भी आपसे बात करेंगे इसी विषय को लेकर। विषय आज का जो है हमारा हरित युवा हरित भारत वो है। तो आपको बता दें दोस्तों के हरित युवा हरित भारत केवल एक नारा नहीं बल्कि हमारे देश के उज्ज्वल भविष्य का संकल्प है। आज पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई और जल संकट जैसी समस्याएं पूरी दुनिया के सामने चुनौती बनकर खड़ी हैं। ऐसे समय में युवाओं की भूमिका यानी हमारी और आपकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। युवा किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं। यदि युवा पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक हों तो वे समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। वृक्षारोपण, जल संरक्षण, प्लास्टिक के उपयोग में कमी, स्वच्छता अभियान तथा ऊर्जा के बचत जैसे कार्यों में युवाओं की सक्रिय भागीदारी देश को हरित और स्वच्छ बनाने में सहायक होती है और हो भी सकती है। आज आवश्यकता है कि युवा केवल स्वयं पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार न बने बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करें। विद्यालयों, महाविद्यालयों और सामाजिक संगठनों के माध्यम से पर्यावरण जागरूकता अभियान चलाकर वे लोगों को प्रकृति संरक्षण का संदेश जरूर दे सकते हैं। एक पेड़ लगाना, पानी बचाना और स्वच्छ वातावरण बनाए रखना छोटे कार्य अवश्य हैं लेकिन इनके परिणाम बहुत बड़े होते हैं। जब देश का प्रत्येक युवा हरित सोच अपनाएगा तब भारत वास्तव में हरित, स्वच्छ और समृद्ध राष्ट्र बन सकेगा। तो दोस्तों आइए हम सभी ये संकल्प लें कि प्रकृति की रक्षा करेंगे और आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ तथा सुरक्षित पर्यावरण प्रदान करेंगे, तभी हरित युवा हरित भारत का सपना साकार हो सकेगा। तो ये थी दोस्तों हमारी आपसे बातचीत। बता दें आपको कि आज एक कार्यक्रम भी हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर आप तक पहुंचाएंगे। अब से थोड़ी देर बाद अर्थात 5:10 पर और उस कार्यक्रम के बाद तरुण कुसुम का ये कार्यक्रम जारी रहेगा। तो वो कार्यक्रम जो आज आपके लिए ख़ास तौर से हम रिले कर रहे हैं वो होगा प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। तो उससे पहले आपको बता दें कि ये जो आज का दिन है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमने पहले कहा है कि 5 जून अर्थात वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में आज का दिन मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ये है कि पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण और जल संरक्षण तथा प्रदूषण से बचाव। और अब दोस्तों समय हो चला है कि हम आप तक वो कार्यक्रम पहुंचाएं, प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ जो हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर आप तक पहुंचा रहे हैं। कुछ ही क्षणों में कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

दोस्तों, हम आपसे क्षमा चाहते हैं, एक गलती हुई हमसे। ये कार्यक्रम तो आप तक हम पहुंचाएंगे 5:10 पर, और अभी वो समय नहीं आया है। हम क्षमा चाहते हैं आपसे। आप सुने ये लोकगीत।

तो सुन रहे थे आप विभा सिन्हा को, और जैसा कि दोस्तों हमने बताया था कि 5:10 पर हम एक कार्यक्रम अनुप्रसारित करेंगे दिल्ली केंद्र से। कार्यक्रम का नाम है प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ, कुछ क्षणों में आप तक पहुंचा रहे हैं, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: कोई भी जानवर पानी पीता नहीं था क्योंकि उसकी हालात ही ऐसी थी और कोई भी आदमी उस वहां पर नहाता भी नहीं था। तो हमने सोचा कि आज से 10 साल पहले जब हमारी नदी इतनी साफ थी, जहां पर सब लोग नहाते थे, जानवर पानी पीते थे, आखिर आज के टाइम पे वो हाल क्यों नहीं। तो हम लोगों ने सोचा कि अगर ये हमारी नदी है तो इसे साफ करने का कर्तव्य भी हमारा है। तो हम लोगों ने 6 से 7 लोगों की टीम बनाई और अपनी नदी सफाई का अभियान शुरू किया। पहले दिन हमें नहीं लगा था कि हम लोग इस नदी को इतना आगे साफ कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने अपनी नदी का अभियान का सफाई जारी रखा और आज हमारी नदी कुछ ऐसी दिखने लगी है जहां पर जानवर आकर इसमें पानी भी पीते हैं और यहां पर लोग आकर नहाते भी हैं और हमारी बहुत प्रशंसाएं भी करते हैं।
1: आकाश जी, यह अभियान शुरू करने से पहले बहुत सारे लोगों ने कहा होगा कि इतने गंदी नदी है, आप कैसे इसको साफ करोगे, या आपका मनोबल भी एक बार कमजोर हुआ होगा कि मैं जो है कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। भाई, ऐसी प्रेरणा आपको आई कहाँ से और गांव के लोगों का क्या सहयोग और सपोर्ट रहा आपके साथ?
0: जब हम लोगों ने ये कार्य स्टार्ट किया था तो हमारे गांव के जो लोग थे उन्होंने कहा ये साफ तुम लोग नहीं कर पाएगे क्योंकि ये नदी बहुत गंदी है, इसको साफ करने के लिए सरकार को ही आगे आना पड़ेगा। लेकिन हमने कहा नहीं, हम लोग थोड़ा थोड़ा ही साफ करेंगे लेकिन हर एक दिन काम करेंगे। और हम लोगों ने नहीं सोचा था कि इतना हम लोग नदी अपना साफ कर लेंगे और लोगों का भी सपोर्ट नहीं रहता था क्योंकि गांव का कोई भी हमें सपोर्ट करने नहीं आता था, कोई भी नहीं कहने आता था कि हम भी तुम्हारे साथ काम करेंगे और तुम्हारी मदद करके नदी की सफाई को आगे जारी रखेंगे।
1: आप जब उस समय नदी की स्थिति या उसकी हालात देखे तो कैसा लगा?
0: पहले के टाइम पर नदी की स्थिति बहुत ही खराब थी, तो हम लोग आते थे बरगद के पेड़ के नीचे बैठते थे हम सभी लोग, तो हम सोचते थे कि अगर हमारी नदी इतनी गंदी, हम लोग अगर यहाँ बैठते हैं, यहाँ बदबू आ रही है, तो इसको साफ करके हम लोग यहाँ पर सुकून से बैठेंगे। तो हम लोगों ने इसकी सफाई का काम शुरू किया और इसको साफ किया।
1: करीब 2 महीने चले इस अभियान में, सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या मिली?
0: सबसे बड़ी चुनौती ये रही हमारी नदी में कि हम लोगों ने इसको साफ पूरा किया, 30 से 40 दिन तक हमने इसको लगातार साफ किया, लेकिन फिर 10 दिनों के अंदर इसके अंदर काइया जमा होने लगी और वो काइया धीरे धीरे सड़ने लगी और जिससे बहुत ज्यादा समस्या हमें होने लगी। फिर उसको साफ किया हम लोगों ने और उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे थे कि आकर वो पूजा की सामग्रियां वापस उसमें डाल रहे थे। उसके बाद इसके अंदर से बहुत सारी कांच की बोतल्स और वो भी टूटे फूटे हालात में मिले। बहुत सारे हमारे टीम मेंबर्स का हाथ कट गया, पैर कट गया और यही सब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे कि लोग आते हैं, कचरा फेंक जाते हैं, उसके बाद सहयोग भी नहीं करते, उसको साफ भी नहीं करते।
1: इस अभियान में गाँव के लोग और भी लोगों का क्या सहयोग रहा?
0: गाँव के लोग आते थे, हमें कहते थे कि हाँ तुम अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन अभी तक कोई भी गाँव वाला हमारे साथ नदी में नहीं है। अब आप सोच सकते हैं, कहने की बात अलग होती है, करने की बात अलग होती है। अगर आप हमारे साथ में चलकर नदी की सफाई करते हैं तब तो हम मानेंगे आप हमारे साथ जुड़े हुए, क्योंकि हम साथी लोग जब से शुरू किए हैं तब से अभी तक काम कर रहे हैं।
1: क्या इस अभियान में जनप्रतिनिधियों और प्रशासन का कोई सहयोग आपके साथ रहा?
0: हमने एक वीडियो बनाई थी योगी जी को लेकर कि हम लोग अपनी मनोरमा नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों ने इसको शेयर किया जिस वजह से हमारी एक दिन में वीडियोस 1 करोड़ लोगों ने देख लिया और योगी जी ने उसको वीडियो देखा भी। और योगी जी से पहले मोदी जी ने मन की बात में हमारी जिक्र किया कि मैं और मेरे साथ

0: की टीम ने मिलकर अपनी मनोरमा नदी की सफाई का पहल किया है।
1: सफाई अभियान के बाद अब तक मनोरमा नदी को आप देखते हैं तो क्या लगता है?
0: सफाई के बाद मनोरमा नदी हमारी इतनी साफ लगती है कि ये तो एक जैसे लगता है कि चमत्कार टाइप का, लेकिन ये चमत्कार नहीं, ये हमारी 67 से 68 दिनों की मेहनत है जो कि हमने लगातार की है।
1: आपको अभी क्या लगता है इसमें और कुछ करने की जरूरत है?
0: जी, अभी हमारा काम तो जारी रहेगा जब तक कि हम लोग अपनी मनोरमा नदी का पूरा गांव का हिस्सा जब तक साफ नहीं कर लेते तब तक तो हमारा काम जारी रहेगा, उसके आगे भी सोचेंगे, लेकिन हम चाहेंगे इसमें हमारी सरकार भी मदद करे क्योंकि हम कुछ युवाओं के बस का ये पूरा नदी साफ करना नहीं है।
1: जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात में आपका नाम लिए तो आपको कैसा महसूस हुआ?
0: हम लोग उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के छोटे से गांव लजघटा में रहते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने वैश्विक पटल पे हम लोगों की बात की, हमारे नाम का जिक्र किया, हमारी टीम का जिक्र किया, तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमारे सफाई का अभियान भी अब लोग देख रहे हैं।
1: इसमें प्रधानमंत्री जी द्वारा सराहना मिलने के बाद आप पर, आपकी टीम पर क्या प्रभाव पड़ा? ऐसा भी आपको लगता है कि ये जिम्मेदारियां और बढ़ गई?
0: हाँ, जिम्मेदारियां बढ़ती हुई दिख रही हैं क्योंकि अब जो हम लोग सफाई का काम करते थे 2 से 3 घंटा, अब हम लोगों ने ट्राई किया है कि उसको और बढ़ाने का, और हम लोग अब धीरे धीरे और नदी को और आगे बढ़ते हुए साफ कर रहे हैं, और लक्ष्य तो यही है कि जितना हो सके हम लोग नदी को साफ रखें जिससे कि जानवरों को और आम आदमी को परेशानी ना हो।
1: आज देश में पर्यावरण संरक्षण और पुनर्जीवन को लेकर काम करने वाले युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
0: हम यही कहना चाहेंगे जो भी नेचर ने हमें दिया है वैसे ही हमको उसको संतुलित रखना है, कि चाहे वो नदी हो, चाहे तालाब हो, चाहे नहर हो, चाहे झरना हो, आप लोग उसको ऐसे सुरक्षित रखिए कि उसमें गंदगी ना फैले ताकि आने वाली पीढ़ियों को हमारे तकलीफ ना हो।
1: आकाश जी, आपने जिस तरह से साबित किया कि बदलाव के लिए बड़े पद या बड़े संसाधनों की आवश्यकता नहीं बल्कि इरादों की जरूरत है, वह वास्तव में प्रेरणादायक है। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी यह कहानी अपने गांव, शहर, पर्यावरण के लिए कुछ सकारात्मक करने की प्रेरणा देगी।
0: अगर आपको कोई भी काम करना है तो उसके लिए आपको बड़ी मशीन या फिर कोई बड़े यंत्र की जरूरत नहीं है, आप अपने हाथों से पहले ट्राई कीजिए उसको साफ करने का। जब आप अपने हाथों से साफ करेंगे थोड़ा बहुत हिस्सा साफ होगा, फिर आपका मन करेगा कुछ और ट्राई किया जाए, धीरे धीरे आप लोग और आगे तक सफाई करें। जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे पास सिर्फ हाथ और पैर थे, हम लोगों ने उसी से स्टार्ट किया है, उसके बाद हम लोगों ने ट्राई किया उसमें नाव बनाने का, जिसमें हम लोग थोड़ा नाव बना भी गए थे लेकिन बीच में टूट गया। ऐसे ऐसे हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को ट्राई किया तब जाके हमारी नदी इतनी साफ हो पाई, क्योंकि आप लोग जब किसी चीज को स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे उसकी आगे की रास्ताएं खुलते जाएंगे।
1: क्या ये आपको उपकरण से जिसकी चर्चा मन की बात में मोदी जी ने किया, ये युवा जो है पर्यावरण या जल संरक्षण को लेकर के जागरूक है, इनके पास फावड़ा और जाल और ये ग्लव्स लेकर के ये नदी के सफाई अभियान को कर रहे हैं, क्या इस सफाई अभियान में आपको किसी ने कोई किसी तरह का सहयोग किया उसमें?
0: हम लोग जब वीडियो डालते गए उसके बाद लोगों ने इतना सपोर्ट किया, हमने उसमें अपना QR डाला जिसमें लोगों ने काफी सपोर्ट दिया, जिससे हम लोगों ने बूट्स मंगाए, ग्लव्स मंगाए और बहुत सारी चीजों को मंगाए, और बहुत सारे लोग हमारे एड्रेस पे कुछ सामान भी भेज देते हैं जिससे हमारी मदद हो जाती है, तो ऐसे ही हमारा काम चलता रहा।
1: आपने कहा कि जब से हमने इस अभियान को शुरू किया तब से हम लोगों ने YouTube, Instagram और Facebook के माध्यम से बहुत सारे लोगों को जोड़ा और इस अभियान को और सफल बनाने के लिए, नदी के सफाई के लिए हमने बहुत सारे लोगों को प्रेरित किया और हमसे बहुत सारे लोग जुड़े, कितने लोग इससे प्रेरित हुए?
0: जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे तो 0 फॉलोअर थे, लेकिन अभी के टाइम पे अगर बात की जाए तो हमारे इंस्टाग्राम पे 63,000 फॉलोअर हो चुके हैं, फेसबुक पे 50,000 से ज्यादा फॉलोअर हो चुके हैं और यूट्यूब पे 10,000 से ज्यादा फॉलोअर हो चुके हैं, तो ऐसे लोगों का सपोर्ट हमारे साथ रहा, लोगों ने हमें काफी ज्यादा सपोर्ट किया जिससे हम लोग आज इतना ज्यादा सफल हो पाए।
1: आप जिस तरह यह कार्य करके साबित किए बदलाव के लिए बड़े इरादों की जरूरत है, वह वास्तव में प्रेरणादायक है। आकाश जी, इसके बाद आपका क्या मिशन होगा?
0: अभी जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है तो हम लोग नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में बरसात का मौसम आने वाला है तो नदी का पानी काफी ज्यादा रहेगा जिसके अंदर हल्के उसको सफाई नहीं की जा सकेगी, तो हम लोग कोशिश करेंगे नदी के किनारे का जितना भी फील्ड है उसको हम लोग वृक्षारोपण करेंगे, जितना हो सके पीपल, बरगद, पाकड़, जामुन ये सब पेड़ बैठाएंगे।
1: इंस्टाग्राम और फेसबुक के तहत लोगों को जोड़ करके क्या लगता है आपको कि क्या इससे लोग आपसे जुड़ रहे हैं, क्या इससे आगे और भी आपको काम करने के लिए और भी लोगों का साथ मिलेगा?
0: निश्चित सी बात है सब लोगों का सपोर्ट मिलेगा, और जब तक ये नदी सफाई नहीं होगी पूरी तब तक ये काम चलता रहेगा, उसके बाद यहाँ पर वृक्षारोपण भी होगा, हमारी नदी का अभी घाट भी बनना है, हमारी नदी पर अभी जहाँ बरगद का पेड़ है वहाँ चबूतरा भी बनना है, और जब तक ये बन नहीं जाएगा तब तक ये कार्य चलता रहेगा। जब हमने इसको पहले दिन से स्टार्ट किया था तब से लेकर अभी तक हमें काफी ज्यादा लोग जाने लगे हैं, जैसे कि अभी विधायक जी ने कल परसों में आकर हमारे साथ मिलकर नदी की सफाई किया, जिसके लिए हम बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि अब ये अभियान जो है हमारा बहुत आगे तक जाने वाला है और साफ सफाई का काम तो चलता रहेगा।
1: समाज में में कुछ नया करने का आपने एक प्रयास किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे

0: रहे थे उत्तर प्रदेश में मनोरमा नदी की सफाई के लिए प्रयासरत आकाश गुप्ता के साथ विशेष बातचीत संवाद का संचालन कर रहे थे अमित कुमार सिंह। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। पता है podcast.airnews@gmail.com।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।

तो दोस्तों, हम रिले कर रहे थे यह कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। दिल्ली केंद्र से रिले यह कार्यक्रम आप तक पहुंचा और तरुण कुसुम कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आपने लोकगीत सुना और ये विशेष कार्यक्रम जो दिल्ली से आ रहा था ये आपने सुना, और अब आप तक हम पहुंचा रहे हैं कुछ गज़लें। गज़लें क्रमशः गुलाम अली, तलत अज़ीज़ और चंदन दास की गाई हुई हैं। पहली गज़ल लिखी हुई है मोहसिन नकवी की, जिसे आवाज़ दी है गुलाम अली ने।

तो दोस्तों आज आपने गज़लें सुनी क्रमशः ग़ुलाम अली, तलत अज़ीज़ और चंदन दास की आवाज़ों में। पहली गज़ल जो आपने सुनी वो थी मोहसिन नकवी की और दूसरी गज़ल कमर जलालाबादी की लिखी हुई थी। और इसके साथ ही आज का ये कार्यक्रम तरुण कुसुम समाप्त हुआ। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।

तरुण कुसुम युवा दोस्त सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। अब सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। इस समय का जो कार्यक्रम होता है फिल्म संगीत का, यानी 5:40 पर जो आप शाम के समय सुनते हैं, ये कार्यक्रम नए फिल्मी गानों पर आधारित होता है। तो आज फिर हम आपको पहुंचा रहे हैं आप तक कुछ नई फिल्मों के गाने।

0: आप सुन रहे थे फिल्मी गाने, फिल्में थीं घूमर, किसी का भाई किसी की जान, सत्य प्रेम की कथा और चिड़िया खाना। गायक कलाकार थीं दीपाक्षी, खलिता, अल्तमश फरीदी, सुखबीर, मीत ब्रोस, मोनाली ठाकुर और परोमा दास गुप्ता। इसके साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं, 6 बजने को हैं, कुछ एक क्षणों में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं राज्य के विकास को गति देंगी और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में सहायक होंगी। श्री मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर देश के सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल सूरत की प्रशंसा की।

0: स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया हरित और स्वच्छ भविष्य की ओर बढ़ रही है तथा भारत भी इसमें सक्रिय योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर आगे बढ़ रहा है।
0: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी, सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: इससे पहले सूरत में प्रधानमंत्री ने हजीरा में वर्तमान औद्योगिक तथा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की। प्रधानमंत्री आज दमण भी जाएंगे, जहां वे लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मोरा सीमा चौकी पर प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि ये परियोजना अंतिम चरण में है और अगले वर्ष सीमा सुरक्षा बल तथा सशस्त्र सीमा बल की तैनाती वाले 7 से 8 संवेदनशील क्षेत्रों में इसका प्रायोगिक चरण शुरू किया जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज जम्मू में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस नए केंद्र से जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के लिए मौसम पूर्वानुमान सेवाओं को मजबूती मिलेगी। श्री सिंह ने कहा कि सटीक और समय पर मौसम पूर्वानुमान से कृषि, विमानन, पर्यटन और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों को लाभ होगा। असम मंत्रिपरिषद का आज विस्तार किया गया। गुवाहाटी में आयोजित समारोह में 12 नए मंत्रियों ने शपथ ली। राज्यपाल रक्षम प्रसाद आचार्य ने इस अवसर पर नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस विस्तार के बाद असम मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। पद्म पुरस्कार 2027 के लिए नामांकन 31 जुलाई तक किए जा सकेंगे। गृह मंत्रालय ने बताया कि पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और अनुशंसाएं केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएंगी। भारत एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से आशीष तानीपूर्ति ने 4 गोल किए, शाहरुख अली ने 1 गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से पराजित हो गई। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

6:15 पर विद्यापति गीतों के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे रामकुमार मल्लिक का गाया विद्यापति गीत। शाम 6:30 गांव घर कार्यक्रम के तहत आज होगा नन्ना मुन्ना राही, बच्चे सुनेंगे चर्चा विश्व पर्यावरण दिवस पर। 7:00 खेती गृहस्थी कार्यक्रम में किसान भाइयों के लिए चर्चा होगी फसल में खरपतवार नियंत्रण, साथ ही मौसम संबंधित जानकारी दी जाएगी और समसामयिक कृषि कार्यों के बारे में भी जान सकेंगे किसान भाई। 8:00 कार्यक्रम सिंगरहार का समय होगा 8:15 पर। 9:30 शब्द शिल्प कार्यक्रम हम अपने पटना केंद्र से रिले करेंगे। शब्द शिल्प का ये अंक भागलपुर की प्रस्तुति होगी। और 10:00 फरमाइशी फिल्मी गानों का फोन इन कार्यक्रम लेकर आएंगे हेलो आकाशवाणी। फिल्म संगीत का कार्यक्रम 7:52 पर आप सुन सकेंगे। तो ये थे आज के शेष प्रमुख कार्यक्रम।

और अब एक कार्यक्रम संबंधी सूचना। सूचना इस प्रकार से है, श्रोताओं, प्रदूषण नियंत्रण, प्राकृतिक संसाधनों के संतुलित उपयोग तथा जैव विविधता की रक्षा करके ही हम पृथ्वी को अपने लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण और हमारी जिम्मेदारी, यही है आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के अगले अंक का विषय। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर मनुराज शर्मा। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़ने के लिए फोन नंबर होंगे 9430023535 अर्थात 9433002935 और दूसरा नंबर होगा 06272222481 अर्थात 06272222481। समय याद रखेंगे रविवार 7 जून 2026 दिन के 11 बजे। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी दरभंगा है। अगला कार्यक्रम होगा हफ्तावार जायजा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। समाअत फरमाइए, हफ्तावार जायजा, पेशकश सज्जाद अहमद खान की है। सामेईन आदाब, जायजे के अहम इशारे। दरभंगा में ज़िला राबता कमेटी का मुनक़िद हुआ इजलास, शिवहर कृषि विज्ञान केंद्र की जानिब से खेती बचाओ मुहिम प्रोग्राम, मधुबनी में आलमी यौम माहौलियात पर अंजाम पाएंगी मुख्तलिफ सरगर्मियाँ। और अब तफसील। दरभंगा के ज़िला कलेक्टर कौशल कुमार

की सदारत में जिला सतही राबता कमेटी का एक अहम इजलास कलेक्ट्रेट में वाक़े बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनाकिद हुआ। इजलास में मुख्तलिफ महकमों से मुतालिक ज़ेरे इल्तवा मामलात और अवामी फलाह बहबूद से वाबस्ता उमूर का तफसीली जायज़ा लिया गया। इजलास के दौरान इंसानी हुकूक़, मुहतसिब, अवामी खिदमात की फराहमी, अदालती मुकदमात, वज़ीर आला अवामी समात, मालियाती मामलात, इमदादी बिलों, इमदाद बाहमी, ज़रात, महसूलात और अवामी शिकायात समेत मुख्तलिफ शोबों की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया और मुतल्लिका अफसरान को ज़रूरी हिदायत दी गईं। ज़िला कलेक्टर ने तमाम सीनियर अफसरान को हिदायत दी कि वो कैंप के मुकाम का दौरा करके इंतज़ामात का जायज़ा लें और ज़रूरी सहूलियात की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। ज़िला मजिस्ट्रेट ने फरमाया कि अवामी इमदादी कैंप अवामी मसाइल के फौरी हल का एक मौसर ज़रिया है। इजलास में तमाम तरक्याती अफसरान को ये भी हिदायत दी गई कि कैंप में मुख्तलिफ महकमों के लिए मुख्तस 14 मालूमाती मराकज़ के अलावा एक अलहदा रहनुमाई मरकज़ भी कायम किया जाए ताकि आने वाले शहरियों को ज़रूरी मालूमात और मुआविनत फराहम की जा सके। शिवहर कृषि विज्ञान केंद्र ने पीर को शिवहर ब्लॉक के गांव सोगिया कटसरी में खेती बचाओ मुहिम प्रोग्राम का कामयाबी से इनेकाद किया। इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद काश्तकारों और देही खवातीन में मिट्टी की सेहत के तहफ़ कुदरती वसाइल के दुरुस्त इस्तेमाल और पायदार ज़री तरीक़ों के बारे में बेदारी पैदा करना था। डॉक्टर अनुराधा रंजन कुमारी सीनियर साइंसदान और कृषि विज्ञान केंद्र शिवहर की चेयरपर्सन ने फॉर्म बचाओ मुहिम की अहमियत को वाज़े किया और किसानों को मिट्टी की जांच, मुतवाजन खाद के इस्तेमाल, नामियाती और कुदरती काश्तकारी, पानी के तहफ़ फसलों की बाकियात के इंतज़ाम के बारे में कीमती मालूमात फराहम की। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि ज़री पैदावार की पायदारी और किसानों की आमदनी में इजाफे के लिए मिट्टी और आबी वसाइल का तहफ़ ज़रूरी है। उस मौके पर डॉक्टर सौरभ शंकर पटेल साइंसदान ज़री इंजीनियरिंग ने ज़री मेकनाइजेशन, जदीद ज़री आलात के इस्तेमाल और पानी की बचत की तकनीकों के बारे में मालूमात फराहम की। डॉक्टर एन एम इचलिंग ने जदीद ज़री तकनीकों, फसलों के इंतज़ाम और माहौलियाती तहफ़ के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसील से तबादला ख्याल किया। 5 जून यानी आज आलमी योम माहौलियात के मौके पर मुनाकिद होने वाले मुख्तलिफ प्रोग्रामों की कामयाब तैयारियों के सिलसिले में मधुबनी ज़िला प्रोजेक्ट ऑफिसर नमामि गंगे आनंद अंकित की सदारत में जायज़ा इजलास मुनाकिद हुआ। इजलास में माहौलियात के तहफ़ और अवामी बेदारी से मुतालिक मुख्तलिफ सरगर्मियों पर तफसीली गौर व खोज किया गया। इजलास में महकमे जंगलात के प्रेसर अफसर अनूप कुमार, नायब प्रेसर अफसर सिकंदर रविदास, ICDS के ज़िलाई राबताकार सुमित प्रतीक समेत दिगर मुतालिका अफसरान शरीक हुए, जबकि मधुबनी नगर निगम के सफाई अफसर अमिताभ गुंजन और महकमे जंगलात के एरिया अफसर संजय कुमार ने ऑनलाइन ज़रिए से इजलास में शिरकत की। इजलास में फैसला किया गया कि आलमी योम माहौलियात के मौके पर कोर्ट कम्प्लेक्स, DRDA अहाता कलेक्ट्रिएट समेत ज़िले के मुख्तलिफ तालीमी अदारों में शजरकारी मुहिम चलाई जाएगी। इसके साथ ही जायज़ा ख़त्म हुआ। आप समाअत फरमा रहे थे हफ्तावार जायज़ा, पेशकश सज्जाद अहमद ख़ान की थी। ये आकाशवाणी दरभंगा है। आकाशवाणी दरभंगा से लीजिए सुनिए विद्यापति गीतों का कार्यक्रम। आज के कलाकार हैं राम कुमार मल्लिक।

राम कुमार मल्लिक के स्वर में सुन रहे थे आप ये विद्यापति गीत। इस गीत के साथ ही विद्यापति गीतों का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। 6:25 होने को है, कुछ क्षणों में आप सुनेंगे मैथिली संवाद।

एफएम रेनबो पटना सँ प्रस्तुत अछि संवाद। संवादक संग हम छी रजनीकांत चौधरी। न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय आइ पटना उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीशक पदक शपथ लेलनि। पटना स्थित बिहार लोक भवन मे आयोजित समारोह मे राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन हुनका पद आ गोपनीयताक शपथ दियौलनि। न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय न्यायमूर्ति संगम कुमार साहूक स्थान लेलनि अछि, जे काल्हि सेवानिवृत्त भऽ गेलाह। एहि सँ

0: न्यायमूर्ति राय सिक्किम उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश छलीह। ओ पटना उच्च न्यायालयक दोसर महिला आ 48वां मुख्य न्यायाधीश बनल छथि। हमर संवाददाता जनौलनि अछि जे शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री श्रवण कुमार, दिलीप कुमार जायसवाल, अशोक चौधरी आ रामकृपाल यादव समेत राज्य मंत्रिमंडलक कतेको सदस्य उपस्थित छलाह। आई विश्व पर्यावरण दिवस अछि। एकर उद्देश्य पर्यावरण संरक्षणक प्रति लोक सभ के जागरूक करबाक आ सामूहिक भागीदारी के बढ़ावा देबाक अछि। विश्व पर्यावरण दिवस पर राज्य में कतेको कार्यक्रम आयोजित कयल गेल। राजधानी पटनाक जेपी गंगा पथ पर आयोजित मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पौधारोपण कऽ 1,00,000 गाछ लगेबाक काजक शुभारंभ कयलनि। एहि अवसर पर श्री चौधरी लोक सभ सँ बेसी पौधारोपण कऽ हरियाली बढ़ेबाक अपील कयलनि। जिला मुख्यालय सभसँ सेहो एहि अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कयल जयबाक संवाद प्राप्त भऽ रहल अछि। दरभंगा मे महारानी कल्याणी कॉलेज मे पर्यावरण दिवस पर आयोजित प्रतियोगिता मे 75 बेसी प्रतिभागी भाग लेलनि। समस्तीपुर, सहरसा, मधुबनी मे सेहो कार्यक्रमक आयोजन कऽ पर्यावरण संरक्षण पर जोर देल गेल। विभिन्न सरकारी गैर सरकारी संस्थान सभ मे पौधारोपण कयल गेल। संगहि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू कयल गेल एक पेड़ माँ के नाम अभियानक अंतर्गत कतेको लोक पौधारोपण कयलनि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकालक 12 वर्ष पूरा हेबा पर प्रदेश भाजपा दिस सँ आई सँ राज्यव्यापी विकास, विश्वास आ जनकल्याण पखवाड़ाक आयोजन कयल जा रहल अछि। पार्टीक प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी जनौलनि जे एहि क्रम मे सरकारक उपलब्धि आ जनकल्याणकारी योजना सभ के जन जन धरि पहुँचाओल जायत। जनता दल यूनाइटेड बिहार विधान परिषद चुनावक वास्ते उम्मीदवारक घोषणा कऽ देलक अछि। स्वास्थ्य मंत्री निशांत, भारती मेहता आ शिवरानी देवी प्रजापति के द्विवार्षिक चुनावक अंतर्गत उम्मीदवार बनाओल गेल अछि। ओतहि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमारक त्याग पत्रक बाद भेल रिक्त सीटक उपचुनाव लेल ललन प्रसाद उम्मीदवार बनाओल गेल छथि। मुजफ्फरपुरक एकटा निजी अस्पताल में आग लगला सँ 6 लोकक भेल मृत्युक मामला में पुलिस 3 गोटे के गिरफ्तार कयलक अछि। सिटी एसपी मोहिबुल्लाह अंसारी जनौलनि जे आईसीयू में उपस्थित चिकित्सक डॉक्टर पंकज कुमार, एडमिन मैनेजर राजकुमार आ मेंटेनेंस मैनेजर अजीत कुमारक गिरफ्तारी भेल अछि। ओ जनौलनि जे एहि मामला में अग्निशमन पदाधिकारीक आवेदन पर ब्रह्मपुरा थाना में शिकायत दर्ज कराओल गेल अछि। भागलपुरक विक्रमशिला सेतु पर 7 जून सँ गाड़ी सभक आवाजाही शुरू भऽ जायत। जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी जनौलनि जे एखन मात्र एक लेन पर बेसी सँ बेसी 10 टन वला भार के वला गाड़ी के वन वे ट्रैफिकक अंतर्गत परिचालन करबाक अनुमति देल गेल अछि। समस्तीपुर जिलाक मुसरी घरारी थाना क्षेत्र अंतर्गत गंगापुर गाम लग एक अनियंत्रित ट्रकक चपेट में अयला सँ मोटरसाइकिल सवार 2 व्यक्तिक मृत्यु भऽ गेलनि। दोसर दिस खगड़िया जिलाक चौथम थाना क्षेत्र अंतर्गत NH107 पर एकटा तेज गति हाईवाक चपेट में अयला सँ मोटरसाइकिल सवार 2 युवकक मृत्यु भऽ गेलनि। संपूर्ण प्रदेश भीषण गर्मीक चपेट में अछि। कतेको ठाम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार कऽ गेल अछि। मौसम पूर्वानुमान में कहल गेल अछि जे अगला 2-3 दिन धरि तापमान में कोनो विशेष परिवर्तन हेबाक संभावना नहि अछि। ओतहि अगला 24 घंटा में प्रदेशक किछु भाग में कतौ कतौ आंशिक वर्षा भऽ सकैत अछि। एहि क्रम में उत्तर पश्चिम आ उत्तर मध्य भाग में 50-60 किलोमीटर प्रति घंटा गति सँ धुक्कर आ अन्हर अयबाक चेतावनी जारी कयल गेल अछि। एहि संग आकाशवाणी दरभंगा आ FM रेनबो पटना सँ प्रसारित संवादक ई अंक समाप्त भेल।
1: हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम गाम घर।

कार्यक्रम गाम घर अंतर्गत नन्हा मुन्हा राही सुननिहार समस्त श्रोतागण का आशुतोष कुमार झा दिस स्वागत आ नमस्कार। श्रोतागण आजुक दिन अपना सब आने छी नन्हा मुन्हा राही यानी कि नेना भुटुक्का के लेल किसलय कार्यक्रम और संगे संग गीतनाद सब और अपना सब तो करते छी गाम धर के दलान पर दुटप्पी से हो आई दिवस आई एकटा खास आई छी विश्व पर्यावरण दिवस। श्रोतागण अपना सब आजुक दिन एहन चर्चा कर जा रहा छी जे नहीं केवल अपना सब के वर्तमान बल्कि आब वाला पीढ़ी के भविष्य से सेहो जुड़ल अछि। प्रत्येक वर्ष आजुक दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाओल जाइत अछि। एकर उद्देश्य लोक सब के पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक केनाय और पृथ्वी के सुरक्षित और स्वच्छ बनाकर रखनाय अछि और एकरा लेल प्रेरित केनाय सेहो अछि। श्रोता बंधु पर्यावरण ओ आधार अछि जकर बिना जीवनक कल्पना नहीं कयल जा सकैत अछि। साफ सुथरा हवा, स्वच्छ जल, उपजाऊ जमीन, हरियर हरियर जंगल आ माल जाल से भरल अपना सबके जे विविधता वाला अस्तित्व अछि ओकरा लेल ई बहुत बेसी आवश्यक अछि। मुदा आजुक तेजी से बढ़ैत शहरीकरण, औद्योगिकीकरण और आनो आन कारण से जे अपना सब गाछ वृक्ष के कटाई में लागल छी और लगेनाय कम कऽ रहल छी ओ प्रदूषण के कारण पर्यावरण गंभीर संकट के सामना कऽ रहल अछि। जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, अनियमित वर्षा, भीषण गर्मी जे अखन अपना सब देख रहल छी, सूखा और बाढ़, एहन एहन प्राकृतिक आपदा सब अपना सबके लगातारे चेतावनी दऽ रहल अछि जे यदि अपना सब समय रहैत डेग नहि उठेलहुँ तऽ स्थिति और बेसी भयावह भऽ सकैत अछि। पिछला किछु वर्षसँ अपना सब देख रहल छी जे गर्मीक प्रकोप लगातारे बढ़ि रहल अछि। कैक क्षेत्रमे तऽ तापमान नवका रिकॉर्ड बना रहल अछि, पोखरि धार सुखा रहल अछि, भूजल स्तर सेहो नीचाँ जा रहल अछि। जे चापाकल अपना सबके एक पम्प अपना सब चलाबी तऽ पूरा लोटा भरि जाए, एखुनका समयमे देखियौ तऽ अपना सबके ओहो पानि जे अछि से धीरे धीरे नीचाँ घसकल जा रहल अछि। पीबयवला जलके संकट गहीर होइत जाइत अछि आ दोसर दिस देखू तऽ प्लास्टिकके प्रदूषण इहो एकटा पैघ चुनौती बनि गेल अछि। प्लास्टिक कचरा जे अछि ओ अपना सबके धार, पोखरि आ सङ्गे सङ्ग नालाके सेहो प्रदूषित कऽ दैत अछि, ओकरा रोक बना दैत अछि। ई सबसँ बेसी तऽ पोखरिके लेल दिक्कत करैत अछि जतय जलीय जीव सभक जीवन खतरामे पड़ि रहल अछि। श्रोता बंधु पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारी या संस्थाक जिम्मेदारी नहि बल्कि ई अपना सभक सामूहिक दायित्व अछि। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपन स्तर पर छोट छोट प्रयास करथि तऽ पैघ बदलाव संभव अछि। अपना सब बेसी से बेसी गाछ लगाबी और ओकर रख रखाव के संकल्प सेहो ली। ई नहि जे पर्यावरण दिवस अछि तऽ खूब गाछ लगेलहुँ बादमे ओकरा केओ पानिओ देनहार नहि, तऽ ओकर देखभाल करबाक संकल्प अवश्य ली। एकटा गाछ नहि केवल अपना सबके ऑक्सीजन दैत अछि बल्कि पर्यावरणके संतुलित बनाकर रखबामे सेहो महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करैत अछि। एकरा सङ्गे सङ्ग पानिक संरक्षण पर सेहो विशेष ध्यान देनाय आवश्यक अछि। जेनाकि अपना सब एखने चर्चा केलहुँ हँ जे इहो एकटा गंभीर संकट अछि, ताहि दुआरे वर्षा जल संचयनके बढ़ावा देनाय, पानिक बर्बादी रोकनाय, जल स्रोत जे अछि अपना सबके ओकरा साफ सुथरा रखनाय

समय के मांग अछि। ई नहि जे पोखरि के घाटे पर कपड़ा के धोइत रही, आन आन गंदा करैत रही आ फिर ओकर स्वच्छता पर पूरा ध्यान नहि दी, कियाकि एखने अपना सब चर्चा केलहुँ हँ जे जलीय जीव सब जे रहै छथि हुनको ध्यान अपने सबके राखऽ पड़ैए। संगे संग ऊर्जा संरक्षण सेहो पर्यावरण सुरक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा अछि। बिजली के अनावश्यक उपयोग कम कऽ कऽ संगे सौर ऊर्जा जेहन अक्षय ऊर्जा के स्रोत का अपनिया कऽ जे अखन अपना सबके प्रधानमंत्री जी सेहो कहि रहल छथि, और ईंधन जे अछि ओकर बचत कऽ कऽ अपना सब पर्यावरण पर पड़ वाला दबाव के कम कऽ सकै छी। आजुक समय में आवश्यकता एहि बातक अछि जे अपना सब सिंगल यूज प्लास्टिक जे उपयोग करै छी ओकरा उपयोग केनाइ बंद कऽ दी, और कपड़ा या जूट के जे झोरा अछि ओकर प्रयोग बढ़ाबी। श्रोताबंधु, सार्वजनिक परिवहन साइकिल आ पैदल चलवाक लेल जे घरक आदमी सब छथि हुनका प्रोत्साहित करी। अपना सबके कूड़ा करकट कचरा सब जे अछि ओकर सही प्रबंधन करी, और जैविक आ अजैविक कचरा के अलग अलग कऽ कऽ राखी। श्रोताबंधु, ई छोट छिन डेग पर्यावरण संरक्षण के दिशा में पैघ भूमिका निर्वाह कऽ सकैत अछि। विश्व पर्यावरण दिवस अपना सबके ई मोन पढ़ाबैत अछि जे प्रकृति आ मानव के संबंध अटू अछि। यदि प्रकृति सुरक्षित रहत तखने मानव के जीवन सेहो सुरक्षित रहत। अपना सब विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन जखन स्थापित करब तखने मानव जीवन बनल रहत, आर्थिक प्रगति तखने सार्थक हैत जखन ओ पर्यावरण के अनुकूल हो, आ प्राकृतिक संसाधन के जे संरक्षण है वो अपना सबके सुनिश्चित करऽ पड़त। तो आओ एही विश्व पर्यावरण दिवस पर अपना सब ई संकल्प ली जे अपन लग पास स्वच्छता बना कर राखब, गाछ वृक्ष के रक्षा करब, पानि आ ऊर्जा के संरक्षण करब, संगे पर्यावरण के प्रति अपन जिम्मेदारी के ईमानदारी से निर्वहन करब। यह अपना सबके जे नेना छथि और आबवला जे पीढ़ी अछि ओकरा लेल सबसे पैघ उपहार हैत। तऽ अंत में एकटा बात कहब जे ए पृथ्वी नहि केवल अपना सबहक विरासत अछि, ई आबवला पीढ़ी के लेल अमानत सेहो अछि। आओ एकरा हरियर बना कर राखी, स्वच्छ आ सुरक्षित बना कर राखी, अपन योगदान स्वच्छ सुरक्षित आ नीक समाज बनाबऽमे दी। तऽ लऽ चली एखन धियापुता के खेल के मैदान में, कियाकि गर्मी छुट्टी तऽ छै हे आ सब कियो भरि दिन अभिभावक एखन पूरा ध्यान देने छथिन जे बच्चा ई जे भीषण गर्मी चलि रहल अछि ओहिमे बेसी एम्हर आम्हर नहि करथि, कियाकि लू के डर सेहो छै। तऽ पहले सुनी गीत, तकर बाद फिर हेतै गपशप।

0: चैत कबड्डी आबो दे तबला बजाबो दे। हरिना झा, मृदुला मेसर और रूबी के स्वर में ही गीत अपना सब सुनलों और बहुत आनंदित करेवला गीत छल। और बच्चा के निपन के अगर मोन पारियो तो ठीके, अपना सब जे कबड्डी कबड्डी करत जात रहो तो एक दूसरा के जे धाप मारित रहिए वो तबले बजबित रहिए। तो आब बेर भ गेल जे केसल जे बच्चा सबक सबसे प्रिय कार्यक्रम छथि और कर इंतजार प्रत्येक हफ्ता शुक्र दिन बच्चा सब करत रहे छथि, वो पहले सुनी। तो केसल बच्चा के मुख से होरल पट्टी के बच्चा सबक मुख से आजुक अपना सब केसल सुनब। तो सुनी आजुक केसल।
1: धियापुता जय हिंद। बउआ उद्यम यानी कि मेहनते से काज पूरा होता है, केवल इच्छा केला से नहीं। जेना कि सूतल सिंह के मुँह में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करते है, बल्कि शेर के अपन भोजन प्राप्त करवाक लेल स्वयं प्रयास करो पड़ता है। आजुक किसलय कार्यक्रम है।

0: बहुतो राज धियापुता बैसल छे त बहुत किछ सुनावे चाहे छे त आब हिनके सबसे गपशप करी। बुआ अहाँ के की नाम छी?
1: श्याम कुमार छ।
0: आज कार्यक्रम में अहाँ की सुनावे चाहे छी?
1: गाना
0: सुनाओ।
1: मैं सन धन ने कोनो जगत में, मैं सन धन ने कोनो जगत में, जाने पूरा जहान यो बेटा बनी कहे शंभु बाबा के लिए जगत में नाम यो, बेटा बनी कहे शंभु बाबा के लिए जगत में नाम यो, जगत जननी ज्वाला मैया के आहा पुत्री कहबियो, जे कियो आबे शरण अहाँ के नैया पारी लगाबियो, हम अज्ञानी छियो बाबा माफ करब अपराधियो, अही के कृपा सँ चलायो बाबा हमर जीवनक नाव, हे ज्वाला मैया हे शंभु बाबा रखबै हमर ध्यान यो, बेटा बनी कहे शंभु बाबा ये जगत में नाम यो, बेटा बनी कहे शंभु बाबा के लिए जगत में नाम।

0: बाबा के लिए जगत में नाम।
1: अहाँ की नाम छी?
2: सालू कुमारी।
1: आज कार्यक्रम अहाँ की सुनाब चाहे छी?
2: जय जय भैरव।
1: सुनो।
2: जय जय भैरव असुर भयावर पशुपति भामिनी माया, सहज सुमति बर दिया है गोसाओला, अनुगत

0: मारी मुँह बेली कतेक उगली करुकुरा जय जय भैरव असुर भयावर।
1: बुआ अहाँ की नाम छी?
2: दिव्या कुमारी।
1: आज कार्यक्रम में अहाँ की सुनाबे चाहे छी?
2: हम गीत सुनाबे चाहे छी।
1: सुनाओ।
2: हम इनका संगे गावा चाहे छी।
1: बुआ अहाँ की नाम छी?
3: जूली कुमारी।
1: सुनाओ।

0: 귀여운.
1: 뭐가 하기 남지?
2: 은수자.
1: 아주 가리크라마 하기 순하고 자야지.
2: 짱기도.
1: 순어.
2: 뭐?

0: तुम प्यार के लिए हो भगवान मेरा जीवन, संसार के लिए हो।
1: अहाँ की नाम छे?
2: साक्षी प्रिया।
1: आज कार्यक्रम अहाँ की सुनाब चाहे छी?
2: संगीत
1: सुनो।
2: अरुण गगन पर महाप्रगति का अब फिर मंगल गान उठा, करवत बदली अंगराई ले सोया हिंदुस्तान उठा। सौरभ से भर गई दिशाए अब धरती मुस्काती है, कन कन गाता गीत गगन की सीमाएं दूर आती है। मंगल गान सुनाता सागर गीत दिशाएं गाती है, मुक्त गगन में रास पताका लहर लहर लहराती है। तरुण रक्त अब लगा खोलने हृदयों में तूफान उठा, करवत बदली अंगराई ले सोया हिंदुस्तान उठा। रामेश्वर का जल अंजलि में कश्मीर की सुंदरता, कामरूप की झोली द्वारका की पावन प्यारी ममता। मंग देश की भक्ति भावना महाराष्ट्र की तन्वरता, सौर पंचनद विजय विश्व में राजस्थानी प्रबल क्षमता। कन्नीज कन्नीज पखर तेज को फिर भारत बलमान उठा, करवत बदली अंगराई ले सोया हिंदुस्तान उठा। बिंदु बिंदु जल मिलकर बनती प्रियंकर जल की धारा, कन कन सूरज मिलकर करते अंधकार में जग सारा। कोटि कोटि हम उठे उठाए भारतीयता का नारा, बड़े विश्व के बढ़ते कदमों ने फिर हमको ललकारा। थे देश के कन कन से फिर जन जन को आह्वान उठा, करवत बदली अंगराई ले सोया हिंदुस्तान उठा।
1: वो अहाँ का की नाम छी?
3: सुगंधा कुमारी।
1: आज कार्यक्रम अहाँ की सुनाब चाहे?
3: सरस्वती वंदना।
1: सरस्वती वंदना बहुत सुंदर सुनाओ। तो
0: विद्या की देवी तू दानी महान, महिमा तुम्हारी जो गावे जहां। हंसी पे सवारी नहीं है मासारे, बिना पुस्तक धारी नहीं है मासारे।
1: एक संग हम आज कार्यक्रम के विराम दे छी। एक बेर फिर यही विश्वासक संग विदा ले छी जे फिर भेंट है अगला शुक्र दिन अहिना कोनो आन विद्यालय के बच्चा के मुख से किस लायक सब धिया पुता जय।

श्रोतागण, एखन अपना सब सुनि रहल छलहुँ केसलाय बच्चाके मुखसँ होरल पट्टीके बच्चा सभक गपसप। एखन अपना सब सुनलहुँ, वाचन आओर सङ्कलन छल आशुतोष कुमार झाक आओर प्रस्तुति छलनि अस दाऊदके। तऽ ई छल केसलाय आओर एकटा कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना सेहो अछि। श्रोतागण, प्रदूषण नियन्त्रण, प्राकृतिक संसाधनके सन्तुलित उपयोग आ जैव विविधताके रक्षा कऽ कऽ अपना सब पृथ्वीके अपना लेल आ आबयवला पीढ़ीके लेल सुरक्षित राखि सकैत छी। पर्यावरण संरक्षण आओर अपना सभक जिम्मेदारी, इएह अछि आकाशवाणी दरभंगाके फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगीके अगिला अंकक विषय। विशेषज्ञ हेता डॉक्टर मनुराज शर्मा। प्रसारणके दौरान कार्यक्रमसँ जुड़बाक लेल अपना सभक फोन नंबर हैत 9430002935। एकटा आओर फोन

हमारा है 0062-222-4481। फोन नंबर एक बेर फिर से सुन ले जाए। पहल फोन नंबर है 9430029353 आ दोसर नंबर है 0062-222-4481। समय याद राखी रवि दिन 7 जून के दिन के 11 बजे। तो इछल कार्यक्रम संबंधी सूचना। तो श्रोता बंधु अपना सब आजुक जे चर्चा करे छलों विश्व पर्यावरण दिवस, ई दिवस नहीं केवल एकटा तिथि बल्कि मानवता के प्रकृति के प्रति अपन जिम्मेदारी के स्मरण करबाक एकटा वैश्विक अभियान है। तो कोनो जे दिवस अपना सब मनबै छे तो ओकर कोनो ने कोनो एकटा थीम सेहो होइत अछि, और एहि सालक अपना सबके जे थीम अछि ओ अछि क्लाइमेट एक्शन। ई अपना सबके संदेश दैत अछि जे आब केवल चिंते व्यक्त करबाक समय नहि रहि गेल जे आह ई केना भेलै ओ ई केना भेलै, बल्कि आब एकटा ठोस आ प्रभावी डेग उठेबाक समय आबि गेल अछि। एहि सालक सबसे मुख्य संदेशो इएह अछि जे जलवायु परिवर्तनसँ निपटबाक लेल अपना सब जीवन विकास और संसाधन सभक उपयोग के तरीका में सकारात्मक पहले बदलाव आनी। श्रोता बंधु आजुक समय पृथ्वी के बढ़ैत तापमान, प्रदूषण, पानिक संकट, ई वन झाकुर के कटाई और ई जे जैव विविधता है ओकर क्षरण एहन गंभीर चुनौती के अपना सब जे सामना कऽ रहल छी। ई समस्या के समाधान केवल अपने सब लग में अछि। जखन अपना सब मिलजुल के डेग में डेग मिला के आगू बढ़बे तखने अपना सब एहि संबंध में कोनो नीक काज कऽ सकब। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव आब भविष्य का आशंका नहीं बल्कि वर्तमान का वास्तविकता बन चुकल है, जे कि अपना सब देख रहल छी। ई बढ़ैत गर्मी, ई लगातार कखनो जे देखे छी एक बेर बारिश भऽ जाइए तरतरा के, बाढ़, सूखा और आनो आन जे प्राकृतिक आपदा सब है अपना सब के लगातार चेतावनी दऽ रहल है जे यदि अपना सब आबयवला समय में कोनो कार्रवाई नहि केलहुँ तऽ जे नेना भुटुक्का छथि ओ एकोटा गाछ वृक्ष नहि देखता, हुनका बहुतो रास स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत के सामना करय पड़तनि। तऽ आओ अपना सब एहि विश्व पर्यावरण दिवस पर ई संकल्प ली जे प्रकृति के संग संतुलित जीवन जीव, पर्यावरण के अनुकूल अपना सब आदत के अपनिया के अपन लग पासक लोक सेहो एकरा लेल प्रेरित करब, कियाकि पृथ्वी केवल अपना सभक विरासते नहीं अछि, कहबे केलहुँ जे ई आबे वाला पीढ़ी के लेल अपना सबके अमानत अछि। एकटा सुरक्षित, स्वच्छ और हरियर से भरल भविष्य जे अछि से आजुक अपना सबके उठाओल हर एक डेग जे हैत ओ कुल का पूजी बनत। तो पर्यावरण के रक्षा से मानवता के सुरक्षा संभव है और जलवायु के प्रति अपना सबके जिम्मेदारी, भविष्य के प्रति अपना सबके जे है से सत जिम्मेदारी है। तो एक संग अपना सबके समय इो कह रहा है जे आब नन्हा मुन्हा राही के समेटी और किसान श्रोता लोकन के जे छे से स्वागत करियन। तो अन्नदाता किसान भाई लोकन के स्वागत और नमस्कार। तो श्रोता बंधु एखुनका समय में अपना सब देख रहल छी जे बहुतो रास दिक्कत के सामना अपना सबके करय पड़ रहल अछि। कखनो रौद, कखनो अपना सबके देखे छी जे पानिये भऽ जाइए, तो ई सब समस्या तो अछि। संगे संग एकटा समस्या और अछि जे

अपना सबके जे खेती होइत अछि ओहिमे अपना सब खर पतवार जे नियंत्रण अछि ओकरा अगर कऽ कऽ राखी तऽ फसिल वैज्ञानिक कहै छथिन जे ई नीक उपजाके चाभी अछि। किसानीमे उत्पादन बढ़ेबामे खर पतवार नियंत्रणके बहुत बेसी भूमिका होइत अछि। श्रोता बंधु, खर पतवार जे अपना सब चर्चा करै छी ओ अवांछित पौधा होइत अछि जे फसिलके संग उगिके माटिक पोषक तत्व, पानि, प्रकाश आ स्थानके लेल फसिलके संग प्रतिस्पर्धा करै छथि। एहिसँ फसिलके वृद्धि प्रभावित होइत अछि आओर उत्पादनमे कमी आबि जाइत अछि। कैक बेर खर पतवार कीट आओर रोग सबके तऽ आश्रयके स्थल बनि जाइत अछि, ओकर घर बनि जाइत अछि, जाहिसँ फसिलके बेसिए नुकसान भऽ जाइए। किसान भाइ लोकनि, खर पतवार नियंत्रणके लेल किसान भाइके समेकित उपाय अपनिएबाक चाही। समयपर खेतक जोताइ, प्रमाणित बीया, ओकर उपयोग, संतुलित उर्वरकके प्रबंधन आ सबसँ पैघ गप जे फसिल चक्र अपनियाबऽ पड़त अपना सबके, इहो कयलासँ खर पतवारके समस्या कम होइ छै। किसान भाइ लोकनि, फसिलके शुरुआतक अवस्थामे निकौनी कमौनी केनाइ बहुत बेसी आवश्यक अछि, कियाकि इएह ओ समय अछि जखन खर पतवार सबसे बेसी नुकसान पहुँचाबैत अछि। एखुनका समयमे यांत्रिक, जैविक आओर रासायनिक सबटा विधिके उपयोग कयल जा रहल अछि। किसान भाइ, रासायनिक नियंत्रणके लेल खर पतवार नाशी दवाइके प्रयोग कृषि विशेषज्ञके सलाहके अनुसारे करबाक चाही अपना मुने नहि। दवाइके सही मात्रा, सही समय आ उचित विधिसँ छिड़काव करबापर नीक परिणाम प्राप्त होइत अछि। अनावश्यक या बेसी मात्रामे दवाइके प्रयोग माटि आओर पर्यावरणके लेल हानिकारक भऽ सकैत अछि। किसान भाइके चाही जे ओ नियमित रूपसँ खेतके निरीक्षण करथि आ खर पतवार अगर देखबामे आबय तऽ नियंत्रणके उपाय जे छै से अपनाबथि। समयपर आओर वैज्ञानिक तरीकासँ खर पतवार नियंत्रण कयलासँ फसिल स्वस्थ रहैत अछि, उत्पादन बढ़ैत अछि आओर खेती लाभदायक बनैत अछि। खर पतवार पर समय पर अगर नियंत्रण कऽ लेल जाय तऽ नीक उत्पादन आओर बेस लाभ भऽ सकैत अछि। जखन लाभ बेसी होइत अछि, जखन कोनो नीक खुशखबरी सुनबामे अबैत अछि, तऽ अपना सब गीत नादके आनंद लै छी। तऽ किया नहि सुनी पहिले एकटा सुन्दर संगीत, फेर हेतै गपशप।

हे गौरा तोहरो सजनवाना, राधा मोहन मिश्र के स्वर में ई अपना सब सुंदर सन गीत अखन सुनलौं। और अपना सब चर्चा कह रहा छलौं जे फसिल में खर पतवार नियंत्रण बहुत बेसी आवश्यक है और संगे संग मौसम के जानकारी भेनाइ सेहो बहुत आवश्यक है। तो किया ने पहले श्रोता बंधु का मौसम पूर्वानुमान संबंधी जे जानकारी है वह दौ दी। श्रोता बंधु, पूर्वानुमानित अवधि में उत्तर बिहार के किछ जिला में उमस से भरल गर्मी बनल रहबाक संभावना है। 6 और 9 जून के किछ स्थान पर गरज चमक तेज हवा और हल्लुक बरखा हेबाक संभावना है 6 और 9 जून के। एहि दौरान मेघ अधिकांश समय आंशिक रूप से मेघाच्छादित रह सकैत अछि, यानी मेघ लागल रह सकैत अछि। एहि अवधि के दौरान अधिकतम तापमान 37 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकैत अछि, जे सामान्य से 3-4 डिग्री सेल्सियस बेसी अछि। न्यूनतम तापमान 25 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहबाक संभावना छै, यानी गर्मी अखन और बेसी बनल रहत। ताहि दुआरे कनी सतर्क रही, बचिक रही। अगिला कुछ जे अधिकांश क्षेत्र अछि ओहिमे 12 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से पूर्वावसा चलवाक संभावना छै। सापेक्ष आर्द्रता भोर में 65 से 70% आ साँझ में 20 से 25% रहबाक संभावना छै। तो ई छल मौसम संबंधी जानकारी। अपना सबके गर्मियों से बचि के रहबाक है और संगे संग बड़का बुनी जे होयवला है ओकरो अपना सबके व्यवस्था कऽ के रखबाक है। संगे संग जे अपना सब किसानी करै छी तो ओहियो में जे अपना सबके किछ सुझाव भेटैत अछि जे अपना सबके कृषि वैज्ञानिक दै छथि तो ओहियो पर किछ चर्चा कोली। खरीफ मकई के खन बुआई करी, अंतिम जोताई के समय 100 से 150 क्विंटल प्रति

हेक्टेयर के निक तरह से सरलाह गोबर के खाद संगे 30 किलोग्राम नाइट्रोजन 60 किलोग्राम फास्फोरस आ 50 किलोग्राम पोटास के प्रयोग करें। शक्तिमान 2, शक्तिमान 5, शक्तिमान 6 आ राजेंद्र शंकर मकई 3 किस्म के बुआई करवाक चाहिए। जे किसान भाई के लोग पटौनी के समुचित सुविधा उपलब्ध है और जे नमहर अवधि वाला धान के खेती कर चाहे ओ आगामी 4 से 5 दिन के भीतर राजश्री, राजेंद्र मंसूरी, स्वर्ण, स्वर्ण सब 1 आ BPT 5204 किस्म के बीचरा बिया स्थली में खसेवा काज पूरा कर लेते। किसान भाई बुआई से पहले बिया सबके वेविस्टीन 1.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बिया के दर से उपचारित करी। संगे ही बीज स्थली जे है ओतो पर्याप्त नमी बना के राखी। किसान भाई अपना सबके रामतोरे, सजमैन, खीरा ये सब जे ग्रीष्मकालीन तरकारी सब है ओम निकौनी, कमौनी आ खर पतवार जे अपना सब एखने गप कलूँ हाँ ओकर नियंत्रित करवाक काज अपना सबके कलवाक चाहिए। गरम आ उमस से भरल मौसम में पात भक्षी आ फल छेदक जे कीट सब रहित है ओकरो प्रकोप बढ़िए जाता है। ते दुआरे एकरो नियमित निगरानी अपना सबके केनाए आवश्यक है और अगर आवश्यकता बुझमा आवे तो डाइमेथोएट 30 EC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानिक दर से छिड़काव क सके। किसान भाई वर्तमान मौसम में परिस्थिति सब मिर्चाइ के विषाणुजनित रोग के प्रसार के लिए अनुकूल एखन समय भ सकत है। किसान भाई रोगग्रस्त जे गाछ देखवा में आवे ओकरा उखाड़ के माटि में दवा के नष्ट क दी। एकर बाद वाहक कीट के नियंत्रित करवाक हेतु इमिडा क्लोरोप्रिड 0.3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के दर से एकर छिड़काव अपना सबके करवाक चाहिए। खरीफ प्याज के बीज स्थली तैयार करी। संगे ही स्वस्थ पौध उत्पादन के लिए बीज स्थली में नीक तरह सरलाह गोबर के खाद का प्रयोग करी। N53 एग्रीफॉन्ड, डार्क रेड, अर्का कल्याण आ भीमा सुपर किस्म के बुआई करी। बिया सबके व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से करी आ बुआई से पहले बीज उपचार अवश्य करी। बिया दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर राखी। किसान भाई के माटि के उर्वरता और जैविक कार्बन के मात्रा बढ़ेबाक लेल हरियर खाद हेतु सनई या ढैचा के बुआई करवाक एखन सलाह देल जात अछि। आगामी वर्षा के लाभ उठा के एहि फसल के बुआई समय पर पूरा कर ली। किसान भाई गरज, चमक आ तेज हवा के संभावना के देखैत किसान भाई वज्रपात के समय खेत में काज करवा से बचैत आ सुरक्षित स्थान पर शरण लैत। कीटनाशी आ उर्वरक के छिड़काव मौसम साफे रहला पर अपना सबके करवाक चाहिए, तखने ओकर उचित फायदा अपना सबके भेट सकत। और अपना सबके लगातार जे कहल जा रहल अछि ये बदलैत मौसम में अपना सबके सदैव सतर्क रखबाक चाहिए और संगे संग जे आनो आन किसान भाई छथि हुनको जानकारी दैत रहबाक चाहिए। जे एखन दलान पर नहीं बैसल छथि, खेतक काज से या बाजारे के काज से चौक चौराहा पर गेल छथि तो हुनका ई सूचना अवश्य दऽ दी जे एखन आबै वाला समय में जे बरखा हुअ वाला अछि ओकरा ध्यान दैत अपना सबके किसानी में की काज करबाक अछि, क्याकि नीकक फल नीके होइ छै आ खराब के खराबे। अइ पर अपना सब फेर गप करब, पहले सुनी एकटा सुंदरसन गीत।

मोरा जोगिया मन भावे हो राम, अरविंद कुमार झा के स्वर में सुंदर सन गीत अपना सब सुनल और अपना सब चर्चा केने रहूँ। जे निकक फल निके भेटत है, ककरो अगर फसल निक छे, ककरो गाछी में अगर आमे बेसी लागल छे, ककरो अगर कोनो चीज भेटवे के लिए हैं तो ओकर लालच हमरा अहाँ के नहीं होबाक चाही। हमरो अहाँ के समय आयत तो निश्चित रूप से जे चीज प्राप्त होबाक रहत ओ अपना सबके प्राप्त हेबे करत। ते दुआरे जे किछ जानकारी अपना सबके भेटत है वो अपना सब निश्चित रूप से जे अपन सबके किसान भाई छथि हुनका दैत रही। एहन एकटा खिस्सो अछि जे एकटा सेठ छलथि, हुनकर व्यापार चारू कात पसरल छल। जेना अपना सब फसिल लगाबै छी और ओकरा बेचै छी तऽ व्यापारी सभक संग हुनकर लेन देन चलैत रहै छल। ओ बहुत रास चीज कीनै छलथि। एहने व्यापारी सबमे एकटा दोसर गाँवके व्यापारी सेहो छलाह। हुनका सेठ लगमे बहुत पाई लेनाइ भऽ गेल छल तऽ ओ सोचलनि जे जाक रुपया लो आबी। ई सोचिके ओ सेठ लगमे गेलथि, रुपया मंगलथि। सेठ कहलखिन हिसाब कऽ लिअ और रुपया लऽ लिअ। बेस नमहर चौड़ा हिसाब छल। व्यापारी हिसाब करैत रहल, लाखो रुपयाके हिसाब भऽ गेल। हिसाब करैत करैत राति भऽ गेल, सेठ रुपया दऽ देलखिन। व्यापारी सोचलनि जे एतेक रुपया लऽ कऽ रातिमे जेनाइ ठीक नहि। रातिके ओ ओतहि रहि गेलाह आ सोचलथि जे भोरे भोर उठि कऽ चलि जायब। तऽ ओतहि ओ एकटा कमरा देखलथि आ ओतऽ रुकि गेलथि। इम्हर सेठके मोनमे सेहो लालच आबि गेल, पाइ हड़पबाक हुनका मोन भऽ गेल। ओ अपन एकटा भरोसाके आदमीके कहलखिन जे देखू ई व्यापारी बहुत पाइ लऽ कऽ भोरे भोर अन्हारेमे जायत, अहाँ गाछीमे नुका जायब आ जखने ई अन्हारमे ओम्हरसँ निकलत अहाँ ओकरा खत्म कऽ देब आ रुपया लऽ कऽ आबि जायब। नौकर तैयार भऽ गेल, रातिकऽ ओ गाछीमे नुका गेल, हाथमे बंदूक लेने छलै। इम्हर व्यापारी भोरे उठला, एखन राति बाकी छल। घर पहुँचबाक जल्दीके कारणे ओ अन्हारेमे ओतऽसँ विदा भऽ गेला। सेठके पता चलल कि व्यापारी विदा भऽ गेल छथि। आब ओ रुपयाके सङ्ग नौकरके अयबाक प्रतीक्षा करऽ लगलथि। आब किछु देरी भऽ गेल, आब हुनका चिन्ता भेलनि जे नौकर कतौ गेल। तखन ओ अपन बच्चाके पठेलथि आओर देखबय लए गेलखिन जे अहाँ देखियौ कतऽ छथि। ककरो आबैत देखि कऽ ओ नौकर जे छै से ओकरे बच्चाके गोली मारि देलक। तऽ खराबके फल खराबे होइ छै आ नीकक फल नीके। आब समय कहि रहल अछि जे आब खेती गृहस्थीसँ विदा ली। तऽ नमस्कार किसान भाइ लोकनि।

खेती गृहस्थी किसान भाइयों को संबोधित था। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: सावधान, क्या आप जानते हैं आपके द्वारा पॉलिथीन में फेंका गया खाद्य पदार्थ पशुओं की जान ले सकता है। पॉलिथीन में लिपटा बचा हुआ खाद्य पदार्थ पशुओं का साइलेंट किलर बनता जा रहा है। खाद्य पदार्थों के साथ ये पॉलिथीन उनके पेट में जमा होकर पाचन तंत्र को बंद कर देता है, जिससे उनकी मौत तक हो सकती है। पॉलिथीन के कैरी बैग पर लगाए गए प्रतिबंध का पालन करें, उसे खुले में न फेंकें, बचे हुए खाद्य पदार्थों का सही निपटान करें, पॉलिथीन मुक्त समाज बनाएं, पशुधन बचाएं।
5: डेयरी एवं पशु संसाधन विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: इधर आइए, इधर।
2: इधर?
1: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
3: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
2: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
3: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
2: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222205042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
3: शुभवाणी,
2: लाभवाणी,
1: आकाशवाणी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। भाजपा और जदयू ने बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की। भाजपा ने भोजपुरी फिल्म अभिनेता पवन सिंह और जदयू ने स्वास्थ्य मंत्री निशांत को बनाया उम्मीदवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर भाजपा ने आज से राज्यव्यापी विकास विश्वास और जन कल्याण पखवाड़े की शुरुआत की। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर 7 जून से शुरू होगा वाहनों का परिचालन। अधिकतम 10 टन भार वाले वाहनों को ही आवागमन की मिलेगी अनुमति। और मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में अगलगी की घटना के मामले में पुलिस ने एक डॉक्टर समेत 3 कर्मियों को किया गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। एनडीए के घटक दलों भाजपा और जनता दल यूनाइटेड ने बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता।

0: भाजपा ने भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता और गायक पवन सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं पार्टी ने संजय मयूख, अनिल कुमार ठाकुर और शीला पंडित को उम्मीदवार बनाया है। इधर जदयू ने पटना से स्वास्थ्य मंत्री निशांत, मधुबनी से भारती मेहता और पश्चिम चंपारण से शिवरानी देवी प्रजापति को द्विवार्षिक चुनाव के तहत उम्मीदवार बनाया गया है। जबकि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे से रिक्त हुई एक सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए शेखपुरा से ललन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया गया है। गौरतलब है कि विधान परिषद की 9 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव जबकि एक सीट पर उपचुनाव हो रहा है। एनडीए ने आज 8 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची जारी की है। शेष 2 सीटों पर जल्द ही उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होने की संभावना है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश भाजपा की ओर से आज से राज्यव्यापी विकास, विश्वास और जन कल्याण पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बताया कि इस दौरान सरकार की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत सभी जिलों में मीडिया संवाद, प्रदर्शनी, योग शिविर और जन कल्याण शिविर का आयोजन होगा।
2: भारतीय जनता पार्टी द्वारा 5 जून से 21 जून तक पूरे देश एवं बिहार में 12 साल बेमिसाल विश्वास, विकास और जन कल्याण अभियान चलाया जाए। इस अभियान के माध्यम से केंद्र सरकार की उपलब्धियां, जन कल्याणकारी योजनाएं एवं विकसित भारत के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने लिया है।
1: भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर 7 जून से वाहनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी ने बताया कि अभी केवल एक लेन पर अधिकतम 10 टन भार वाले वाहनों को ही वन वे ट्रैफिक के तहत परिचालन की अनुमति दी गई है। उन्होंने बताया कि पेली ब्रिज पर वाहनों के परिचालन का ट्रायल रन पूरी तरह सफल रहा।
3: 7 जून के करीब 11 बजे से स्कूल को हम लोग शुरू करेंगे। स्कूल का एक लेन यानी लगभग 5 मीटर चौड़ा लेन हमारा चालू होगा, जिसमें कि छोटी गाड़ियों का परिचालन को हम लोग शुरू करेंगे और परिचालन में लगभग 10 टन तक की जो गाड़ियां होंगी, उन गाड़ियों 10 टन तक जो परिवहन होगा उसको हम लोग अलाउ करेंगे।
1: बक्सर के इटाढ़ी रेलवे गुमटी पर नवनिर्मित रोड ओवर ब्रिज क्षतिग्रस्त हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि 26 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से निर्मित इस आरओबी का उद्घाटन कुछ दिन पहले हुआ था। आरओबी का पाया संख्या 5 पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके बाद प्रशासन ने पुल पर आवागमन बंद कर दिया है। मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में अगलगी की घटना में 6 लोगों की हुई मौत के मामले में पुलिस ने अस्पताल के 3 कर्मियों को गिरफ्तार किया है। CTSP मोहिबुल्ला अंसारी ने बताया कि ICU में तैनात चिकित्सक डॉक्टर पंकज कुमार, एडमिन मैनेजर राजकुमार और मेंटेनेंस मैनेजर अजीत कुमार की गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने बताया कि इस मामले में अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी के आवेदन पर ब्रह्मपुरा थाने में शिकायत दर्ज की गई है।
4: 4 जून 2026 को करीब 4 बजे सुबह में प्रसाद हॉस्पिटल के ICU वार्ड में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। तब अभी तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। वो जो 3 लोग हैं वो एक मेंटेनेंस हेड वहाँ के, एक एडमिन हेड और वहाँ जो ICU में जिन डॉक्टर की ड्यूटी थी उस समय वो वहाँ पे नहीं उपलब्ध थे और उनकी, इन 3 लोगों की उस समय इमीडिएट लापरवाही के वजह से जो है कुछ लोगों की मृत्यु हुई है।
1: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि अगले 2 वर्षों में 50 लाख घरों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। आज पटना में पर्यावरण दिवस पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि इस संबंध में केंद्र सरकार के साथ जल्द ही एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होगा। उन्होंने कहा कि 125 यूनिट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन की स्थिति में सरकार की ओर से उपभोक्ताओं को भुगतान किया जाएगा।
5: अगले 2 वर्षों में 50 लाख घरों तक हम सोलर युक्त बिजली पहुंचाएं और 125 यूनिट जैसे पार कीजिएगा, 125 यूनिट से ज्यादा आपके घरों पर सोलर युक्त बिजली जब उत्पादन होगा आपके अकाउंट में हम पैसा आपको तुरंत वापस करना शुरू कर देंगे। ये कमाने का भी जरिया हमारे लोगों के लिए हो जाएगा।
1: प्रदेश में आज

0: राष्ट्रीय शारदीय खरीफ महाअभियान की शुरुआत हुई। इस अवसर पर पटना में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राज्य सरकार खेत बचाओ अभियान चलाकर मिट्टी की उर्वरता और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। कृषि मंत्री ने अगले महीने से किसान जन कल्याण संवाद और किसान डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू करने की घोषणा की। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने गैर मजरुआ आम श्रेणी की सभी सरकारी जमीनों तथा जमाबंदी रद्दीकरण के मामलों को रोक सूची में शामिल करने का निर्देश दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भोजपुर, मधेपुरा और अरवल जिलों के राजस्व कार्यों की समीक्षा के दौरान उन्होंने सरकारी भूमि की खरीद बिक्री रोकने के लिए इसकी सूची निबंधन विभाग को भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: एक जमाने से कहानी है सुना।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय ने आज पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली। पटना स्थित बिहार लोक भवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
4: मैं मीनाक्षी मदन राय, जो पटना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगी।
0: न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय ने न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू का स्थान लिया है, जो कल सेवानिवृत्त हो गए थे। न्यायमूर्ति राय इससे पहले सिक्किम उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश थीं। वे पटना हाई कोर्ट की दूसरी महिला और 48वीं मुख्य न्यायाधीश बनी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री श्रवण कुमार, दिलीप कुमार जायसवाल, अशोक चौधरी और राम कृपाल यादव सहित राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य उपस्थित थे। पूरा प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में है। कई स्थानों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 41.9 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ कैमूर का पपुआ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 38.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 2-3 दिनों के दौरान तापमान में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है।
5: 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम एवं उत्तर मध्य भाग के कुछ स्थानों पर, जबकि शेष भाग के एक या दो स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है, तथा राज्य के उत्तर पश्चिम एवं उत्तर मध्य भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पूर्व, दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति आम लोगों को जागरूक करने और प्रकृति के संरक्षण में सामूहिक भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है।

0: एक रिपोर्ट।
1: बदलते मौसम, बढ़ता तापमान, घटते जल स्रोत और प्रदूषण की समस्या आज पूरी दुनिया के सामने गंभीर चुनौती बनकर खड़ी है। ऐसे समय में पर्यावरण संरक्षण केवल एक अभियान नहीं बल्कि हमारी आवश्यकता बन गया है। विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। राजधानी पटना के जेपी गंगापथ पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पौधारोपण कर 1,00,000 पेड़ लगाने के अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री चौधरी ने लोगों से अधिक पौधारोपण कर हरियाली बढ़ाने की अपील की।
2: विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मैं जरूर आपको शुभकामना देता हूँ और आज तो एक अभियान भी हम शुरू कर रहे हैं। इस इलाके में लगभग जितना कि चिड़ियाखाना में पेड़ नहीं है उससे अधिक सिर्फ इस जेपी गंगा पथ पर 1,00,000 पेड़ लगाने का अभियान आज हम
1: गया में आयोजित कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने कहा कि आज का दिन हमें पर्यावरण के प्रति हमारे उत्तरदायित्व का बोध कराता है।
3: आज का दिन हमें प्रकृति और पर्यावरण के प्रति अपने दायित्वों का स्मरण कराने का अवसर प्रदान करता है। पर्यावरण केवल हमारे चारों ओर का वातावरण नहीं है बल्कि हमारे जीवन, स्वास्थ्य, भविष्य का आधार है। उसके संरक्षण के बिना मानव सभ्यता का सतत विकास संभव नहीं है।
1: इधर जिला मुख्यालयों में भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। विभिन्न सरकारी संस्थानों में पौधारोपण किया गया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत भी लोगों ने पौधे लगाए और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
0: आज संपूर्ण क्रांति दिवस है। आज ही के दिन लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। इस अवसर पर मुख्य राजकीय समारोह पटना के जेपी कोलंबर पर आयोजित किया गया जहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी समेत राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्यों ने जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। अररिया जिले के पलासी थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर एक व्यक्ति को लगभग 5 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। शेखपुरा में पुलिस ने 2 कार से भारी मात्रा में शराब के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया। मुंगेर जिले के जमालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत फरीदपुर गांव से पुलिस ने एक घर से भारी मात्रा में शराब के साथ पति पत्नी को गिरफ्तार किया। कैमूर के प्रभारी मंत्री संजय सिंह की अध्यक्षता में आज भभुआ में संभावित बाढ़, सुखाड़ और भीषण गर्मी से निपटने को लेकर विभागवार की गई तैयारियों और कार्य योजना की समीक्षा की गई। राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान के तहत आज शिवहर और शेखपुरा जिले के अलग अलग गांव में किसान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत ने अंडर 18 एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता के बालक वर्ग में पाकिस्तान को 5-3 से पराजित कर फाइनल में जगह बना ली है। भारत की इस जीत में गोलकीपर सावन कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सावन कुमार पटना के आरके राय अकादमी में हॉकी का प्रशिक्षण लेते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा और जदयू ने बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की। भाजपा ने भोजपुरी फिल्म अभिनेता पवन सिंह और जदयू ने स्वास्थ्य मंत्री निशांत को बनाया उम्मीदवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर भाजपा ने आज से राज्यव्यापी विकास, विश्वास और जन कल्याण पखवाड़े की शुरुआत की। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर 7 जून से शुरू होगा वाहनों का परिचालन। अधिकतम 10 टन भार वाले वाहनों को ही आवागमन की मिलेगी अनुमति। और मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में अगलगी की घटना के मामले में पुलिस ने एक डॉक्टर समेत 3 कर्मियों को किया गिरफ्तार। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है शिवहर जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता हरिकांत सिंह।
1: शिवहर जिले में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। जिले के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। बढ़ती गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। विभिन्न स्थानों पर शीतल पेयजल की व्यवस्था की गई है ताकि आम राहगीरों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। जिला प्रशासन की ओर से लोगों को अनावश्यक रूप से दोपहर के समय बाहर न निकलने की सलाह दी जा रही है। लू और डिहाइड्रेशन जैसी गंभीर समस्याओं से बचाव के प्रति जागरूक करने के लिए प्रशासन की ओर से अभियान भी चलाया जा रहा है। जनता की समस्याओं के त्वरित निष्पादन के लिए राज्य सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा प्रत्येक माह के पहले और तीसरे मंगलवार को पंचायत स्तर पर सहयोग शिबिर का आयोजन किए जा रहे हैं। 2 जून को जिले के 13 पंचायतों में सहयोग शिबिर का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 908 आवेदन प्राप्त हुए। इसमें से 779 आवेदनों का निष्पादन मौके पर किया गया। तनियानी प्रखंड के बिलहिया तथा डुमरी कटसरी प्रखंड के नया गांव पंचायत में आयोजित सहयोग शिबिर में राज्य के ग्रामीण विकास और सूचना जनसंपर्क मंत्री श्रवण कुमार शामिल हुए। इस दौरान श्री कुमार ने लोगों की समस्याओं को सुनी और उसके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। शिबिर में सांसद लवली आनंद, बेलसंड के विधायक अमित कुमार रानू तथा जिला प्रशासन के अधिकारी भी उपस्थित रहे। मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि सहयोग शिविर का मुख्य उद्देश्य जनता की शिकायतों को सुनना और संबंधित विभागों के अधिकारियों के माध्यम से उसका त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है।
2: तो ये सहयोग कार्यक्रम यहाँ के लोगों के लिए, अब ऑफिस नहीं जाना पड़े, ब्लॉक नहीं जाना पड़े, तो जिला नहीं जाना पड़े, उनकी समस्या की यही सुनवाई करके यहाँ से होने वाला है तो यही पर निष्पादन, यहाँ से नहीं होने वाला है तो जिन अधिकारियों से संबंधित है उनको आवेदन यहाँ से भेजा जाएगा।
1: इधर जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक जिला मुख्यालय स्थित समाहरणालय के सभागार में हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रभारी मंत्री श्रवण कुमार ने की। बैठक में जिले में संचालित विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान मंत्री ने लंबित योजनाओं को शीघ्र पूरा करने तथा संभावित बाढ़ और सूखे की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा खेत बचाओ अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत शिवहर जिले के पंचायतों में किसान जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। किसानों को कृषि भूमि के संरक्षण, मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने तथा बंजर होती जमीन को पुनः खेती योग्य बनाने के संबंध में जागरूक किया जा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक और कृषि विभाग के अधिकारी शिविरों में किसानों को आवश्यक जानकारी प्रदान कर रहे हैं। भारत माला परियोजना चरण 2 के अंतर्गत प्रस्तावित सिल्लीगुड़ी गोरखपुर एक्सप्रेसवे निर्माण हेतु शिवहर जिले में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। जिला पदाधिकारी के निर्देश पर गठित 5 सदस्यीय समिति ने अधिग्रहण की जाने वाली भूमि के किस्म और प्रकृति निर्धारण करने के लिए मौजा मधुबनी उर्फ परदेसिया और ताजपुर का स्थलीय निरीक्षण किया। यह निरीक्षण एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए प्राप्त खेसरा सूची के आधार पर भूमि की वास्तविक प्रकृति, उपयोग और वर्गीकरण के निर्धारण के उद्देश्य से किया गया। समिति ने संबंधित क्षेत्रों का भ्रमण कर मौके पर ही जांच की। यह 5 सदस्यीय समिति 3 जून से 9 जून तक शिवहर जिले के 12 मौजा का दौरा करेगी। इस दौरान एक्सप्रेसवे के निर्धारित संरेखण के अनुरूप अधिग्रहण की जाने वाली भूमि की प्रकृति और भौतिक सत्यापन तथा निर्धारण किया जाएगा। समाज कल्याण मंत्री डॉक्टर श्वेता गुप्ता ने जिले के विभिन्न उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में स्थापित स्मार्ट क्लास का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि स्मार्ट क्लास के संचालन से विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण और बेहतर शिक्षा प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। मंत्री ने कहा कि समाज कल्याण विभाग की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए हर स्तर पर सतत प्रयास किए जाएंगे। शिवहर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में बीते दिनों व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें आपसी सहमति के आधार पर 287 मुकदमों का निष्पादन किया गया तथा 48,27,000 रुपए की राजस्व वसूली हुई। राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन

0: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक कुमार तथा जिलाधिकारी प्रतिभा रानी सहित अन्य अधिकारियों ने किया। कार्यक्रम का संचालन जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह न्यायिक अधिकारी ललन कुमार रजक ने किया। लोक अदालत में सुनवाई के लिए विभिन्न श्रेणियों के 11,000 से अधिक मामलों को चिन्हित कर पक्षकारों को नोटिस भेजे गए थे। इसमें से सुनवाई के बाद आपसी समझौते के आधार पर 287 मामलों का निष्पादन किया गया।
1: अभी आप सुन रहे थे शिवहर जिले की हलचल, इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता हरिकांत सिंह।

0: का निष्पादन किया गया।
1: अभी आप सुन रहे थे शिवहर जिले की हलचल, इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता हरिकांत सिंह।
2: आकाशवाणी दरभंगा से पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। ये गाना सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ। इस गाने को लिखा है आनंद बख्शी ने और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म का नाम है आन मिलो सजना।

फिल्म राजा जानी में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को। गाने को लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। अगला गाना जो आप सुनेंगे उसे भी लिखा है आनंद बख्शी ने, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, और फिल्म है धर्मवीर।

गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में सुनिए। संगीत कल्याण जी आनंद जी का, शब्द रचना आनंद बख्शी की, और फिल्म है बैराग।

आप सुन रहे थे आनंद बख्शी का लिखा हुआ ये गाना, जिसे संगीत से संवारा था कल्याण जी आनंद जी ने। आवाज़ थी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था बैराग। इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं, थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा सिंगरहार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

श्रोतागण नमस्कार। मैथिली कार्यक्रम सिंगरहारक आजुक अंकक संग हम राकेश चंद्र नंदन। बंधुलोकनि, हम सब जखन एक संग बैसि गेल छी तऽ प्रायः सभक मोन में बहुत रास गप सब आबि रहल अछि। आ एकटा विशेष गप जे अखन हमरा मोन में आबि रहल अछि ओ अछि अपन आकाशवाणीक संबंध में। 8 जून का आकाशवाणी अपन प्रसारण केर 90 गौरवशाली बरख पूरा कऽ रहल अछि। 8 जून 1936 का तत्कालीन भारतीय राज्य प्रसारण सेवाक नाम बदलि कऽ ऑल इंडिया रेडियो राखल गेल छल। तहियासँ लऽ कऽ आइ धरि आकाशवाणी निरंतर अपन दायित्वक निर्वहन करैत रहल अछि। बंधु लोकनि, आकाशवाणीक संगहि अपने सभक जुड़ाव हमरा सबके सेहो सदैत प्रेरित करैत रहल अछि। अपने लोकनिक सुझाव आ प्रतिक्रिया जखन प्राप्त होइत अछि तऽ मोन उत्साहसँ भरि जाइत अछि आ फेर एकटा नव हौसक संग

हमरा लोकनि लागि जाइत छी अपन कार्यक्रम सबके आर नीक बनेबा में। गप आर हमरा लोकनि करब, मुदा पहिने ई गीत।

0: संवेद स्वर में एखन हमरा लोकनि ई गीत सुनि रहल छलहुँ। बंधु लोकनि, एक बेर फिर अपने सबक स्वागत अछि आकाशवाणी दरभंगा कार्यक्रम सिंगरहार में। हमरा लोकनि जखन अपन आकाशवाणी गप कऽ रहल छी, गौरवशाली 90 बरख पूरा कऽ रहल अछि आकाशवाणी, पहिने कहलहुँ 8 जून 1936 कऽ ऑल इंडिया रेडियो नाम देल गेल छल, फेर 1956 मे औपचारिक रूपसँ आकाशवाणी नामसँ एकरा जानल जाय लागल। आजुक डिजिटल युगमे सेहो आकाशवाणी आब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सेहो उपलब्ध अछि आ न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम सँ सेहो अपने लोकनि हमरा सबके सुनि पाबि रहल छी। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्यक संग निरंतर अपन कर्तव्य पालन कऽ रहल अछि आकाशवाणी। तहिना हमरा लोकनि जखन अपन साहित्य दिस देखै छी तऽ बंधु लोकनि देखना जाइत अछि जे निरंतर अपन कर्तव्यक पालन साहित्यमे सेहो भऽ रहल अछि। मैथिली साहित्यक जे प्रारंभ सेहो आनहि भाषा सब जकाँ पद्यसँ भेल अछि। 14 शताब्दीमे हमरा लोकनि जनैत छी कवि कोकिल महाकवि विद्यापतिक रचना जकरा ओ देसिल बहिनाके संबोधित कयलनि, तहियासँ हुनक परम्परा निर्बाध गतिसँ चलैत रहल। फेर नवयुगक जे सूत्रपात के निहार कविश्वर चंदा झाक रचना सबसँ हमरा लोकनि निश्चित रूपसँ परिचित छी। धीरे धीरे मैथिली कविता सबमे विविध विषय सभक समायोजन होबय लागल, हास्य व्यंगक पुट सेहो आबय लागल आ नव रूपक संग मैथिली कविता हमरा सबक समक्ष उपस्थित भेल। अनगंती कवि साहित्यकार लोकनि अपन परिश्रमक बले एकरा संवर्धित करैत रहला आ ओकर परिणाम भेल जे आइ मैथिलीक काव्य विश्वक आन भाषाक काव्यसँ कान्हमे कान्ह मिलाकऽ आगाँ बढ़ि रहल अछि। आउ ने पहिने कवि फूलचंद झा प्रवीण केर काव्य पाठ सुनैत छी, फेर हमरा लोकनि गप करब।
1: हमर कविताक शीर्षक थिक मैथिलानी। पुरखा केर हम नाम जोगा कऽ रखने छी, पुरखा केर हम नाम जोगा

कतबो पुरीबा पछबा अन्हर बहि रहलै, कतबो पुरीबा पछबा अन्हर बहि रहलै, तखनो अपन ठाम जोगा कऽ रखने छी, तखनो अपन ठाम जोगा कऽ रखने छी।

आचर तर में गाम जोगा को रखने छी। पोखर झाखरी भरी देलथिन बाबू भैया, पोखर झाखरी भरी देलथिन।

दोसर सेहो रचना पलायने से संबंधित ने कखनो माय बिसरी है इहो सस्वर पाठ। अपन पर बात हिये उरले जहिए भेले पाखी, अपन पर बात हिये उरले जहिए भेले पाखी, बाटे दिस सदिखन ताकै छै ई पथरायल आँखी रे बाबू सब।

लुप लुप भरी हैं घोग, दाना रंग विरंगक देबो, लुप लुप

कतबा सहलों पीर बनेलों जकरा सब लेनीर, कतबा सहलों पीर बनेलों

सूगा भरी मुँह बजी हैं, ने कखनो माय बिसरी हैं। रे सूगा भरी मुँह बजी हैं, ने कखनो माय बिसरी हैं। खूब बुझै छी जीबे खातिर चाही दूटा पाय, खूब बुझै छी जीबे खातिर

नहीं खगता पैसा कौड़ी केर सब तरह छिपूर, नहीं खगता पैसा कौड़ी केर सब

अपन पर्वत हिये उड़लै जहिए भेलै पाक। अपन पर्वत हिये उड़लै

0: बाबू सब दिन अभी हैं, गुटुर गू घूमी घूमी गबी हैं। रे बाबू सब दिन अभी हैं, गुटुर गू घूमी घूमी गबी हैं। रे बाबू सब दिन अभी हैं, गुटुर गू घूमी घूमी गबी हैं।
1: फूलचंद्र झा प्रवीण के ई काव्य पाठ एखन हमरा लोकनि सुनि रहल छलहुँ। बंधु लोकनि, एक गोट कार्यक्रम संबंधी सूचना अछि। प्रदूषण नियंत्रण, प्राकृतिक संसाधन सभक संतुलित उपयोग आ जैव विविधताक रक्षा कहिए कऽ हमरा लोकनि पृथ्वीकेँ अपना लेल आ आबयवला पीढ़ी सभ लेल सुरक्षित राखि सकैत छी। पर्यावरण संरक्षण आ हमरा लोकनिक जिम्मेवारी। हाँ बंधु लोकनि, यह अछि आकाशवाणी दरभंगाक फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी केर अगिला अंकक विषय। विशेषज्ञ हेता डॉक्टर मनुराज शर्मा। प्रसारण केर क्रम में कार्यक्रम सँ जुड़वा लेल हमरा लोकनिक फोन नंबर हैत 9430023533।

लैंडलाइन नंबर है 0672-222-481। समय मन राखी अगला रवि माने 7 जून 2026 का दिन के 11 बजे। आब हमरा लोकन शब्द विमर्श दिस चली, वही सब पहिने आउ ने एक गोट महेशवाणी सुनै छी।

बंधुलोकनि स्नेहा झा कॉल एहि महेशवाणीक बाद आब हमरा लोकनि चली शब्द विमर्श दिस। ओहिसँ पहिने अपने लोकनिसँ एक गोट आग्रह ई जे कार्यक्रम सिंगरहार अपने लोकनिकेँ केहन लगैत अछि, अपने लोकनिक प्रतिक्रिया, अपने लोकनिक सुझाव हमरा सभक सम्बल बनैत रहल अछि, तैँ निश्चित रूपसँ अपन सुझाव अपन प्रतिक्रिया पठबैत रही। पत्र द्वारा जो पठबय चाहै छी एहि लेल हमर सभक पता अछि कार्यक्रम सिंगरहार द्वारा केन्द्र निदेशक आकाशवाणी दरभंगा, पिनकोड अछि 8460004। अपने लोकनि आकाशवाणी दरभंगा @gmail.com पर सेहो ईमेल द्वारा अपन प्रतिक्रिया आकि सुझाव पठा सकै छी। आब शब्द विमर्श। एकटा शब्द अछि थथमारब, स्नेहपूर्वक पोसब पालब, एहि लेल हमरा लोकनि थथमारब शब्द केर प्रयोग करै छी। ठेही ठेही भेल थाकनि शांति, एहि लेल ठेही शब्दक प्रयोग होइत अछि। एकटा शब्द अछि ढकढोल, बेढब पैघ लेल ढकढोल शब्द केर प्रयोग करै छी। पछाइत पछाइत भेल बादमे। आ एकटा शब्द अछि पजारब, मने प्रज्वलित करब, आ जखन पजरल आगि मंद होइत अछि ओहि लेल कहै छी पझायब। तऽ आब देखू ने, कार्यक्रम सिंगरहारसँ विदा लेबाक बेर भऽ गेल अछि, तऽ हमरा यानी राकेश चंद्र नंदनकेँ चलबाक आज्ञा देल जाउ। नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे मैथिली कार्यक्रम सिंगर हार, प्रसारण आकाशवाणी दरभंगा से किया गया। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ क्षणों में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया, कहा भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर, गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंचा और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमण में 9,270 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री इस समय एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं।
2: मैं देशवासियों को आर्थिक क्षेत्र की इस नई ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं देश को फिर आश्वस्त करता हूं कि देश दुनिया भर में चल रहे इन संकटों का सामना करते हुए

ऐसे ही दृढ़ संकल्प के साथ तेज गति से आगे बढ़ता ही रहेगा, ये मेरी देशवासियों को गारंटी है। साथियों,

0: विकास का मॉडल सस्टेनेबल हो।
1: गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
0: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है, इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात में है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। ये भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं।
0: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है, ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है, उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने सदैव अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकारकर विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने लोगों से विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए एकजुट होकर काम करने की अपील की। सूरत के विकास का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सूरत एक ग्रीन सिटी के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
0: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामोरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
2: हमने तय किया है कि बीएसएफ जहां जहां है, एसएसबी जहां जहां है, वहां पर स्मार्ट बॉर्डर का निर्माण करना और एक चतुष्कोणीय सुरक्षा रणनीति के तहत स्थानीय प्रशासन को साथ में लेते हुए, टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए सीमाओं को एकदम अभेद बनाना। और इस स्मार्ट बॉर्डर का कंसेप्ट फाइनलाइजेशन के स्टेज पर है। इसका पायलट प्रोजेक्ट आने वाले साल में हम निश्चित रूप से इंट्रोड्यूस कर देंगे। एक साथ देश की अलग अलग सीमाओं पर 7 या 8 जगह पे पायलट प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे।
1: गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बाड़ लगाने का काम प्राथमिकता पर किया जा रहा है। इसी कड़ी में त्रिपुरा में 119 किलोमीटर लंबी सीमा पर नई डिजाइन की बाड़ लगाने को मंजूरी दी गई है। इसका पहला चरण शुरू हो चुका है। कार्यक्रम में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक प्रवीण कुमार तथा कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार रहेगी। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में

0: 25-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार रहेगी। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
1: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में 3.2% की वृद्धि दर देखी गई है, जो मुख्य रूप से कृषि और मत्स्य पालन क्षेत्रों के प्रदर्शन से प्रेरित है। वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 87,77,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद सरकार ने आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती, सुधारों की सफलता और 140 करोड़ भारतीयों के अथक परिश्रम को दर्शाती है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार लोगों के जीवन को सुगम बनाने, व्यापार में सुगमता और युवाओं के लिए अवसरों को बढ़ाने के हर संभव प्रयास करेगी। मई माह में भारत की यात्री वाहन बाजार में लगभग 4,40,000 वाहनों की बिक्री हुई है। ये पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में ऑटोमोबाइल सेक्टर के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये वृद्धि मजबूत उपभोक्ता मांग को दर्शाती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि यह खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। श्री पुरी ने कहा कि प्राकृतिक गैस का भंडार 355 मीटर की गहराई पर मिला है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली के मालवीय नगर में हुई आग की घटना में 13 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि मृतकों में एक व्यक्ति मोजाम्बिक, 4 नाइजीरिया, 1 लाइबेरिया, 3 किर्गिस्तान, 1 उज्बेकिस्तान, 1 बांग्लादेश, 1 कांगो और 1 इराक का नागरिक था। भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच हुई बातचीत सकारात्मक रही।
2: बातचीत करने वाली टीम यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के कार्यालय से आई थी। इसमें अमेरिकी पक्ष के मुख्य वार्ताकार भी शामिल थे। ये बातचीत इस महीने की 1 और 4 तारीख के बीच हुई। ये चर्चा सकारात्मक और रचनात्मक रही है और दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।
0: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है।
2: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपने इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं। पार्टनरशिप दैट वी हैव विद
0: नेपाल। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। भारत

0: मान में अपनी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र विकसित कर रहा है। इसमें रूस से प्राप्त S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सुगियानो रविवार को नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से आशीष तानीपूर्ति ने 4 गोल किए, शाहरुख अली ने 1 गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से हार गई थी। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर में गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंच गया है। तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। विभाग के अनुसार अरब सागर, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के अधिकतर हिस्सों के साथ साथ गोवा, तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंचने की संभावना है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन के दौरान बंगाल की खाड़ी के कई क्षेत्रों के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। कहा, भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches multiple development projects in Gujarat and Daman. Prime Minister emphasizes on self-reliance in energy sector, says India actively leading towards green future by balancing economic growth and ecological preservation. Country's GDP growth rate estimated at 7.7% in 2025-26 following strong momentum by the economy. Home Minister Amit Shah says smart border project in its final execution stage, pilot rollout to be introduced next year at sensitive border locations. Southwest monsoon advances further into more parts of Arabian Sea, Goa and Karnataka. And in hockey, India enter final of men's under 18 Asia Cup, beating Pakistan 5-3 in semi-final at Kaka Migahara in Japan. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has emphasized self-reliance in the energy sector, stating that the world is moving towards a green future and India is actively leading the way by balancing economic growth with ecological preservation. Addressing a large gathering after launching various infrastructure projects worth over 18,000 crore rupees in Surat today, the Prime Minister pointed out that out of India's total renewable energy capacity of 250 gigawatts, Gujarat alone contributes 50 gigawatts, accounting for a crucial 1/5 of the nation's green energy share. He said the current global energy crisis highlights the critical importance of self-reliance in energy. He said the world is gradually progressing towards a greener future and India is actively contributing to this transition.
2: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है, ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है।

आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सूरत और दमन में बहुत से तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तवानाई के शोबे में खुद किफालत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि इक्तसादी पेशरफ्त को मुतवाजिन करके नीज माहौलियाती तहफ्फुज़ के जरिए भारत सरसब्ज मुस्तकबिल की जानिब फाल तौर पर क़यादत कर रहा है। मईशत में मजबूत रुझान के नतीजे में साल 2025-26 में मुल्क की GDP की पेशरफ्त 7.7% रखी गई है। वज़ीर दाखला अमित शाह ने कहा है कि स्मार्ट सरहदी प्रोजेक्ट अमलावरी के अपने हतमी मरहले में है। हिसास सरहदी मकाम पर अगले साल पायलट शुरुआत मुतारिफ की जाएगी। जुनूब मगरबी मानसून बहिरा अरब, गोवा और कर्नाटक के मजीद हिस्सों में पेशरफ्त कर रहा है। और हॉकी में भारत जापान के काका मिगारा के मकाम पर सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 5-3 से शिकस्त देकर मर्दों के अंडर 18 एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यह कहते हुए तवानाई के शोबे में खुद किफालत पर जोर दिया है कि दुनिया एक माहौलियात के लिए साजगार मुस्तकबिल की जानिब पेशरफ्त कर रही है और भारत इक्तसादी पेशरफ्त को मुतवाजिन करके नीज माहौलियाती तहफ्फुज़ के जरिए इसकी फाल तौर पर क़यादत कर रहा है। गुजरात के शहर सूरत में आज 18,800 करोड़ रुपये से ज़्यादा लागत के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह किया कि भारत की 250 गीगावाट की मजमूई काबिल क़द्र तवानाई में से अकेला गुजरात 50 मेगावाट फराहम करता है, जो कि मुल्क की सब्ज़ तवानाई का 5वां हिस्सा होता है। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि रियासत शमसी तवानाई से माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन

0: और ग्रीन अमोनिया में तब्दीली में एक वसी रोल अदा करना चाहती है जो तवानाई में खुद किफालत हासिल करने के लिए लाजमी है। इस मौके पर अवामी जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि ये इकदाम पेशरफ की क़्यादत करेंगे और आवाम के लिए ज़िंदगी की आसानी को बेहतर बनाएंगे। वज़ीर आज़म ने खुशी जाहिर की कि माहौलियात के दिन के मौके पर वो सूरत में हैं जो कि मुल्क के साफ तरीन शहरों में से एक है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मौजूदा तवानाई का आलमी बहरान तवानाई में खुद किफालत की कलीदी अहमियत को उजागर करता है।
1: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
0: भारत की मईशत ने साल 2025-26 के दौरान तेजी का रुझान बरकरार रखा है। साल 2024-25 की 7.1% असल जीडीपी के मुकाबले साल 2025-26 के दौरान असल जीडीपी की तरक्की का तखमीना 7.7% है। शुमारियात और प्रोग्राम की हिफाजत की वजारत ने आज माली साल 2025-26 के सालाना अंदाजे के आर्जी आदाद शुमार और इस साल जनवरी से मार्च की सहमाही के अंदाजे जारी किए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये भारतीय मईशत के लगातार इस्तेहकाम, इस्लाहात की कामयाबी और 140 करोड़ भारतीयों की सख्त मेहनत की अक्कासी करते हैं।
2: सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि हुकूमत जिंदगी गुजारने और कारोबार करने में आसानी पैदा करने और नौजवानों के लिए मौके में इजाफा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि स्मार्ट सरहदी प्रोजेक्ट अमलावरी के अपने हतमी मरहले में है। इसमें सरहदों के साथ 7 से 8 हिसास मकामात पर अगले साल पायलट शुरुआत करने की मंसूबाबंदी शामिल है। इन मकामात की हिफाजत बीएसएफ और एसएसबी करती हैं। त्रिपुरा में आज लंकामूरा सरहदी चौकी पर प्रहरी सम्मेलन से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि ये प्रोजेक्ट एडवांस टेक्नोलॉजी, नौजवानों और मुकामी शहरी इंतजामिया को नाकाबिले दरअंदाजी सरहदी बंदोबस्त का एक निज़ाम वजह करने के जिमन में मरबूत करेगा।
3: हमने तय किया है कि बीएसएफ जहां जहां है, एसएसबी जहां जहां है, वहां पर स्मार्ट बॉर्डर का निर्माण करना और एक चतुष्कोणीय सुरक्षा रणनीति के तहत स्थानीय प्रशासन को साथ में लेते हुए, टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए सीमाओं को एकदम अभेद बनाना और एक स्मार्ट बॉर्डर का कंसेप्ट फाइनलाइजेशन के स्टेज पर है। इसका पायलट प्रोजेक्ट आने वाले साल में हम निश्चित रूप से इंट्रोड्यूस कर देंगे। एक साथ देश की अलग अलग सीमाओं पर 7 या 8 जगह पे पायलट प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे।
2: जनाब शाह ने जोर दिया कि हुकूमत त्रिपुरा, मगरबी बंगाल और बिहार के हिस्सा सरहदी हिस्सों में दरअंदाजी या सरहदी रखना के बगैर किसी भी तरह की आबादियाती मुंतकली की इजाजत नहीं देगी। वजीर दाखिला ने मनुष्यात की स्मगलिंग, इंसानों की नाजायज तिजारत और मवेशियों की स्मगलिंग जैसे खतरात को जड़ से खत्म करने की जरूरत पर भी जोर दिया। जनाब शाह ने बड़े पैमाने पर शजरकारी की एक मुहिम में भी शिरकत की और अगार का एक पौधा लगाया। नेपाल के खारजी उमूर के वजीर शिशिर खनाल वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर की दावत पर भारत के 3 रोजा दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंचे। तीसरे पहर आज नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि डॉक्टर जयशंकर कल नेपाल के अपने हम मनसब के साथ बातचीत करेंगे। उन्होंने उजागर किया कि भारत का नेपाल के साथ एक जामे एजेंडा है जिसमें तरक्याती ताउन से लेकर तिजारत और सरमायाकारी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल के साथ कसीर जहती शराकतदारी को मुस्तहकम करना चाहता है। वजारत खारजा ने आज इत्तला दी है कि दिल्ली के मालविया नगर इलाके में हाल ही में पेश आए आग लगने के हादसे में जान गंवाने वालों में गैर मुल्की शहरियों की तादाद 13 है। नई दिल्ली में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि महलुकीन में 4 अफराद का ताल्लुक नाइजीरिया से और 3 का ताल्लुक किर्गिस्तान से था, जबकि मोजम्बिक, लाइबेरिया, उज्बेकिस्तान, बांग्लादेश, जमहूरिया कांगो और इराक के 1-1 शहरी की मौत हुई है। भारत रूस ताल्लुकात पर बोलते हुए तर्जुमान ने कहा कि भारत और रूस के दिफाई ताल्लुकात मजबूत हैं जो बरसों से चले आ रहे हैं। भारत और अमेरिका के दरमियान तिजारती समझौते पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि अमेरिका के आला मुजाकिरातकार अपनी टीम के साथ 1 जून से 4 जून तक भारत में थे। उन्होंने कहा कि बातचीत मुस्बत और तामीरी

बैयत की रही। एक दीगर सवाल के जवाब में जनाब जायसवाल ने कहा कि इस साल अब तक 1076 भारतीय शहरियों को अमरीका से मुल्क बदर किया गया है, जबकि यही तादाद पिछले साल 3567 थी। भारत में गैर मुल्की शहरियों के बारे में बात करते हुए तर्जुमान ने कहा कि मुल्क में गैर कानूनी तौर पर रह रहे लोगों से निमटने के बारे में कवानीन मौजूद हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने नई दिल्ली को रूस के पांचवीं नस्ल के स्टेल्थ तैयारे सुखोई SU-57 की पेशकश की है और इन तैयारों को भारत में मुश्तरका तौर पर तैयार करने की तजवीज रखी है। ये पेशकश दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत स्ट्रेटेजिक साझेदारी की अक्कासी करती है। सेंट पीटर्सबर्ग इक्तसादी फोरम के तनाजुर में कल रात सरकर्दा न्यूज एजेंसियों के सरबराहान से बातचीत करते हुए जनाब पुतिन ने कहा कि मॉस्को अब भी SU-57 तैयारा प्रोग्राम में नई दिल्ली की शिरकत का ख्वाहिशमंद है। जनाब पुतिन ने इंटीग्रेटेड फिजाई दिफाई निज़ाम और उससे मुतालिक हार्डवेयर समेत दीगर अहम दिफाई प्लेटफॉर्म्स पर भारत के साथ इश्तराक करने की रूस की तैयारी का इजहार किया है। भारत रूसी साख्त के S-400 मिसाइल निज़ाम के मुमकिन कलीदी पुर्जे के साथ अपने दिफाई निज़ाम सुदर्शन चक्र को स्वदेशी तर्ज पर तैयार कर रहा है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने आज पाकिस्तान के साथ सख्त एहतजाज दर्ज कराया है और पाकिस्तान के उन मंसूबों पर शदीद एतराज किया है जिसके तहत वो पाकिस्तान की जानिब से गैर कानूनी और जबरन कब्जा किए हुए भारतीय इलाके नाम नहाद गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात कराने का मंसूबा रखता है। ये इंतखाबात इस माह की 7 तारीख को होने हैं। भारत ने अपने वाज़ेह मौकफ को दोहराया है कि नाम नहाद गिलगित बल्तिस्तान समेत जम्मू कश्मीर और लद्दाख का मुकम्मल मरकजी खित्ता भारत का अटूट और नाकाबिल तस्खीर हिस्सा है, क्योंकि साल 1947 में जम्मू कश्मीर का भारत में मुकम्मल कानूनी और नाकाबिल वापसी इल्हाक हुआ था। उमूर खारजा की वजारत ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की इस तरह की कोशिशें उन बुनियादी मसाइल को नहीं छिपा सकती जिनमें इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ, सियासी जबर, माशी इस्तेसाल और पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाले इलाकों में आज़ादी से महरूमी शामिल है। नई दिल्ली ने पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाले इलाकों में किसी भी बुनियादी या इंतजामी तब्दीली की कोशिश को वाजह तौर पर मुस्तरद कर दिया है। भारत ने जोर देकर कहा है कि इस तरह के इकदाम उन हकायक को छुपा नहीं सकते कि पाकिस्तान अब भी गैर कानूनी तौर पर भारतीय इलाकों पर काबिज है जिन्हें खाली करना होगा। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली सेक्रेटेरिएट में एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। दिल्ली के वजीर आशीष सूद, दिल्ली पुलिस, दिल्ली फायर सर्विसेज, दिल्ली की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी और दीगर महकमों के सीनियर अफसरान मीटिंग में मौजूद थे। मीटिंग के बारे में मीडिया को तफसीलात बताते हुए जनाब सूद ने कहा कि वजीर आला ने गैर कानूनी तामीरात, फायर सेफ्टी के उसूलों के खिलाफ वर्जियों और इंतजामी लापरवाही से पेश आए हालिया अलमनाक हादसे पर तशवीश का इजहार किया है। वजीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत ने आफात से निमटने से मुतालिक एक्ट 2005 की मुख्तलिफ दफात को मौसर तरीके से नाफिज करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि अगर रिहायशी या तिजारती इमारतों के मालिकान इस कानून के तहत कसूरवार पाए जाते हैं तो उन्हें जुर्मानों के साथ साथ कैद की सजा का भी सामना करना पड़ सकता है। जनाब सूद ने कहा कि मुस्तकबिल में DMs को अपने ज़िले में काम करने वाले किसी भी महकमे के अफसरान की जवाबदेही तय करने का इख्तियार हासिल होगा। वो ज़रूरत पड़ने पर महकमा जाती कार्रवाई की सिफारिश, FIR दर्ज करने और वजह बताओ नोटिसें जारी कर सकेंगे। गुवाहाटी में हलफबरदारी की एक तकरीब में 12 नए काबिनी वुजरा को शामिल करते हुए आज आसाम की वुजरा काउंसिल में तौसी की गई। गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने नए वुजरा को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। आसाम की वुजरा की काउंसिल की तादाद अब बढ़कर 17 हो गई है। आइन के तहत आसाम में वजीर आला समेत ज्यादा से ज्यादा 19 वुजरा हो सकते हैं। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने आज ऐलान किया कि अंडमान जजायर के मशरक़ी साहिल से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम 3 के मकाम पर कुदरती गैस दरियाफ्त हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब पुरी ने कहा कि ये दरियाफ्त बुहरे अंडमान के तवानाई के वसी इम्कानात को वाजह करती है और इस तास में जारी जस्तजू की मुहिम में एक और कामयाबी को नुमाया करती है। पद्म अवार्ड्स 2027 के लिए नामजदगी का अमल अगले माह की 31 तारीख तक जारी रहेगा। वजारत दाखिला ने कहा कि पद्म अवार्ड्स के लिए नामजदगी और सिफारिशात का अमल जो 15 मार्च को शुरू हुआ था सिर्फ राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन तरीके से मौसूल नामजदगियों के जरिए जारी रहेगा।

0: श्रोताओं, आइए सुनते हैं साहित्यिक पत्रिका पर आधारित कार्यक्रम शब्द शिल्प। स्वर सहयोग सुप्रभात राय और प्रस्तुतकर्ता अतुल कुमार। प्रदर्शन आकाशवाणी भागलपुर।
1: श्रोता मित्रों नमस्कार, उपस्थित हैं हम शब्द शिल्प के इस अंग के साथ। श्रोताओं, वैसे तो साहित्य से शायद ही कोई विषय अनछुआ हो, हर विषय और मौसम पे साहित्यिक रचनाएं मिलती है। साथ ही ग्रीष्म ऋतु और साहित्य का गहरा और परस्पर संबंध रहा है। भारतीय साहित्य में जहां एक ओर गर्मी की प्रचंडता, तपन और लू का चित्रण मानवीय संघर्ष और प्रकृति की कठोरता को दर्शाता है, वहीं दूसरी ओर ये प्रेम, उल्लास और फलों के राजा आम के मौसम के रूप में भी उभरती है। कुछ साहित्यकारों ने दोपहर को एकांत और आत्ममंथन के प्रतीक के रूप में देखा है, तो कहीं गर्म हवा को साहित्य में तपस्या और जीवन की कठोर परीक्षा के रूप में दर्शाया गया है। पश्चिमी साहित्य में ग्रीष्म ऋतु को अक्सर युवावस्था, स्वतंत्रता और प्रेम का प्रतीक माना गया है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आइए सुनते हैं एक वार्ता, ग्रीष्म ऋतु का साहित्यिक चित्रण। वार्ताकार हैं डॉक्टर इति कुमारी।
2: भारत ऋतुओं का देश है। यहाँ प्रकृति समय समय पर अपने विविध रूपों से मानव जीवन को प्रभावित करती रही है। भारतीय संस्कृति और साहित्य में ऋतुओं का विशेष स्थान है, क्योंकि मनुष्य और प्रकृति का संबंध अत्यंत घनिष्ठ माना गया है। इन ऋतुओं में ग्रीष्म ऋतु का अपना विशिष्ट महत्व है। सामान्यतः ग्रीष्म को केवल तपन, लू और कठिनाई का प्रतीक समझा जाता है, परंतु साहित्यिक दृष्टि से यह ऋतु

केवल गर्मी का अनुभव नहीं कराती, बल्कि जीवन के संघर्ष, तपस्या, प्रतीक्षा, प्रेम, विरह और प्रकृति के सौंदर्य को भी अभिव्यक्त करती है। भारतीय साहित्य की प्राचीन परंपरा में ऋतु वर्णन का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। संस्कृत साहित्य में महाकवि कालिदास ने अपनी प्रसिद्ध कृति ऋतु संहार में ग्रीष्म ऋतु का अत्यंत सजीव चित्रण किया है। उन्होंने सूर्य की प्रखर किरणों, सूखी धरती, तप्त वायु तथा जल के महत्व को बड़ी कलात्मकता से प्रस्तुत किया है। कालिदास के अनुसार ग्रीष्म केवल कष्टदायक नहीं बल्कि मनुष्य को धैर्य और सहनशीलता का पाठ पढ़ाने वाली ऋतु है। इस ऋतु में प्रकृति का कठोर रूप दिखाई देता है, किंतु यह कठोरता आने वाले मनमोहक वर्षा में फैलता हुआ मोर पंख एवं हरियाली को भी दर्शाता है। इस मौसम को विरह और तड़प का प्रतीक माना गया है। दोपहर की सूनी राहें, गर्म हवाएं, लू और सूखते हुए जल स्रोत प्रेमी प्रेमिकाओं के मन की व्याकुलता और विरह की अगन को दर्शाते हैं। रीतिकाल के कवि बिहारी ने ग्रीष्म की दोपहरी का वर्णन करते हुए लिखा है, देखी दोपहरी जेठ की छाहे चाहती छां, अर्थात जेठ के महीने की दोपहर इतनी भयंकर है कि छाया भी अपने लिए छाया ढूंढने लगती है, वो भी डरकर जंगलों या घरों के भीतर छिप गई है। ग्रीष्म को केवल विनाश या कष्ट का प्रतीक नहीं माना गया है, बल्कि इसे सृजन के अग्रदूत के रूप में देखा जाता है। जब तक ग्रीष्म की तपन चरम पर नहीं होगी, तब तक समुद्र का जल वाष्प बनकर बादलों का रूप नहीं लेगा। इसलिए ग्रीष्म की तपस्या ही वर्षा ऋतु के सुखद आगमन का मार्ग प्रशस्त करती है। यह मौसम वर्षा ऋतु के आनंद की भूमिका भी तैयार करती है। हिंदी साहित्य में भी ग्रीष्म ऋतु का उल्लेख अनेक रूपों में मिलता है। भक्ति काल के कवियों ने इसे आध्यात्मिक प्रतीकों के माध्यम से प्रस्तुत किया। कबीर ने संसार की तपन और आत्मा की प्यास को ग्रीष्म की गर्मी से जोड़ा है। वहीं सूरदास और तुलसीदास ने प्रकृति के माध्यम से मानव भावनाओं को व्यक्त किया है। रीति काल के कवियों ने ग्रीष्म ऋतु में विरहिणी नायिकाओं की व्यथा का मार्मिक चित्रण किया है। तपती धरती और सूखे वातावरण के बीच प्रेम वियोग की भावना और भी गहरी हो जाती है। आधुनिक हिंदी साहित्य में भी ग्रीष्म ऋतु अनेक सामाजिक और मानवीय संदर्भों के साथ सामने आती है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लोक जीवन और सादगी का चित्रण बहुत ही सटीकता के साथ किया है। हिंदी साहित्य के छायावादी और प्रगतिवादी के स्तंभ कहे जाने वाले कवियों ने ग्रीष्म ऋतु के बहाने ग्रामीण जीवन और मजदूरों के संघर्ष को रेखांकित किया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता वह तोड़ती पत्थर में इलाहाबाद की पथ पर दोपहर की कड़कती धूप में काम करती महिलाओं का वर्णन ग्रीष्म की क्रूर यथार्थ को दिखाता है। सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा जैसे कवियों ने ग्रीष्म के माध्यम से जीवन के संघर्ष और संवेदनाओं को अभिव्यक्त किया है। निराला की कविताओं में ग्रीष्म की कठोरता के बीच श्रमिक जीवन की पीड़ा दिखाई देती है। खेतों में काम करते किसान, धूप में तपते मजदूर और सूखी धरती की करुणा साहित्य को यथार्थ से जोड़ती है। इस प्रकार ग्रीष्म केवल प्राकृतिक शत्रु न रहकर सामाजिक यथार्थ का प्रतीक बन जाती है। भारतीय लोक साहित्य में ग्रीष्म ऋतु का विशेष महत्व है। गांव में पके हुए आम की मिठास, कोयल की कूक, कुओं और तालाबों का जीवन तथा पेड़ों की छाया से जुड़ी अनेक लोक कथाएं और लोकगीत प्रचलित हैं। उत्तर भारत के लोकगीतों में गर्मी के दिनों में मायके जाने की इच्छा व्यक्त करती स्त्रियों की भावनाएं मिलती हैं। आम, तरबूज, खरबूजा और बेल जैसे फलों का वर्णन लोक जीवन को आनंदमय बनाता है। इस प्रकार ग्रीष्म ऋतु भारतीय जनजीवन और लोक संस्कृति की आत्मा से जुड़ी हुई है। ग्रीष्म ऋतु भारतीय दर्शन और आध्यात्म में भी तपस्या का प्रतीक मानी गई है। ऋषि मुनि कठिन गर्मी में तप करके आत्मबल को प्राप्त करते हैं। साहित्य में यह तपस्या आत्मसंयम और साधना का

0: रूप लेती है। ग्रीष्म की जलती धूप मनुष्य को यह संदेश देती है कि कठिनाइयों के बाद ही जीवन में शीतलता और सुख प्राप्त होता है। इसलिए साहित्यकारों ने ग्रीष्म को संघर्ष और आशा के प्रतीक के रूप में देखा है। प्रकृति चित्रण की दृष्टि से भी ग्रीष्म ऋतु अत्यंत प्रभावशाली है। इस ऋतु में पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं, नदियां सिकुड़ जाती हैं और धरती तपने लगती हैं, किंतु इनके आगमन से पहले पलाश के लाल फूल, अमलतास की सुनहरी छटा और आम्र मंजरी प्रकृति को अनोखा सौंदर्य प्रदान करती है। कवियों ने इन दृश्यों को अपनी रचनाओं में बड़ी सुंदरता से चित्रित किया है। कोयल की मधुर आवाज और आम के पेड़ों की हरियाली ग्रीष्म की कठोरता के बीच सौंदर्य और मधुरता का अनुभव कराती है। ग्रीष्म ऋतु का एक महत्वपूर्ण साहित्यिक पक्ष विरह और प्रतीक्षा का भी है। भारतीय काव्य परंपरा में विरहनी नायिका की व्यथा को ग्रीष्म के माध्यम से अत्यंत मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। तपती हवाएं, सूनी राहें और सूखे वृक्ष मानो उसके मन की पीड़ा को व्यक्त करते हैं। इस प्रकार ग्रीष्म केवल बाहरी ताप नहीं बल्कि हृदय की संवेदनाओं का भी प्रतीक बन जाती है। आज के समय में ग्रीष्म ऋतु का साहित्यिक महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संकट ने प्रकृति के संतुलन को प्रभावित किया है। आधुनिक साहित्यकार ग्रीष्म की बढ़ती तीव्रता के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहे हैं। सूखती नदियां, घटते जल स्रोत और बढ़ती गर्मी मानव जीवन के लिए चुनौती बनती जा रही है। साहित्य इन समस्याओं के प्रति समाज को जागरूक करने का कार्य कर रहा है। कहा जाता है कि भारतीय साहित्य में ग्रीष्म ऋतु केवल एक मौसम नहीं बल्कि जीवन के अनेक अनुभवों और भावनाओं का प्रतीक है। यह संघर्ष, तपस्या, प्रेम, विरह, सौंदर्य और आशा का संदेश देती है। प्राचीन संस्कृत साहित्य से लेकर आधुनिक हिंदी साहित्य तक ग्रीष्म ऋतु ने कवियों और लेखकों को गहन प्रेरणा प्रदान की है। भारतीय साहित्य में ग्रीष्म का चित्रण यह सिद्ध करता है कि प्रकृति और मानव जीवन एक दूसरे के पूरक हैं। सूरज की किरणों में जीवन का संदेश छिपा है, संघर्ष की गर्मी में ही सफलता का रास्ता बना है, तपती राहों में भी मंजिल मिल जाती है, ग्रीष्म की हर शाम सुकून दे जाती है। इस प्रकार ग्रीष्म ऋतु का साहित्यिक दृष्टिकोण से चित्रण एक महत्वपूर्ण संदर्भ है जो सभी मौसम में इसे विशिष्ट संज्ञा देती है।
1: श्रोताओं, ग्रीष्म को केवल विनाश या कष्ट का प्रतीक नहीं माना गया बल्कि इसे सृजन के अग्रदूत के रूप में देखा जाता है। अभी हम डॉक्टर इति कुमारी से वार्ता ग्रीष्म ऋतु का साहित्यिक चित्रण सुन रहे थे। शब्द शिल्प के इस अंक में अब आइए सुनते हैं एक कहानी, गर्मी जून में नहीं जुनून में है। रचनाकार हैं धीरेंद्र छथरवाला।
2: गर्मी न जून में है न ऊन में है, गर्मी जुनून में है। अगर मनुष्य चाहे तो वीरान वन में भी हरी क्रांति ला सकता है और मन चाहे मंजिल भी पा सकता है। मनोहर एक पढ़ा लिखा इंसान था, सिर्फ वक्त का मारा था। विलक्षण प्रतिभा, तीक्ष्ण मानसिकता और अदम साहसी भी था। असंख्य प्रतियोगिता में वह प्रथम आता था, मगर उसके पास न मोटी रकम और न ऊंची पैरवी। यही कारण था कि वह मंजिल नहीं पा सका। बचपन में ही विवाह हो जाने के वजह से पारिवारिक समस्या भी उसके सामने सुरसा की तरह मुबाए हुए था। अंततः वह हार नहीं मानने वाला था। बाध्य होकर वह किसी तरह एक रिक्शा का इंतजाम किया और वह रिक्शा चलाने का फैसला लिया। इसी बीच मनोहर दो बेटे का पिता भी बन चुका था। उसकी पढ़ाई लिखाई, खान पान की व्यवस्था हर वक्त मनोहर के मानस पटल यानी उसके दिमाग में दौड़ता रहता था। उसके मन में यह था कि मैं तो पढ़ लिखकर रिक्शा चलाने लगा, मगर अपने बेटे को मैं पढ़ा लिखा कर IAS बनाऊंगा। इसके लिए अगर मुझे खून भी बेचना पड़ेगा या किडनी, मैं तैयार हूँ। इसी संकल्प के साथ मनोहर

अपने आप को मशीन बना दिया था। भयंकर शीत, झुलसा देने वाला ग्रीष्म, काम सखा वसंत और तीक्ष्ण स्वरों वाली वर्षा का परवाह किए बगैर वह रात दिन रिक्शा चलाता रहता था। एक दिन मनोहर का दोस्त अचानक देखा कि मनोहर रिक्शा पर सवारी बैठा कर जा रहा था। वह निर्निमेष मनोहर को देखता रहा तब तक जब तक मनोहर उसके आँख से ओझल न हुआ और वह सोचने लगा कि पढ़ाई लिखाई में मनोहर विलक्षण था। हर वर्ष अपने वर्ग में वह प्रथम आता था, मगर आज वह रिक्शा क्यों चला रहा है? जरूर कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं। अब मैं मनोहर से बिना मिले नहीं जाऊंगा। वह वहीं मनोहर के आने का इंतजार करने लगा। लगभग 2 घंटे के बाद मनोहर उस कड़ी धूप में पसीने से तरबतर होकर आया और एक गाछ की छांव में रिक्शा को खड़ा कर पसीना पूछने लगा। इसी बीच वह दोस्त शेखर जो इंतजार कर रहा था वह धीरे धीरे मनोहर के करीब आया। मनोहर शेखर को देखकर दंग रह गया कि अरे शेखर, कहाँ से, क्या कर रहे हो, बाल बच्चा कैसे हैं? दोनों दोस्त विगत 10 वर्षों के बाद मिला था। इतना सुनते ही शेखर मनोहर के गले से लिपट गया और रोने लगा। शेखर के कंधों पर मनोहर के आँखों से निकला वह गर्म आंसू शेखर के कंधों को झकझोर कर रख दिया। इसी बीच शेखर पूछ बैठा कि मनोहर, वह जो तुम्हारा बेटा नमन था वह कितना बड़ा हुआ और वह किस क्लास में पढ़ रहा है? मनोहर ने कहा, देखो शेखर, वह बहुत तेज है पढ़ने में। वह वर्ग 4 से लेकर मैट्रिक तक वह हमेशा प्रथम रहा, यहाँ तक कि वह मैट्रिक की परीक्षा में अपने स्कूल में टॉप आया। क्या करें यार, उसकी बलवती इच्छा है कि मैं दिल्ली में पढ़ूँगा। अब उसका नाम दिल्ली में लिखवाना ही पड़ेगा और लिखवा ही दूंगा, चाहे इसके लिए जो करना पड़े। वाह भाई मनोहर, तुमको इस भीषण गर्मी का पता है कि अभी यहाँ का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस है, फिर भी तुम रिक्शा चला रहे हो? सुनो शेखर, गर्मी ना ऊन में है, ना गर्मी जून में है, गर्मी जुनून में है। मेरा तो संकल्प है कि जब मेरा बेटा नमन बीए में भी अपने कॉलेज में फर्स्ट यानी प्रथम आया, उसकी बलवती इच्छा है कि मैं यूपीएससी की पढ़ाई करूँगा। उसकी पढ़ाई के लिए तो यह 45 डिग्री धूप क्या है, 100 भी हो तो मनोहर का रिक्शा न रुका है न रुकेगा, तब तक जब तक मेरा बेटा नमन आईएएस नहीं बन जाता है तब तक मेरा यह क्रम चलता ही रहेगा। इतना सुनते ही शेखर बोल बैठा कि नमन दिल्ली में कहाँ रहता है, बताओ, मैं उसे समय समय पर मिलूंगा। एक दिन अचानक सड़क के किनारे खड़ा एक लड़का को देखा। उसका चेहरा साफ साफ मनोहर का दूसरा चेहरा दिखा। बिना सोचे समझे बोल पड़ा, तुम नमन हो? जी हाँ, मैं नमन हूँ और मनोहर बाबू का बड़ा बेटा हूँ। सर, आपकी तारीफ क्या है, यानी आपका परिचय? तो आज से पहले कहीं आपको देखा भी नहीं? हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, हम और मनोहर दोनों एक साथ पढ़ता था। मेहनत से पढ़ो, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो यह मेरा मोबाइल नंबर है, कॉल करना, तुम्हारे साथ हमेशा मैं तैयार हूँ। इतना कहकर वह जाने लगा तो नमन नमस्ते कहकर विदा किया और चलते बना। एक दिन शेखर अपने मित्र के घर उसकी बेटी की विवाह में शरीक होने के लिए जाता है। अचानक वहाँ मनोहर से मिलता है। मनोहर को भी उस विवाह में सम्मिलित होने का निमंत्रण था। दोनों मित्र में बातचीत के क्रम में मनोहर शेखर को कहता है कि तुम कभी कचहरी कोर्ट गए हो? वहाँ एक एक झोपड़ी में इस भयंकर धूप में वकील साहब बैठे रहते हैं और उनकी नज़र बाहर आने वाले क्लाइंट पर है। धूप की चिंता नहीं, क्योंकि

0: इतने पैसे पास नहीं हैं कि माँ की दवाई लेना है, घर के लिए साग सब्जी लेना है। बच्चे कोर्ट आते वक्त तरबूजा और समोसा लाने को कहा, वह कैसे होगा? इससे तो मैं ठीक हूँ जो इस भयंकर ग्रीष्म की परवाह किए बिना पढ़ाई से लेकर घर खर्च भी चला देता हूँ, इंतजार नहीं करता। एक दिन एक बीमार व्यक्ति को रिक्शा पर बैठाकर मनोहर अस्पताल लेकर जाता है। देखा कि कुछ लोग आपस में चर्चा कर रहा था कि इसी शहर का एक लड़का नमन नाम का है, जो IAS की परीक्षा में ऑल इंडिया में दूसरा स्थान लाया है, इस शहर का मान बढ़ाया है, इस शहर का नाम रोशन किया है। इतना में एक आदमी बोला, वह जो रिक्शा वाला खड़ा होकर पसीना पोंछ रहा है, नमन उसी का बेटा है। वहाँ खड़े लोगों ने मनोहर को नमस्ते करते हुए बोला, नमन आपका बेटा है? जी हाँ, क्या बात है? कृपया बताएं कि आपका लड़का क्या कर रहा है? आपका नाम मनोहर रिक्शा वाला है? आप मिठाई खाएं, क्योंकि आपका बेटा जो है ऑल इंडिया में IAS में दूसरा स्थान लाकर इस शहर का नाम रोशन किया है, आपको प्रणाम। अब मनोहर का खुशी का ठिकाना न रहा, वह फूले न समा रहा था। वह दौड़ता हुआ घर गया और अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, चलो सामने मंदिर में प्रणाम करने। क्या बात है? अरे नमन IAS की परीक्षा में दूसरा स्थान पूरे इंडिया में लाया है, वह तो अब जिला अधिकारी बन गया और हम सबका दुख दूर हो गया। इतने में नमन घर आता है, आते ही पिता से लिपट कर रोने लगता है। पिता सीने से लगाता है और नमन को बधाई देने बालों का तांता लगा रहता है। इस प्रकार मनोहर ने यह सिद्ध करके समाज को, दोस्त को, सगे संबंधी को बता दिया कि गर्मी न ऊन में है न जून में है, गर्मी जुनून में है।
1: कुछ रचनाएं किसी विचार या किसी अनूठे क्षण की उपज भर नहीं होती, बल्कि जीवन की जिज्ञासाएं, अनुभव और अवलोकन जब एक लय में गूंजने लगता है, तब वे अपना स्वरूप धारण करती है। अभी हम धीरेन्द्र छथरवाला से कहानी गर्मी जून में नहीं जुनून में है सुन रहे थे। शब्द शिल्प में अब आइए चलते हैं आखिरी सोपान यानी काव्य पाठ की तरफ। इसमें आज हम सुनेंगे अभय कुमार पाठक से काव्य पाठ।
2: ओह यह कैसा समय आ गया, पानी न जाने अब कहाँ खो गया। लोग पानी के लिए खून बहा रहे हैं, पानी के लिए अब खूंसे नहा रहे हैं। यह तो अभी आगाज है, अंजाम तो और भी बुरा होगा। नागासाकी हिरोशिमा जैसा कई देश अभी और जलेगा। तृतीय विश्व युद्ध का कारण कुछ और नहीं पानी होगा। जहाँ इतिहास नए युग को दोहराएगा यही कहानी होगा। समय रहते हम संभल जाएं तो अच्छा होगा। हमारी गलतियों से परेशान सदियों का बच्चा होगा। पानी हर शय की ज़रूरत है जीने के लिए, पेड़ पौधे पशु पक्षी जमी पीने के लिए। कहीं एक बूंद के लिए लड़ाई हो रहा है, सैकड़ों लीटर से कहीं कोई गाड़ी धो रहा है। पहाड़ मिट रहा है, जंगल कट रहा है, पक्कीकरण की होड़ में जमीन घट रहा है। पैसों की खातिर तालाब भर रहा है, अपनी बर्बादी खुद इंसान कर रहा है। मिट्टी की सौंधी खुशबू खो गई, खेत को बिकते देख मेरी आंखें रो गई। पानी के लिए हर तरफ कोहराम मच रहा है, खेत और तालाब को मिटाकर शहर बस रहा है, खेत और तालाब को मिटाकर शहर बस रहा है। आ जाओ मेघों के राजा, आ जाओ मेघों के राजा, देखो धरती तरस रहा है। दुनिया यह बेहाल बनी अब धूप से अंगारे बरस रहा है। पानी को मोहताज यहाँ सब, जाने क्या कब हो जाएगा। पानी को मोहताज यहाँ सब, जाने क्या कब हो जाएगा। बूंद बूंद तेरा जल अमृत क्या यूं ही अब खो जाएगा।

नदी पोखरे सूख गए सब, कुआं भी अब खाली है। पौधा को देख आंसू आया, लाचार पड़ा अब माली है। हम मानव कुछ हल कर लेते, पशु पक्षी सब तड़प रहा है। खेत हमारा कितना प्यासा, पग पग पर यह दरक रहा है। जल्दी से हरियाली कर दो, जल्दी से हरियाली कर दो, इतनी जल्दी तुम आ जाओ। झूम झूम कर सब नाचेंगे, आओ बादल जल बरसाओ। झूम झूम कर सब नाचेंगे, आओ बादल जल बरसाओ। माँ, माँ शब्द संसार में सबसे पवित्र है। बिना बोले ही जान जाए माँ वो मित्र है। माँ की डांट आरती है, माँ का चांटा जीवन का सारथी है। माँ करुणा में सागर है, माँ रोशनी में दिवाकर है। माँ का हर शब्द मोती है, माँ का हर शब्द मोती है। माँ अमावस रात की ज्योति है, माँ बिंदु है, माँ ब्रह्मांड है। माँ सुबह की लालिमा, माँ सुकून की सांझ है। माँ खुशबू है, माँ इत्र है। माँ खुशबू है, माँ इत्र।

सारथी है, माँ करुणा में सागर है, माँ रोशनी में दिवाकर है, माँ का हर शब्द मोती है, माँ का हर शब्द मोती है, माँ अमावस रात की ज्योति है, माँ बिंदु है, माँ ब्रह्मांड है, माँ सुबह की लालिमा, माँ सुकून की सांझ है, माँ खुशबू है, माँ इत्र है, माँ खुशबू है, माँ इत्र है, माँ शब्द संसार में सबसे पवित्र है, माँ शब्द संसार में सबसे पवित्र है। खाक होने से अच्छा है अंगदान करें, खाक होने से अच्छा है अंगदान करें, जिंदगी को जीने का सम्मान करें। नित्य नित्य नया शोध हो अंग जोड़ने के लिए, सिमटती हुई सांसों में जहाँ घोलने के लिए। नित्य नया शोध हो अंग जोड़ने के लिए, सिमटती हुई सांसों में जहाँ घोलने के लिए, जो हर किसी के ख्वाब को पूरा कर सके, मायूसी भरी जिंदगी में खुशियाँ भर सके। कटे हुए हाथों को हाथ मिल जाए, बेपैर किसी के पैरों से चल पाए। गूंगे का हर शब्द मेरी आवाज़ हो, बहरे के कानों में सुरों का साज हो। मेरा दिल किसी की धड़कन बन जाए, गुर्दा किसी के तन का तजन बन जाए। कोई मेरी आँखों से दुनिया का रंग देख ले, मरने के बाद जो दान करना है वो अंग देख ले। देहदान की ज़रूरत लोगों को बताएंगे, खुशी से इस पंक्ति में हम खड़े हो जाएंगे। रक्तदान की भावना भी जन जन में जगाएं, छोटी सी इस पहल से किसी की जान बचाएं, छोटी सी इस पहल से किसी की जान बचाएं।

0: श्रोताओं, कुछ रचनाएं भावों और कल्पनाओं को सुंदर और प्रभावशाली भाषा में प्रस्तुत करती है। ये मनुष्य के हृदय को आनंदित करने के साथ साथ उसे संवेदनशीलता, नैतिक मूल्यों और जीवन के गहरे सत्यों से जोड़ती है। अभी हम अभय कुमार पाठक से काव्य पाठ सुन रहे थे। श्रोता मित्रों, साहित्य मानव जीवन को दिशा, संस्कार और चेतना प्रदान करता है। ये ना केवल ज्ञान का संचित भंडार है, बल्कि हमारी भाषा, संस्कृति और विचारों को संरक्षित रखकर हमें एक बेहतर इंसान और समाज का निर्माण करने में मदद करता है। श्रोता मित्रों, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है आपसे अनुमति लेने का। आज के शब्द शिल्प के प्रस्तुतकर्ता थे अतुल कुमार प्रियदर्शन, स्वर सहयोग था सुप्रभात राय का। प्रस्तुति आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इसके लिए हमारा पता है, कार्यक्रम आपके पत्र द्वारा केन निदेशक, आकाशवाणी भागलपुर। हमारा पिन कोड है 812001। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इसके लिए हमारी ईमेल आईडी है phairbhagalpur@gmail.com। तो इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फरमाइशी फिल्मी गानों का फोन इन कार्यक्रम। हेलो आकाशवाणी।
2: हेलो आकाशवाणी।

दर्द कम होने लगा आओ के कुछ रात कटे, दर्द कम होने लगा आओ के कुछ रात कटे, गम की मियाद बढ़ा जाओ के कुछ रात कटे। मैं भी बेकार हूँ, मैं भी बेकार हूँ और तुम भी हो वीरान बहुत, मैं भी बेकार हूँ और तुम भी हो वीरान बहुत, दोस्तों आज न घर जाओ के कुछ रात कटे। नमस्कार, आ गए हैं हम आपके इस कार्यक्रम को लेकर जिसका नाम है हेलो आकाशवाणी। फरमाइशी फिल्मी गानों का ये फोन इन कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम जीवंत आप तक पहुंचता है, यानी लाइव है ये कार्यक्रम। और अब से जो आप कॉल करेंगे, आपके कॉल सीधे सीधे इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपसे हम आपकी फरमाइश जानेंगे, करेंगे बातें, और पसंद जो आपकी होगी उसे हम पूरा करेंगे। तो आपकी पसंद पूरी करने के लिए, आपके गाने को सुनवाने के लिए हम बैठे हुए हैं यहाँ आपके लिए। तो इस नंबर पे

0: आप करें कॉल, हमारा नंबर है 9430023953 9430029353 यही है नंबर। इस नंबर पे आप करें कॉल और 11 बजे तक जारी रहने वाले इस कार्यक्रम के सहभागी बने। हमें आपके कॉल्स का इंतजार है।
1: हेलो आकाशवाणी,
0: अचानक दोस्तों ये कितना तपता जून आया है, अचानक दोस्तों ये कितना तपता जून आया है, तुम्हारा खत नहीं आया न कोई फोन आया है। नहीं नहीं ऐसा हम नहीं कहेंगे क्योंकि फ़ोन आ चुका है। जी हाँ, एक फ़ोन हम तक पहुंच चुका है। ये पहला कॉल है इस कार्यक्रम का, जानते हैं कौन साहब हैं। हेलो आकाशवाणी, नमस्कार।
2: नमस्कार सर, मैं आनंद कुमार चौधरी बोल रहा हूँ सर, मकरमपुर गांव से।
0: नमस्कार आनंद जी, कैसे हैं, आनंदित हैं?
2: बहुत आनंदित है सर, लग जाता है तो आनंद से आनंद हो जाता है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल, कार्यक्रम में पहला कॉल आज शामिल हो रहा है। कहाँ थे, थोड़ा लंबा अंतराल नहीं हो गया आपका?
2: बहुत हो गया था, 6 महीने के ऊपर हो गया है आपसे, आपके प्रोग्राम में अभी।
0: तो कहाँ थे बताएंगे?
2: थे तो घर ही पर थे, लगता ही नहीं था, समझ गया ना। एक घंटा तक मारते रहते, इतना शुरू में लगा तो लगा, नहीं तो बस लगता ही नहीं था।
0: बहुत उंगलियां दर्द कर जाती हैं डायल करते करते कीपैड पे।
2: आज सोचा कि आपके प्रोग्राम में देखते हैं पहली बार लगा करके, लेकिन लग गया, बहुत खुशी हो रहा है
0: जी,
2: है ना जी, बहुत खुशी हो रहा है।
0: और आज फरमाइश आपकी क्या है आनंद जी?
2: वो झुक गया सुप्रीम का सर
0: जी,
2: मैं गाना के बोल रहे सर, कौन है जो सपनों में आए,
0: कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया।
2: बस बस बस,
0: पहुंचा रहे हैं आपके लिए मोहम्मद रफी।
2: और आप लोग सर कुशल मंगल है ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल, मालिक की कृपा बनी हुई है, हमारी आवाज से अंदाजा लगाइए कि हम सब कुशल है कि नहीं।
2: प्रयास कर रहे थे आपके प्रोग्राम में आपसे बातचीत करने के लिए, आज जो है सो पूरी हो गई, इच्छा पूरी।
0: चलिए चलिए, तो हमें भी खुशी हो रही है आनंद जी, इसलिए तो हमने पूछा आपसे कि कहाँ थे इतने दिनों तक, हम याद रखते हैं अपने श्रोताओं को। हाँ, तो आप तक हम पहुँचा रहे हैं फिल्म झुक गया आसमान का ये गाना। आपने कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि, सुनिए मकरमपुर में ये गाना
2: जी सर। नमस्कार सर।

0: हेलो आकाशवाणी, नमस्कार
1: हेलो
0: नमस्कार नमस्कार। मुजफ्फरपुर से सोनी जी।
1: जी, आप कैसे हैं?
0: हाँ ठीक है, सही पहचाना मैंने ना?
1: हाँ हाँ, बिल्कुल सही पहचान है। हम बहुत पुराने हैं, आप तो पहचानते होइएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और इन दिनों निरंतर आपके कॉल आ रहे हैं कार्यक्रम में कुछ हफ्तों के अंतराल पे।
1: जी, बीच में थोड़ी सा हम नहीं ऐसे पहुँच पा रहे थे, और फिर आज लगाए हैं तो बहुत कोशिश करने के बाद ही कॉल लगा है।
0: हाँ तो आपका कॉल भी तो तीसरा कॉल है ये जी।
1: हाँ, चलिए। आपके इधर गर्मी कैसी है?

0: हाँ गर्मी तो हर जगह, सब मुजफ्फरपुर से दरभंगा कितनी दूर है, अगर आपके यहाँ गर्मी है तो इधर भी गर्मी है।
1: थोड़े थोड़े दूर में चेंज है, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर में भी चेंज है।
0: हाँ सीतामढ़ी जो है ना
1: अच्छा
0: वो तराई का प्रभाव ज़्यादा उस पर पड़ता है, इसलिए वर्षा वगैरह भी ज़्यादा होती है वहाँ पूर्वी चंपारण।
1: उससे ज्यादा तो यहाँ पर हम नेपाल में, हम नेपाल गए थे संडे को।
0: घूमने के लिए गई होंगी, मंदिर दर्शन करने के लिए गई होंगी।
1: हाँ, घूमने, गर्मी छुट्टी मना रहे अभी हम लोग।
0: अच्छा, तो अभी सीतामढ़ी में हैं आप।
1: जी, अभी तो हम आए जाओगे मुजफ्फरपुर,
0: अच्छा,
1: कल पटना निकलेंगे चिड़ियाघर।
0: जी, हाँ घूम लीजिए इस छुट्टी में जो है, बच्चों को घुमाइए।
1: हाँ, उसके
0: जी
1: बाद टाइम कहाँ मिलता है। तुझे
0: जी फरमाइश बता दें कार्यक्रम में।
1: देखकर जग वाले सावन
0: को यकीन भी क्यों कर
1: के।
0: होगा,
1: हाँ
0: जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर
1: हाँ वो
0: होगा।
1: कितनी सुंदर होगी।
0: जी आपके लिए पहुंचा रहे हैं, यशुदास का गाया हुआ है ये गाना और फिल्म का नाम है सावन को आने दो, आपके लिए
1: जी।
0: मुजफ्फरपुर में ये गाना। नमस्कार, शुभ रात्रि।
1: शुभ रात्रि।

0: मैं प्रशांत कुमार सत्संगी रत्नपट्टी दरभंगा से बोल रहा हूँ। सज्जाद भाई, आपको और कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं को मेरा नमस्कार सर।
1: स्वागत है कार्यक्रम में। कैसे हैं प्रशांत जी?
0: जी अच्छे हैं, तंदुरुस्त हैं और देख रहे हैं कि पूरा दरभंगा और मिथिलांचल आम से एकदम लबरेज है, छाया हुआ है हमारे मनोमिजाज पर। और आप जानते हैं कि मेरा जो घर है रत्नपट्टी सुबंकरपुर,
1: और उधर आम के बागान की कमी नहीं है।
0: जी सर, है। जी सर
1: जी,
0: तभी आप वातावरण में आम की मिठास जो है छाई हुई है सर।
1: बिल्कुल, और अभी जो है चुनिंदा दुकानों में आपको सेब मिलता है या फिर केला मिलता है, जबकि केले और सेब ये तो जगह बजगह मिल जाया करते थे। उन तमाम ठेलों पर जहां केले रहा करते थे या सेब रहा करते थे, वहां अब हम देख रहे हैं चारों तरफ आम ही आम है। और बड़ी ढूंढने के बाद जो है केला मिल रहा है या फिर सेब मिल रहा है। क्या आपने ये महसूस किया? नहीं किया तो आज के बाद कीजिएगा महसूस।
0: सर आपका कथन सही है सर, चारों तरफ जो है सो ये सीजनल फसल है, इसे लोगों का जो रुझान इसके तरफ ज्यादा रहता है।
1: सीजनों
0: में लोग खरीद कर खाते हैं, मौसम का आनंद लेते हैं सर।
1: एक दिन आपकी तरफ पार्टी करना चाह रहे हैं आपकी तरफ, चूंकि आम के बागात बहुत हैं।
0: आइए सर, स्वागत है सर।
1: आपके बोलने से नहीं ना होगा, रखवाला बोलेगा तब ना
0: गाँव में। कहते हैं कि आजकल जो है सो लोग सब्जी पर अधिक ध्यान नहीं दे करके आम का सेवन अधिक करते हैं सर।
1: और आम जो है ना, उसके बारे में यह है कि बिल्कुल फलों का राजा है, लेकिन उसको बिगाड़ देते हैं लोग, वो जो रासायनिक रूप से पकाते हैं, ये जो करते हैं बिल्कुल, और अच्छे खासे आम को जहरीला बना देते हैं। हम तमाम लोगों को जानना चाहिए कि इस तरह से पकाए गए आम आपके हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्यप्रद नहीं होंगे, वो बल्कि हानिकारक हो जाते हैं, वो जहर बन जाता है। इससे सभी को बचना चाहिए
0: सर। कि इसका एक उपाय भी है सर प्रचलन में, कि यदि मतलब कि हम बाध्य हैं खाने के लिए इस तरह के आम को, तो ला करके उसका मुंह जो काट करके आधा एक घंटा पानी में उसको डुबो देना चाहिए, ताकि उसका विषैला तत्व जो है वो बाहर आ जाए और फिर लोग उसका सेवन कर सकते हैं सर।
1: देखिए बेहतर तो यही होता है कि
0: नहीं खाए, लेकिन क्या है कि सर कारोबार है, व्यापार है, सबके पास
1: नहीं। देखिए सरकारी सरकारी रूप से प्रशांत जी प्रतिबंधित है ये। हाँ
0: जी,
1: इस तरह के केमिकल
0: सर कारोबार है सर।
1: और
0: खाते हैं सर, आप भी खरीद के खाते हैं, बेचने वाला बेचता है, बेचने वाला तभी बेचता है, वो खरीद के खाते हैं सर।
1: जागरूक लोग जागरूक लोग बचने का प्रयास करते हैं। और आपको बता दें कि मैं तो विशेष रूप से प्रयास करता हूं कि इस तरह के फल को अवॉइड किया जाए जो केमिकल द्वारा पकाए गए होते हैं। और हम उस मिट्टी से आए हैं यहाँ पे, जिस मिट्टी में जब केला का पूरा घोर होता था, तो उस घोर को गड्ढा खोद के केला का पत्ता चारों तरफ बिछा के और उसमें हाँ भूसा डाल के पकाया जाता था। खुद मैं धूप फूक मारता था उसमें बचपन में, मेरे बाबूजी पिताजी जो थे वो ये करते थे, और इस तरह से जो है केले को पकाते थे। उसके बाद समय बदला तो
0: जी प्राकृतिक तरीका था ये पकाने का। जी
1: आज भी प्राकृतिक कई तरीके हैं, वहाँ यहाँ पे बोलने का हमारे पास आपके पास समय नहीं है। बहुत सारे तरीके हैं जिनके द्वारा पकाया जा सकता है, और उसको आम की जो विशेषता है वो उसकी बहाल रखी जा सकती है। चलिए अगले दिन फिर बातें होंगी इस पे। आम खाइए खूब मस्ती में, हम भी खा रहे हैं। हाँ तो आज फरमाइश बता दें।
0: जी जी, आज के कार्यक्रम में तरत महमूद जी के मखमली आवाज में एक प्यारा सा गीत फिल्म बाग का दिल कहीं और चल
1: पहुंचा रहे हैं आपके लिए रत्नोपट्टी में। आपने कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।
0: शुभ रात्रि सर, नमस्कार।

0: एंट्री हो रही है तो पहली फरमाइश बता दें आप।
1: अगर आप गाना सुना दो ताजमहल की।
0: ठीक है, आप तक हम पहुंचा रहे हैं ताजमहल फिल्म का ये गाना। आपने कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि। सुनिए ये गाना रामपट्टी गौसनगर में।

0: सौभाग्य की बात है।
1: हाँ, तो बुंदेलखंड में अभी वर्षा आप लोग देख रहे हैं, है ना। चलिए तो आनंद लीजिए। और हम लोग अभी इस तपती गर्मी से प्रभावित हैं और उत्तर भारत के प्रायः सभी हिस्से प्रभावित हैं अभी, तो धीरे धीरे आने वाले कुछ दिनों में मौसम बदलेगा। तो चलिए, ये बदलाव होता रहता है और पल पल आसमान कितने रंग बदलता है, तो फिर तो प्रकृति में हम हैं, उसके साथ हैं, तो हमें इस बदलते रंग को तो देखना ही होगा और महसूस भी करना होगा, भोगना होगा। फरमाइश बता दें सैनी जी।
0: मुझे सुनना है फिल्म का नाम है एक फूल दो माली और गीत के बोले एक पर्दा हटा दो, मुखड़ा हटा दो।
1: आपके लिए पहुंचा रहे हैं ये, आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि। सुनिए बुंदेलखंड में ये गाना।

0: मुस्कुराकर खिताब करते हो, मुस्कुराकर खिताब करते हो, आदतें क्यों खराब करते हो। हमने तुमको पसंद कर ही लिया, हमने तुमको पसंद कर ही लिया, तुम किसे इंतखाब करते हो। हेलो आकाशवाणी, नमस्कार।
1: हाँ नमस्कार सर जी,
0: परिचय दें अपना।
1: उत्तर प्रदेश जिला मुरादाबाद ग्राम बीजीपुर से मकसूद हुसैन बात कर रहा हूँ।
0: मकसूद साहब मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से हमारे नियमित श्रोता, लेकिन थोड़ा अंतराल लंबा हो जाता है आपका।
1: जी आवाज स्पष्ट नहीं आने लगी है, थोड़ा पता नहीं इशू हो रहा है कोई सर जी।
0: अब सही से सुन पा रहे हैं आप हमको? चलिए आवाज नहीं सुन पा। हाँ ठीक है, पहले तो आप अपनी फरमाइश बता दें मकसूद साहब, पहले आप फरमाइश बताएं।
1: सर गीत बजा दे आप, नारे को भी इसी प्रकार से गीत है सर जी, ये प्ले कर देना सर जी।
0: नारे नारे नाना हाथ न लगाना, हाँ तो से बार बार कहूँ मोहे न सताना, दूंगी गारियां है ना।
1: जी
0: ये ताजमहल फिल्म का है ये गाना, और इसे गाया है सुमन कल्याणपुर और मीनू पुरुषोत्तम ने। तो आपके लिए हम मकसूद साहब पहुंचा रहे हैं ये गाना। आपसे हमारी बात ठीक से नहीं हो पा रही थी और आवाज़ डिस्कनेक्ट हो रही थी, लेकिन फरमाइश हमने आपसे पूछ ली तो पहुंचा रहे हैं आपके लिए ये गाना। आपने कॉल किया, बहुत बहुत शुक्रिया। शब खैर।

0: एक कार्यक्रम संबंधी सूचना है जो आप तक हम पहुंचा दें। सूचना इस प्रकार से है कि श्रोताओं, प्रदूषण नियंत्रण, प्राकृतिक संसाधनों के संतुलित उपयोग तथा जैव विविधता की रक्षा करके ही हम पृथ्वी को अपने लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण और हमारी जिम्मेदारी, यही है आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के अगले अंक का विषय। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर मनुराज शर्मा। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़ने के लिए फ़ोन नंबर होंगे 9430029353, अर्थात 9430029353, और दूसरा नंबर होगा 0627222481, अर्थात 0627222481। समय याद रखेंगे रविवार 7 जून 2026 दिन के 11 बजे। सूचना समाप्त हुई, साथ ही साथ आज के इस कार्यक्रम का समय भी समाप्त हुआ। चलते चलते आपको बता दें कि आज का जो ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा, उसके प्रस्तुतकर्ता थे मितेश कुमार मिश्रा, संयोजक थे असद दाऊद, और मैं था आपके साथ सज्जाद अहमद खान। अगले अंक में फिर होगी हमारी आपसे मुलाकात और बात। तब तक के लिए चलते चलते, कौन सा अब किसी जन्नत से निकलना है मुझे, कौन सा अब किसी जन्नत से निकलना है मुझे, मैं तेरे दिल में हूँ इज्जत से निकलना है मुझे, मैं तेरे दिल में हूँ इज्जत से निकलना है मुझे, राह के पेड़ ज़रा देर ये बारिश थम तो ले, राह के पेड़ ज़रा देर ये बारिश थम तो ले, मैं मुसाफिर हूँ तेरी छत से निकलना है मुझे। नमस्कार, शुभ रात्रि।
1: हेलो आकाशवाणी।

0: हेलो आकाशवाणी, आप सुन रहे थे ये फरमाइशी फिल्मी गानों का फोन इन कार्यक्रम। प्रसारण आकाशवाणी दरभंगा से किया गया। 11 बजने को हैं, कुछ क्षणों में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमन में 2,970 करोड़ रुपए की परियोजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज सूरत में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
2: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने हमेशा अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकार कर विकास को प्राथमिकता दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृहमंत्री ने त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैसों का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और

कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।